मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, डीटीएच और डीआरएम 1233 किलो हर्ट्स, न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और वेब्स ओटीटी पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की आषाढ़ मास की पहली तिथि, तदनुसार दिनांक 22 जून 2026 ईस्वी। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह की 5:56 और 54 सेकंड हो रहे हैं। आरंभ हो रही हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल है।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि योग दिवस आने वाले समय में अधिक लोगों को दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के श्योपुर स्थित कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वे चीता पुनर्स्थापन परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी और चीतों की देखभाल करने वाले वनकर्मियों तथा स्थानीय लोगों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति ने कल चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। इस दौरान अधिकारियों ने उन्हें बताया कि इस समय देश में 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हैं। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवादी रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों पर की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच सम्पन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के

5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। तमिलनाडु के पेरिया पालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। मैनचेस्टर में ग्रुप ए मुकाबले में भारत के 159 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 161 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान केप ने नाबाद 81 रन की शानदार पारी खेली और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप जी के मुकाबले में ईरान और बेल्जियम के बीच मैच बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। वहीं ग्रुप एच में स्पेन ने सऊदी अरब को 4-0 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। आज ग्रुप एच में उरुग्वे और केप वर्डे के बीच मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें आज का विषय है उसरीली भूमि में वृक्षारोपण। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
1: किसान भाइयों, आज हम उसरीली जमीन में वृक्षारोपण के बारे में चर्चा करेंगे। उसरीली भूमि में फल वृक्ष लगाने के लिए कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। पहली बात तो ये कि जिस ऊसर ज़मीन में हम वृक्ष लगाने जा रहे हैं उसकी दशा को थोड़ा सुधारा जाए। इसके लिए मिट्टी की जांच कराते हैं। इससे यह मालूम हो जाता है कि ऊसरीली ज़मीन का पीएच क्या है, यानी उसमें ऊसरपन कितना है और उसमें ऊसर सुधारक कितना प्रयोग करना है। फिर जिस वृक्ष को लगाना है उसके लिए निर्धारित दूरी पर रेखांकन करके गड्ढा खोद लेते हैं। औसत रूप में गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई एवं गहराई 1-1 मीटर रखते हैं। गड्ढे की ऊपर की मिट्टी एक तरफ और बाकी मिट्टी दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे में कम से कम 10-15 दिन धूप लगने देना चाहिए। यह कार्य थोड़ा पहले ही कर लिया जाता है, किंतु अगर यह कार्य न किए हों तो अभी भी यह कार्य कर सकते हैं और फिर गड्ढे की भराई करते हैं। मिट्टी को सुधारने के लिए आजकल मुख्यतः दो प्रकार के सुधारक प्रयोग होते हैं, एक जैविक और दूसरे अजैविक। जैविक सुधारकों में गोबर की खाद और कंपोस्ट की खाद तथा अजैविक सुधारकों में जिप्सम एवं पायराइट का प्रयोग होता है। यदि मिट्टी का पीएच 8.5 है तो एक गड्ढे में 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से 15 किलोग्राम बालू। बालू का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जल निकास अच्छा बना रहे। चूंकि ऊसर ज़मीन में जल निकास की समस्या होती है, अतः बालू का प्रयोग आवश्यक है। बालू के अलावा 2 किलोग्राम जिप्सम या 1.5 किलोग्राम पायराइट गड्ढे में भरते हैं। यदि पीएच 9 है तो 40 से 50 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 10 से 15 किलोग्राम बालू, 3 किलोग्राम जिप्सम एवं 2 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 है तो 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से 20 किलोग्राम बालू, 5 किलोग्राम जिप्सम या 4 किलोग्राम पायराइट। यदि मिट्टी का पीएच 9.5 से ऊपर है तो 50 से 60 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 15 से 20 किलोग्राम बालू, 10 किलोग्राम जिप्सम या 8 किलोग्राम पायराइट डालते हैं। इसके अलावा प्रत्येक गड्ढे में 250 ग्राम नीम की खली, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश तथा 150 ग्राम

0: चूड़, ये सब मिलाकर गड्ढे की भराई करते हैं। वास्तव में यह कार्य बहुत पहले ही कर लेना चाहिए, लेकिन अगर भराई का कार्य नहीं किए हैं तो यह कार्य भी इसी समय करें। गड्ढे की भराई ज़मीन से 10 सेंटीमीटर ऊंची ही रखनी चाहिए, फिर गड्ढे में पानी भर देते हैं ताकि मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। अगर कोई गड्ढा ज़्यादा बैठ जाता है तो उस पर थोड़ा मिट्टी डालकर ज़मीन के लेवल में कर देना चाहिए। अब बात आती है कि उसरीली ज़मीन में किन फल वृक्षों की रोपाई की जाए। उसरीली ज़मीन में वैसे तो कई फल वृक्षों को लगाया जा सकता है, लेकिन इनके गुण एवं ऊसर के प्रति सहनशीलता इनमें अलग अलग होती है। कुछ फल वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें ऊसर के प्रति सहनशीलता बहुत अधिक होती है। ये हैं आंवला, करौंदा, लसोढ़ा, महुआ और बेर। दूसरे औसत सहनता वाले फल वृक्ष होते हैं, जिसमें हम अनार, बेर, फालसा, जामुन, शरीफा को लेते हैं। तीसरे कम सहनशील वृक्ष हैं, जिसके अंतर्गत अमरूद और जैतून जैसे वृक्ष आते हैं। इनमें से ज़मीन के अनुसार वृक्षों का चयन करके रोपाई करते हैं। अगर आंवला लगाना चाहते हैं तो बनारसी, हाथी झोल, चकैया, कृष्णा, कंचन और नरेंद्र आंवला साथ। यदि बेर लगाते हैं तो बनारसी कड़ाका, उमरान और अलीगंज मुड़िया। यदि बेल लगा रहे हैं तो बेल कागजी, नरेंद्र बेल 5 और मिर्जापुरी। यदि अमरूद लगाते हैं तो इलाहाबादी सफ़ेदा, लखनऊ 49 और एप्पल गुआवा प्रजातियां प्रमुख हैं। इस प्रकार से गड्ढों के बीचों बीच स्वस्थ कलमी या बीजू पौधों को गड्ढा खोदकर लगाना चाहिए। पौधों को शाम के समय लगाना चाहिए और लगाने के बाद उसमें पानी दे देना चाहिए। प्रायः देखा जाता है कि ऊसर ज़मीन में वाष्पीकरण के द्वारा हानिकारक लवण ऊपर आने लगते हैं, अतः इस प्रकार की मिट्टी में अपेक्षाकृत कम अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहना चाहिए ताकि मिट्टी की दशा खराब ना होने पाए। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर ऊसरीली ज़मीन में वृक्षारोपण करना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बातें कार्यक्रम। आज का विषय था उसरीली भूमि में वृक्षारोपण। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और बड़ा उलझा भी। बुद्धि से चले तो बहुत उलझा है और भक्ति से चले तो बड़ा सीधा है। विचार से चले तो बहुत दूर और भाव से चले तो बहुत पास। नजरों से देखा तो कण कण में और अंतर मन से देखेंगे तो जन जन में।

जब भी आप भगवान का ध्यान दें, उनसे हमेशा यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरा हाथ पकड़ना मत भूलना। अगर मैं आपको कहीं साथ चलने के लिए बोलना भूल जाऊं तो आप स्वयं मेरे साथ चलना मत भूलना।

ज्ञान तीन तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला मनन से, जो सर्वश्रेष्ठ है। दूसरा अनुसरण से, जो सबसे आसान है। और तीसरा अनुभव से, जो कि कड़वा है।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। आवाजें थी तुलसी कुमार, संजय तलवार और देवशिष डे की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय है समय का सदुपयोग।
1: समय सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सबसे अद्भुत और व्यावहारिक चीज है। इसकी न कोई शुरुआत है और न कोई अंत। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम समय के मूल्य को समझें और इसका प्रभावी ढंग से प्रबंधन करें, अन्यथा समय हमारे जीवन पर विपरीत प्रभाव डाल सकता है। हमें बहुमूल्य समय को व्यर्थ न गंवाकर उसके मूल्य को समझने और सम्मान करने की आवश्यकता है। जीवन में समय सबसे मूल्यवान वस्तु है। इसे न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। समय ही वो आयाम है जिसमें हम सभी अपना जीवन जीते हैं और ये हमारे हर काम को प्रभावित करता है। समय इतना महत्वपूर्ण है कि यदि हमारे पास समय नहीं होता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते। ऐसी कई चीजें हैं जो हम अपने समय के साथ कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि हम अपने समय का प्रबंधन करें और इसका अधिकतम उपयोग करें। यदि आप अपना समय पूरी तरह से प्रबंधित नहीं कर पा रहे हैं तो निराश न हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी गलतियों से सीखें और उस ज्ञान का उपयोग भविष्य में अपने समय के साथ और अधिक कुशल बनने में मदद के लिए करें। अपने समय को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपना समय कैसे व्यतीत करते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, चाहे आप इसे पसंद करें या न करें। सच तो ये है कि समय कभी नहीं रुकेगा, ये चलता रहेगा। ये एक पुरानी मान्यता है लेकिन ये अब भी सच है। समय आपको केवल एक अवसर देता है और आपको इसका सर्वोत्तम लाभ उठाना है। खोया हुआ एक क्षण हमेशा के लिए खो जाता है। आप पीछे जाकर समय को उलट नहीं सकते। समय सदैव परिवर्तनशील है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कुछ भी समय और परिवर्तन से स्वतंत्र नहीं है। जीवन छोटा है और पूरा करने के लिए कार्य विशाल और चुनौतीपूर्ण है। हमें इस तथ्य को समझना चाहिए और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। समय का सही लाभ उठाने के लिए आवश्यक है कि एक समय में एक ही काम किया जाए। जो व्यक्ति एक ही समय में कई कार्यों में उलझ जाता है, उसका एक भी कार्य अपेक्षित रूप से सिद्ध नहीं हो पाता। समय की धारा निरंतर प्रवाहित होती रहती है और फिर शून्य में विलीन हो जाती है। आज का काम कल पर टाल देने से कार्य का भार दोगुना हो जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर समय के कुशल प्रबंधक थे। जब वो कॉलेज जाते तो रास्ते के दुकानदार अपनी घड़ियां देखकर उन्हें ठीक करते। वे जानते

थे कि विद्यासागर कभी एक मिनट भी आगे पीछे नहीं चलते। संसार में जितने महापुरुष हुए हैं उनकी महानता का एक प्रमुख आधार स्तंभ रहा है कि उन्होंने समय का सदुपयोग किया, एक क्षण व्यर्थ नहीं जाने दिया। जिस समय लोग समय गंवाकर आलस्य प्रमाद में पड़े रहते हैं उस समय महान व्यक्ति महत्वपूर्ण कार्यों में संलग्न रहते हैं। समय सर्वाधिक मूल्यवान संपदा है, भौतिक धन संपदा से भी अधिक बहुमूल्य। मनुष्य कितना भी परिश्रमी क्यों न हो यदि वो समय के मोल को नहीं समझेगा तो अपेक्षित परिणामों से वंचित रहेगा। प्रकृति का प्रत्येक कार्य एक निश्चित समय पर संपन्न होता है। समय पर ग्रीष्म तपता है, अपने समय पर पानी बरसता है और सही समय

0: है, अपने समय पर पानी बरसता है और सही समय आने पर शीत दस्तक देता है। चंद्रमा, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र सभी समय के अनुसार गतिमान रहते हैं। इतने विशाल कर्तव्य क्रम को मनुष्य तभी पूरा कर सकता है जब जीवन के एक एक क्षण को सावधानी के साथ उपयोगी और उपयुक्त दिशा में निवेश करे। जीवन की अवधि सीमित होने के साथ साथ अनिश्चित और अज्ञात भी है, इसलिए हमें निरंतरता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विचार बिंदु। आज का विषय था समय का सदुपयोग। आलेख और स्वर अरुण पांडे का था। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब लीजिए सुनिए स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आज का विषय है गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मनीष त्रिपाठी।
2: जब भी निकले हैं घर से बाहर तो हमेशा कुछ ना कुछ खा के ही जाए, हल्का भोजन करें दिन भर, हाथ में पानी की बोतल जरूर रहे सबके पास। साथ में मैंने बताया आपके सूती कपड़े हो, ढीले कपड़े हो और हल्के रंग के कपड़े अवश्य पहने। डार्क कलर जो है हमेशा, जब डार्क कलर तो जितने भी डार्क होते हैं वो गुड एब्जॉर्बर होते हैं, तो हल्के कलर के कपड़े पहनने से क्या होता है, लाइट वेव्स रिफ्लेक्ट करेगी जिससे आप जो है गर्मी से बचे रहेंगे। सर को हमेशा ढकें, टोपी ले या छाता लगाएं। साथ में कोशिश ये करें चले तो इस समय पूरे हमारे देखेंगे पूरे मार्केट में खीरा, ककड़ी, गाजर ये है, नींबू पानी है, मिंट्स है आपके पुदीने के रूप में, तो खीरा वगैरह रास्ते भर में फलों का ही प्रयोग करें। कोशिश करें सुबह का नाश्ता जल्दी ले लें, दोपहर में फलों वलों का सेवन करें, तो इससे हम लोग काफ़ी हद तक बचे रहेंगे। देखिए कार्बोनेटेड वाटर, कैफिनेटेड वाटर, हाई शुगर डाइट, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट, इनकी आवश्यकता गर्मियों में नहीं होती है क्योंकि बेसिकली हमें फ्लूइड्स चाहिए। फ्लूइड हमको नींबू पानी मिल जाएगा, एक हमारे जो घर में घड़े का पानी शुद्ध है उसको पिया करें। जितने भी ऐसी चीज़ें स्ट्रीट फूड्स वगैरह होती है उनका कोई उपयोग नहीं है क्योंकि हमें बहुत लो कैलोरी डाइट चाहिए। हमारे पास सिर्फ गर्मियों में ऑलरेडी हमको ऊर्जा का स्रोत मिल रहा है, ये सनलाइट हमारे पास पर्याप्त है, हमको सिर्फ पानी की आवश्यकता शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा है और लाइट फूड है। तो ये चार चीज़ें कार्बोनेटेड वाटर्स, एल्कोहल बेवरेजेस, कैफिनेटेड ड्रिंक्स और उसके साथ साथ ये जो आप स्ट्रीट फूड, ये तो बहुत ही हानिकारक है, इनसे बचना चाहिए। इनफैक्ट चाय और कॉफ़ी मॉर्निंग आवर्स में जब ठंड थोड़ा उठे तो चाय ले सकते हैं, लेकिन चाय और कॉफ़ी को भी अवॉइड करना चाहिए काफ़ी हद तक। बाकी हमारे भारतीय स्वास्थ्य चिंतन में, भारतीय खान पान में शुरू से ही हम लोग सत्तू का उपयोग करते हैं, दही का उपयोग करते हैं और तमाम पुदीना, पुदीने की चटनी, आंवला की चटनी, ये सब का उपयोग करें क्योंकि हमारे भारतीय स्वास्थ्य चिंतन में, खान पान में, आहार विहार में ये सब शुरू से ही आया है। दादी नानी के नुस्खे भी रहते हैं, माँ जो शुरू से आई तो उसका पालन करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। गर्मी जैसे 43 से ऊपर तापमान जाता है 44-45 के बाद, तो सडन जो वो हीट स्ट्रोक है उसमें ज़्यादातर हमारे युवा, हमारे गांव में काम करने वाले किसान, तमाम ऐसे श्रमजीवी जो अपना खेत खलिहान में काम कर रहे हैं या बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने में काम कर रहे हैं, ऐसे लोग ज़्यादा उससे पीड़ित होते हैं। तो हीट स्ट्रोक का सबसे पहला लक्षण है डिजीनेस। कोई भी व्यक्ति है अचानक उसको चक्कर, घूमता आ रहा है, बेहोश भी हो सकता है, गिर भी सकता है, इनफेक्ट उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो हीट स्ट्रोक एक बहुत बड़ा कारण है गर्मी में होने वाले मृत्यु के लिए। इससे बचने के लिए हमेशा अपने आप को छांव में रखें, अपने आप को ठंडा रखें और वातावरण के अनुकूल रखें। सर्वप्रथम हीट स्ट्रोक से बचने के लिए आजकल विद्यालय, महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, हर जगह पेड़ पौधे हैं। देखिए ज़्यादातर घर में रहने वाले व्यक्ति लू से शिकार नहीं होते हैं, बाहर समानता जो बाहर कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, मैंने बताया कि श्रमजीवी हैं, रिक्शा चलाने वाले, हमारे खेतों में काम करने वाले किसान और तमाम ऐसे मजदूर जो बाहर खुली छत के नीचे जो काम कर रहे हैं वो ज़्यादा शिकार होते हैं। तो लू से बचने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि जो थपेड़े आते हैं लू के, जो गर्मी के, उससे बचना ज़रूरी है। तो पेड़ की छाँव में जब भी ऐसा कभी लगे कि शरीर बहुत गर्म हो रहा है, हाइड्रोथर्मिया कंडीशन हो, तो उस समय तत्काल जो है किसी छांव में आ जाए, पेड़ की छांव सबसे अच्छी है। अगर नहीं है तो घर के अंदर आ जाए किसी कमरे में, ठंडे कमरे में, कूलर के नीचे, एसी के नीचे, और अपने आप को पूरा हाइड्रेटेड रखें क्योंकि शरीर में अगर पानी की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो लू लगने का चांस काफ़ी कम रहेगा। तो कोशिश ये की जाती है लू से बचने के लिए कि सबसे ज़्यादा आप शरीर में लिक्विड पदार्थ

0: दिन भर खाए, फलों का सेवन करें, कोशिश करें कि कैफिनेटेड या गर्म चाय या कॉफी से बचें। तो आज के समय में गर्मियों में भी हमारे पास रसेदार फल हैं, जैसे कि आम आएंगे, ये पपीते हैं, संतरे हैं, आपके ये तरबूज है, खरबूज है। तो इन फलों का सेवन करने से शरीर हाइड्रेटेड रहेगा। शरीर के अंदर हमारे जो पानी की जो कमी होती है, उसी की वजह से ज्यादातर दिक्कतें आती हैं और लोगों की समस्याएं बढ़ती हैं। तो लू से बचने के लिए हमको ऐसे उपाय करने पड़ेंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय था गर्मी के मौसम में होने वाले रोग और होम्योपैथिक उपचार। विशेषज्ञ थे डॉक्टर मनीष त्रिपाठी।

बेटी की विदाई का दृश्य जितने आनंद और संतोष का अवसर होता है, उतना ही करुण और मार्मिक भी। विवाह के हर्षोल्लास, उत्साह और उमंग के मांगलिक समापन के बाद विदाई की घड़ी आ ही पहुंचती है। श्री राम भाइयों सहित वधुओं की विदाई के लिए राजा जनक के महल में पधारे हैं। उन्हें देखने के लिए नगर के अगणित नर नारी दौड़ पड़े हैं। सखियां इन प्रिय पाहुनों के रूप को आंखों में बसा लेना चाहती हैं। रूप के समुद्र सरीखे सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं न्योछावर हुई जाती हैं। जामाताओं को स्नान भोजन कराया गया, किंतु सारा उल्लास महाराज के अयोध्या लौट जाने का समाचार सुन जैसे उदासी में परिवर्तित हो गया। स्नेह से शिथिल हो गईं माताएं, पुत्रियों को बुलाकर बार बार उन्हें गले लगाने लगीं। सखियों ने पुत्रियों से बार बार भेंटती माताओं को जब अलग किया तो ऐसा लगा जैसे अभी अभी जन्मे बछड़े से गाय को अलग कर दिया हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज के गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए अब आपको जानकारी दे दें हमारे केंद्र से आज दिन भर प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की। शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित भजन सपोरी का संतूर वादन। सुबह 7:31 पर पंडित डीवी पलुस्कर का गायन और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:45 पर आप सुनेंगे डॉक्टर रजनीश का एकल तबला वादन। सुगम संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत दिन 12:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर रागिनी सरना के गायक गीत। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत रात्रि 8:00 आप सुनेंगे तलत अजीज व पिनाज की गायी गजलें। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपसे मिलिए में पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर से आशुतोष की बातचीत। गैर फिल्मी गीत गजलों का कार्यक्रम अंजुमन हमले करेंगे रात्रि 9:30 पर। सुबह 10:00 आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूर्व होने पर विशेष श्रृंखला की 21वीं कड़ी। रात्रि 8:10 पर आप सुनेंगे सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 15वीं कड़ी। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 7:31 पर रसरंग में। शाम 7:00, शाम 6:10, शाम 5:00 और झनकार में सुबह 10:30 से। किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत हमले कराएंगे शाम 6:30 से, जिसमें आज की बातचीत का विषय होगा पशुओं में सर्रा बीमारी कारण लक्षण और बचाव। इस विषय पर जानकारी देंगे डॉक्टर मनीष कुमार। इसी में श्रोता सुनेंगे रीना देवी और साथियों के गाय लोकगीत। इन्हीं के गाय लोकगीतों को श्रोता सुन सकेंगे दिन 1:45 और सुबह 9:50 पर। युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी हमले कराएंगे शाम 5:15 पर, जिसमें गीत संगीत के साथ आप सुनेंगे आज की बात यूथ डायरी इतिहास में आज का दिन और रोजगार सूचना। दिन 2:30 पर आपके व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्मों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे। महिलाओं का कार्यक्रम गृहलक्ष्मी आप सुनेंगे दिन 1:15 पर, जिसमें गीत संगीत के साथ चर्चा का विषय होगा विवाह की जिम्मेदारी न कि भार। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे दिन

0: 12 बजे। आपके पत्र आपके गीत ये कार्यक्रम हम लेकर आएंगे दिन 11 बजे। सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा हम लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस का प्रसारण समय होगा सुबह 7 बजे। श्रोताओं आपको एक बार फिर से बता दें, रात्रि 8:10 पर सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 15वीं कड़ी आप सुनेंगे। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले शीर्ष प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम रिले करेंगे अपने दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा करें।
1: इयम् आकाशवाणी। संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका साधना शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवदत् यत् आधुनिके विश्वस्मिन् सामुद्रिक शक्तिः राष्ट्रस्य सामरिक प्रभावस्य प्रमुखा आधारा अस्ति। कोलकातायां श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलपोत स्थात्रे तेन स्वदेश निर्मिताः त्रयः नौ सैनिक पूताः आईएनएस दुनागिरिः, आईएनएस संशोधकः, आईएनएस अग्रयश्च भारतीय नौसेनायै समर्पिताः।
2: आईएनएस विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: तेन उक्तं यत् एतेषां पोतानां निर्माणे 200+ सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमाः योगदानम् अकुर्वन्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी साम्प्रतिक वर्षस्य अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य वैश्विक उत्सव रूपेण आयोजनार्थं विश्वस्य जनान् प्रति कृतज्ञतां व्यक्तवान्। तेन उक्तं यत् योगः विभिन्नेषु देशेषु समाजेषु च स्थितान् जनान् स्वास्थ्य कल्याणयोः समान लक्ष्ये संयोजयति। प्रधानमंत्री एतत् विश्वस्य कृते प्रेरणादायकम् अस्ति इति अवदत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः कुनो राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः मध्यप्रदेशस्य कुनो नेशनल पार्क इत्यस्य राष्ट्रिय उद्यानस्य भ्रमणं करिष्यति। सा प्रोजेक्ट चीता इति योजनायाः प्रगतेः समीक्षां करिष्यति, तथा च व्याघ्रपालकैः वन कर्मचारिभिः स्थानीय जनैश्च सह संवादं करिष्यति। अधिकारिणाम् अनुसारेण भारते सम्प्रति 500+ व्याघ्राः सन्ति, तेषु अधिकांशतः कुनो राष्ट्रिय उद्याने वसन्ति। भारतम् अद्यारभ्य नवदिल्ल्यां ब्रिक्स राष्ट्राणां राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातॄणां द्विदिवसीय सम्मेलनस्य आयोजनं करोति। अस्य अध्यक्षताम् अजीत डोभालः करिष्यति। नीट यूजी 26+2000 पुनर्परीक्षा सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्थायां सुसम्पन्ना। राष्ट्रीय परीक्षा अभिकरणस्य अनुसारेण देशे विदेशे च स्थितेषु 44+4500 परीक्षा केन्द्रेषु लक्षशः अभ्यर्थिनः सहभागिनः अभवन्। दिव्यांग अभ्यर्थिभिः सह सर्वेषां परीक्षार्थीनां सुविधार्थाः विशेष व्यवस्थाः अपि कृताः। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इत्यनेन 12 श्रेण्याः उत्तर पुस्तिका सत्यापनस्य पुनर्मूल्यांकनस्य च परिणामाः क्रमशः प्रकाशिताः। मण्डलेन प्राप्तेषु उक्तं यत् प्राप्तेषु आवेदनपत्रेषु 87%+ परिणामाः घोषिताः सन्ति, अवशिष्ट परिणामाः अपि शीघ्रमेव चरणबद्धरीत्या प्रकाश्यन्ते। छात्राः स्व आवेदनस्य स्थितिं डिजी लॉकर पटले परीक्षितुं शक्नुवन्ति। मण्डलेन निष्पक्षतां शुद्धतां च सुनिश्चित्य सर्वाः प्रक्रियाः सावधानतया सम्पन्नाः इत्युक्तम्। छात्राः मिथ्या प्रचारेषु

0: सामाजिक माध्यमेषु प्रसारितान् अप्रमाणिक सन्देशान् च न विश्वसन्तु इति केवलं CBSE इत्यस्य आधिकारिक सूचना एव अनुसरन्तु इति परामर्शः दत्तः। तमिलनाडु राज्यस्य पेरियापालम क्षेत्रे स्थितायां समुद्री खाद्य निर्यात समवाये अमोनिया वायोः स्रवण घटनायां सप्त जनाः मृताः, सप्तत्यधिकाः श्रमिकाश्च प्रभाविताः जाताः। घटनास्थले उत्थार चिकित्सा कार्याणि निरन्तरं प्रचलन्ति। राष्ट्रिय आपद मोचन बलस्य तथा रासायनिक जैविक परमाणु आपदा विशेष दलानां च सदस्याः त्वरितं आपद उत्थार अभियानम् आरब्धवन्तः। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजयः उच्चस्तरीय अन्वेषणस्य आदेशं दत्त्वा त्रिसदस्यीयां समितिं नियुक्तवान्। फीफा विश्व कप चषके केप वर्डे उरुग्वे च अनयोः दलयोः स्पर्धा तत्र द्वि द्वि अंकेन समतायाम् अभवत् इति वार्ता।
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: आएगी मस्ती, लगेगा इंफोटेनमेंट का डोज।
2: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
3: सियाप्पा
1: आ गई है बनारसी कुड़ी। सो बनारस, लेट्स गेट रेडी टू ग्रूव। प्रेजेंटिंग आरजे सना।
0: हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वड़कम बनारस, कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं की वजह से हम सब भी एकदम ठीक, मस्त और चकाचक है। बनारस, आज ना सुबह सुबह एक थॉट आया मेरे दिमाग में। उपहार जो होते हैं, यानी कि गिफ्ट्स, वो तो सबको पसंद होते हैं, है ना? लेकिन आप किसी को उपहार क्यों देते हैं? उन्हें खुश करने के लिए, उन्हें प्रेम जताने के लिए, या फिर बस खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए? देखिए, आज के दौर में ना बहुत से लोग दूसरों को नहीं, खुद को खुश करने के लिए उपहार दे रहे हैं। उनके उपहारों में सौंदर्य है मगर प्रेम नहीं है, अहंकार है पर अपनापन नहीं है। देखिए, उपहार देना मानव संबंधों की सबसे पुरानी और सबसे कोमल अभिव्यक्तियों में से एक रही है। ये किसी वस्तु के आदान प्रदान के साथ ही भावनाओं, स्मृतियों और प्रेम को साझा करने का एक रूप भी है। मगर आज उपहार का अर्थ धीरे धीरे बदलता दिख रहा है। हमेशा से उपहार को प्रेम और अपनेपन का प्रतीक माना गया है। हाथ से लिखा एक छोटा सा पत्र, किसी की पसंद की एक साधारण वस्तु या समय देकर किया गया कोई प्रयास, ये सब दिलों को जोड़ते थे। उपहार देने का उद्देश्य ही सामने वाले को खुशी देना होता था। लेकिन आधुनिक जीवन शैली में उपहार अब दिखावे और प्रतिस्पर्धा का रूप ले चुका है। महंगे, ब्रांडेड और आकर्षक पैकेजिंग वाले उपहार रिश्तों की गहराई को नहीं, बल्कि देने वाले की हैसियत और छवि को दर्शाने लगे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उपहार वास्तव में प्रेम का माध्यम रह गया है या वो अहंकार और सामाजिक प्रतिष्ठा का साधन बन गया है? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो उपहार देने और पाने दोनों में आनंद तो आता है। उपहार लेने वाले की तरह ही देने वाला व्यक्ति भी एक तरह की संतुष्टि महसूस करता है, क्योंकि वो किसी को खुश करने में सफल होता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया केवल दिखावे, तुलना या बदले की भावना से जुड़ जाती है तो इसका मूल भाव कहीं खो जाता है। सच्चा उपहार वही है जिसमें किसी तरह का स्वार्थ ना हो, उसकी कीमत लागत से नहीं, उसमें छिपे विचार और भावना से तय हो। एक साधारण सा फूल भी किसी महंगे गहने से अधिक मूल्यवान हो सकता है, अगर वो सच्चे प्रेम से दिया गया हो। लेकिन ये बिना स्वार्थ का प्रेम कब औपचारिकता बन गया, पता ही नहीं चला। उपहार का असली सौंदर्य तो उसके भाव में छिपा था, तो फिर ये अहंकार का भाव इसके साथ कैसे जुड़ गया? घर के पुराने संदूक में रखी एक घड़ी, पीली पड़ चुके खत, किसी किताब में दबा सूखा गुलाब या बचपन में मिला कोई छोटा सा खिलौना, ये सिर्फ वस्तुएं नहीं होती हैं, ये उन पलों की आखिरी धड़कनें होती हैं जिन्हें समय बहुत पीछे छोड़ आया होता है। इंसान अपनी जिंदगी में चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, एक छोटा सा उपहार उसे अचानक वर्षों

पीछे ले जाता है, उस आवाज तक, उस स्पर्श तक, उस रिश्ते तक जो शायद अब उसके पास नहीं है। शायद इसीलिए कुछ चीजें समय के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और गहरी होती जाती हैं। उपहार देना केवल एक सामाजिक परंपरा नहीं है बल्कि मानव भावनाओं की सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्तियों में से एक है। ये एक ऐसी भाषा है जिसमें शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, जहां एक वस्तु, एक छोटा सा इशारा या एक साधारण सा प्रयास भी मन के उन कोनों को उजागर कर देता है जिन्हें हम अक्सर कह नहीं पाते। ये केवल देने और पाने का व्यवहार नहीं है, ये रिश्तों की समझ, संवेदनशीलता और आत्मीय जुड़ाव की एक मूक परीक्षा है। उपहार भावनाओं का दर्पण है, उनमें अपनापन, विनम्रता और स्नेह झलकता है। लेकिन यदि उपहार देने के पीछे आपके अहंकार की दृष्टि छुपी हो तो उसकी चमक रिश्तों की मिठास को फीका कर देती है। और आपको बताऊं कि सबसे बड़ा उपहार अगर आज के टाइम में आप किसी को दे पाए तो वो होता है वक्त। किसी थके हुए व्यक्ति को समय देना, किसी रोते हुए इंसान को बिना सलाह दिए सिर्फ सुन लेना, किसी का बोझ हल्का कर देना, किसी पुराने रिश्ते को एक फोन कॉल से फिर से जोड़ देना, ये वो उपहार है ना जिनकी कोई पैकेजिंग नहीं होती लेकिन इनकी याद सबसे लंबे समय तक रहती है। तकनीक के इस तेज दौर में जहां हर चीज तुरंत उपलब्ध है, वहां समय सबसे दुर्लभ चीज बन चुका है। इसलिए आज अगर कोई अपना समय, अपना धैर्य और अपनी उपस्थिति किसी को दे रहा है तो वही सबसे मूल्यवान उपहार है, क्योंकि अंततः इंसान चीजों से नहीं, एहसासों से जुड़ता है। वो समय समय पर लौटकर याद दिलाते हैं कि कभी कोई हमें पूरे मन से याद करता था। ट्यून किया है आपने आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। तारीख है आज 22 जून 2026 और दिन है आज सोमवार का। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त अपने शहर में खास। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 95 बटालियन केंद्र रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के कमांडेंट श्री राजेश्वर बालापुरकर के कुशल नेतृत्व में भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बल के अधिकारीगण और जवानों ने पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ भाग लिया। योगाचार्य श्री प्रकाशनाथ योगी द्वारा जवानों को योग, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कराया गया। इस अवसर पर कमांडेंट राजेश्वर बालापुरकर ने कहा कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि शरीर, मन और आत्मा को एक सूत्र में पिरोने का विज्ञान है। इस अवसर पर राजेश कुमार सिंह, द्वितीय कमान अधिकारी, आलोक कुमार एसएमओ, रवि प्रकाश, ज्ञानेश प्रकाश सिंह सहायक कमांडेंट, प्रवीण सिंह और प्रिंस सिंह के साथ ही भारी संख्या में बटालियन के कार्मिक और बहादुर जवानों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके साथ ही आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग की ओर से पुलिस लाइन से संदाह तक सड़क चौड़ीकरण का काम कराया जा रहा है। इस वजह से रास्ते में पड़ने वाले बिजली के पोल तार को आज सोमवार को भूमिगत कराया जाएगा। अधिशासी अभियंता नगरीय विद्युत निर्माण खंड द्वितीय वीरेंद्र सिंह के अनुसार आज सोमवार को सुबह 8 बजे से 11 बजे तक लेड़ूपुर उपकेंद्र के आशापुर फिडर पर शट डाउन लिया गया है। इस कारण पहाड़िया, श्रीनगर, आशापुर, अमानपुर कॉलोनी सहित आसपास के इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को साल 2027 तक हरित एयरपोर्ट बनाया जाएगा। इस परियोजना के तहत हवाई अड्डे की यात्री क्षमता भी बढ़ाई जाएगी। जिलाधिकारी सतेंद्र कुमार ने कल रविवार को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निरीक्षण किया और इस संबंध में जानकारी दी। तो जी, ये रहा आपने शहर का हाल समाचार। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द हिस्ट्री एंड स्पेशल इवेंट्स ऑफ टुडे, दैट इज 22nd ऑफ जून। आपको बता दें कि आज के दिन ईयर 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। इसके साथ ही साल 2007 में आज के दिन सुनीता विलियम्स अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा पूरी करके पृथ्वी पर आज के दिन लौटी थी। इस उड़ान के दौरान उन्होंने 195 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे और उस समय किसी भी महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष में बिताए गए समय का वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड था। अब स्पेशल इवेंट्स की बात करें तो आज है वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे। जी हाँ, और जब हम रेन फॉरेस्ट या वर्षा वनों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि ये तो दूर दराज के जंगलों की बात है, हमारा इससे क्या लेना देना। लेकिन रुकिए, लेना देना है,
इस साल के वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे की थीम बहुत ही कमाल और सोचने वाली है, द फॉरेस्ट विद इन यू, यानी वो जंगल जो आपके

0: अंदर है। सोचिए ना, जो ऑक्सीजन हम और आप हर सेकंड ले रहे हैं, उसका 20% हिस्सा इन्हीं रेन फॉरेस्ट से आता है। जो ताजा पानी हम पीते हैं वो इन्हीं जंगलों की देन है। और तो और, हमारी रोजमर्रा की दवाओं और जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन धरती के फेफड़ों से जुड़ा हुआ है। तो अगर हम इन जंगलों को बचा रहे हैं तो हम खुद को, अपनी सेहत और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को बचा रहे हैं। तो चलिए, इस वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे पर हम एक छोटा सा प्रॉमिस करते हैं। चाहे हम अपने शहर में हों या कहीं और, हम पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना और प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, यही छोटे कदम बड़े बदलाव लाएंगे। और देखिए, जब ऑक्सीजन की बात हो रही है तो आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाने जा रही हूँ जिन्हें बनारस के ऑक्सीजन बाबा नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बबलू प्रजापति सेठ की। अपने बनारस के रहने वाले बबलू प्रजापति, जिन्हें ऑक्सीजन बाबा के नाम से लोग जानते हैं, पिछले 12 सालों से पेड़ों की सेवा कर रहे हैं। जी हाँ, 500 लीटर पानी की टंकी लेकर वो सड़कों पर निकलते हैं और उन पौधों को पानी देते हैं जिन्हें अक्सर लगाकर भूल जाया जाता है। बबलू प्रजापति का मानना है कि पौधा लगाना आसान है लेकिन उसे बड़ा करना असली जिम्मेदारी है। इसी सोच के साथ वो वर्षों से वाराणसी और भदोही के आसपास हजारों पौधों की देखभाल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि वो पेशे से कुम्हार हैं। और देखिए ना, एक साधारण सा इंसान अपनी मेहनत और समर्पण से पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गया है। और आपको ये भी बता दूं कि 12 से 13 वर्षों तक वो ट्रॉली पर वो 500 लीटर की पानी की टंकी लेकर चलते थे और पौधों को पानी देते थे, लेकिन उनकी ये मेहनत और मशक्कत देख के नगर निगम ने उन्हें एक इलेक्ट्रिक रिक्शा भेंट किया है। तो अब आपको और इंतजार नहीं करवाते हैं और आपको मिलवाते हैं बनारस के ऑक्सीजन बाबा से।
1: जीवन का सपना यही है, बचपना से मैं जितना पेड़ लगाया हूँ 2.5-3 लाख, वो पेड़ सुरक्षित रहे, सदा बहार रहे, कि जो देखे वो कहे कि नहीं कोई बागवानी लगाया है, कोई पेड़ों का संरक्षक है, समय से देखभाल करना चाहिए और समय से कटाई करना चाहिए। यही काम करता हूँ, यही हमारा जीवन बीत जाए, यही पेड़ पौधों में मैं बहुत ही मेहनत करता हूँ, करता रहूँगा। जब तक मैं रहूँगा पेड़ों का सेवा करता रहूँगा, बागवानियों से वृक्षों का मैं बहुत शौक रखता हूँ। जहाँ पर खाली जमीन देखता हूँ वहाँ पर 10-20 हजार पौधे लगाने का क्षमता रखता हूँ कि मुझको जमीन मिले, पेड़ पौधा कहीं से योगदान मिले कि मैं और बगीचा बना दूँ, बाग बना दूँ, कि आदमियों को हरियाली ही हरियाली लोके। पेड़ जैसे नर्सरी से खरीद के आदमी को हम लोग बांटते हैं, 10-20 आदमी को 100-200 पेड़ कला गांव में जाकर वितरण करते हैं, अपने हाथ से लगाते हैं और आदमियों को बताते हैं कि अपने आसपास और अपने घर के आसपास, अपने क्यारी में, अपने बागवानी में, अपने मकान के सामने 10-20 पेड़ लगाकर जैसे बच्चों को सेते हैं उस तरह आप पौधा लगाएंगे तो आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ठंडा हवा मिलेगा, आप पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उठ सकते हैं और आदमियों को देखने में अच्छा लगेगा। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारों के लिए, जैसे दादा लगाएं, पापा लगाएं, नाना लगाएं, मामी लगाएं, उनके लिए भी आप लोग पौधा 100-200 पौधा अपने नाम से, उन लोग के नाम से जहां खाली ज़मीन देखिए साहब लोग, वहां पर आप लोग भी पौधा लगाइएगा तो आप लोग का नाम होगा कि नहीं हमारे दादा लगाए हैं, हमारे नाना लगाए हैं, हमारे नानी लगाए हैं, हमारे मामी लगाए। जहां पर ज़मीन खाली देखिए आप, वहां पर 100-200 पौधा या जगह मिले, जमीन मिले तो 50,000 पौधा वहाँ पर वितरण कर दीजिए, अपने नाम का पौधा लगा दीजिए कि आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चे याद करें।
0: बबलू प्रजापति सेठ के इस इनक्रेडिबल वर्क के लिए ये तो बनता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज स्पेशल इवेंट्स एंड हिस्ट्री। And now, Manaras, let's move on to your favorite segment.

बात जरूरत की। बनारस सोशल मीडिया पर बच्चों की बढ़ती सक्रियता के साथ उनकी ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर पेरेंट्स की चिंताएं भी बढ़ी हैं। इसके लिए मेटा ने इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर पर पेरेंटल सुपरविजन टूल लॉन्च किया है। इससे पेरेंट्स अपने 13 से 17 साल के बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज, स्क्रीन टाइम, इंटरेस्ट पर नजर रख सकते हैं। इस टूल से सेंसिटिव कंटेंट को कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के मुताबिक 13 से 17 साल के लगभग 95% टीनेजर्स सोशल मीडिया यूज करते हैं। इनमें से करीब 2/3 हर दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। वहीं लगभग 35% किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल लगभग हर समय करते हैं। इसलिए आज इस सेगमेंट में हम जानेंगे पेरेंटल सुपरविजन टूल के बारे में, साथ ही ये फीचर कैसे काम करता है और इससे बच्चे के फोन में कैसे एक्टिव करना है और क्या इसके लिए बच्चों का कंसेंट जरूरी होगा। देखिए, मेटा ने अपनी फैमिली सेंटर प्लेटफॉर्म को अपडेट करके पेरेंटल सुपरविजन टूल बनाया है। इससे पेरेंट्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि उनके बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, मैसेंजर और मेटा एआई पर किस तरह का कंटेंट देखते हैं और किन विषयों में रुचि ले रहे हैं। इस पेरेंटल सुपरविजन टूल के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ऑनलाइन सेफ्टी, स्क्रीन टाइम कंट्रोल, प्राइवेसी कंट्रोल, एक्टिविटी मॉनिटरिंग, कंटेंट इनसाइट्स और एक जगह सारे कंट्रोल। ये टूल मुख्य रूप से 13 से 17 साल के टीनेजर्स की उम्र के बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी के लिए बनाया गया है। फेसबुक और इंस्टाग्राम में एक टूल होता है फैमिली सेंटर। इसके जरिए पेरेंट्स अपने बच्चे के मेटा अकाउंट्स पर नजर रखते हैं। इसमें ही पेरेंटल सुपरविजन टूल ऐड किया गया है। इसमें पेरेंट्स और 13 से 17 साल के बच्चों के अकाउंट्स को ऐड करना होगा। इसके बाद पेरेंट्स बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटीज की निगरानी कर सकते हैं। अब एक सवाल आता है कि ये टूल काम कैसे करेगा। तो फैमिली सेंटर से बच्चे को इन्वाइट भेजा जाएगा। इन्वाइट एक्सेप्ट करते ही दोनों अकाउंट्स लिंक हो जाएंगे। बच्चे की फीड पर किस तरह का कंटेंट आ रहा है देखा जा सकेगा और उसके ऑनलाइन इंटरेस्ट को समझने में मदद मिलेगी। प्राइवेसी और कंटेंट कंट्रोल सेटिंग्स पर नजर रखी जा सकेगी। सेटिंग में हुए महत्वपूर्ण बदलाव की जानकारी मिलेगी। सोशल मीडिया टाइम स्पेंड देखा जा सकेगा। टाइम लिमिट कंट्रोल की जा सकेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक और मैसेंजर का सुपरविजन एक ही डैशबोर्ड से होगा और सभी मेटा सर्विसेज का मैनेजमेंट आसान होगा। और इसके जरिए ना पेरेंट्स अपने बच्चों की एक्टिविटीज पर नजर रख सकेंगे। बच्चे की स्क्रीन टाइम कितना है, रात कितने बजे तक ऑनलाइन है, कौन सा नया अकाउंट फॉलो किया है, किन अकाउंट्स को अनफॉलो किया है। मेटा के मुताबिक ये फीचर सेफ्टी और गाइडलाइंस के लिए है। इसमें पेरेंट्स बच्चे की एक्टिविटीज, स्क्रीन टाइम और सेफ्टी सेटिंग्स की जानकारी देख सकेंगे, लेकिन निजी मैसेज, पासवर्ड और संवेदनशील डेटा तक उनकी सीधी पहुंच नहीं होगी। पेरेंट्स बच्चे के फोन पर यह जानकारी एक्सेस नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मैसेजेस, चैट्स, फोटो, वीडियो या वॉइस नोट्स, अकाउंट का पासवर्ड, सर्च हिस्ट्री की जानकारी, गैलरी, कॉन्टैक्ट्स या फाइल और लोकेशन ट्रैकिंग। सो आई होप आज गुड मॉर्निंग बनारस का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। एंड इफ यस, देन डू शेयर योर वैल्यूएबल व्यूज ऑन pklgairvaranasi@gmail.com। मेरा नाम है सना सलीम और आप मुझे सुन रहे थे आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। एंड हियर आई एम साइनिंग ऑफ। डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। खुश रहिए, प्यार बांटिए और कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से किसी का दिल न दुखे। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी डे। बाय बाय।

गुड मॉर्निंग बनारस। आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचारों के लिए कीजिए बस थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता

0: है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं। सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। एपीजे अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न। करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित। अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि नए भारत की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने भी अपनी नई और विशेष पहचान बनाई है। डबल इंजन सरकार की नीतियों से बुंदेलखंड विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है। मुख्यमंत्री कल बुंदेलखंड के महोबा में 697 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 88 विकास परियोजनाओं और हमीरपुर जिले में 636 करोड़ से अधिक लागत की 75 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। महोबा जिले की आध्यात्मिकता, ऐतिहासिकता और वीरता की चर्चा करते हुए कहा कि महोबा गुरु गोरखनाथ की साधना स्थली है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से गोरखगिरी पर्यटन स्थल के नए केंद्र के रूप में स्थापित हुआ है। श्री योगी ने कहा कि गोरखगिरी में रोपवे लगाया जाएगा और इसे एडवेंचर टूरिज्म के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड का विकास राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। इस क्रम में विभिन्न विकास योजनाओं से बुंदेलखंड को आच्छादित किया गया है। श्री योगी ने कहा कि जल्द ही बुंदेलखंड मिसाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
3: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करवई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
2: मुख्यमंत्री ने कहा कि बुंदेलखंड में जल समाधान, संरक्षण, पर्यटन की संभावनाओं और कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए डबल इंजन सरकार काम कर रही है। इस अवसर पर महोबा के विकास को समर्पित लघु फिल्म भी दिखाई गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर देश ही नहीं दुनिया भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य समारोह से देश की अगुवाई की। श्री मोदी ने योगाभ्यास कर योग को दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाने का संदेश दिया।
4: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग

0: लोक के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
1: प्रदेश में भी योग दिवस के अवसर पर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुंदेलखंड के झांसी में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और योगाभ्यास कर निरोगी रहने का संदेश दिया।
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूरे प्रदेशवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। हम सब आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को वैश्विक मान्यता देकर के भारत के 140 करोड़ भारतवासियों को दुनिया के अंदर गौरव के साथ आगे बढ़ने और उसकी नींव पर एक विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए हम सबके लिए एक विजन प्रस्तुत किया है।
1: इस अवसर पर लखनऊ के जन भवन में महिला योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के नेतृत्व में महिलाओं ने योगासन, प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज और ब्रजेश पाठक लखनऊ में योग दिवस पर हुए कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के 59 जिलों में आयोजित नीट UG की पुनर्परीक्षा कल शाम शुचिता के साथ शांतिपूर्वक रूप से संपन्न हो गई। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर करीब 3.5 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। ये मेडिकल प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश सहित देश के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की गई। इस परीक्षा में 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए। इससे पहले 3 मई को हुई नीट की परीक्षा कथित पेपर लीक विवाद की वजह से रद्द कर दी गई थी। NTA ने परीक्षा को पारदर्शी, शांतिपूर्ण और नकलविहीन तरीके से कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए थे। सभी केंद्रों पर CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही थी। केंद्रों पर स्टेट और पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात थे। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान करते हुए कहा है कि मौसम की अनिश्चितता और मानसून की संभावित अनियमितता को देखते हुए प्रत्येक प्रदेशवासी को जल संचयन एवं जल संरक्षण के प्रयासों से जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि पानी की एक भी बूंद व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। कैच द रेन अभियान को और अधिक प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए तथा वर्षा जल संचयन को व्यापक जन भागीदारी से जोड़ा जाए। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कल प्रयागराज में खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इन सभी से संवाद करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में कई योजनाएं जारी हैं। उन्होंने खिलाड़ियों और खेल संगठनों के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि वह खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तैयार हैं, ताकि प्रयागराज सहित सभी जिलों के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकें। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,550 रुपये के प्रोसेसिंग शुल्क पर 10 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इसे पूरी तरह से फर्जी बताया है। राज्य सरकार ने आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले में 257 करोड़ रुपए लागत से 86 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सड़क निर्माण के संबंध में जल्द ही सर्वे और टेंडर प्रक्रिया संपन्न कराकर सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बन जाने से सीमावर्ती 4 राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर हो जाएगी। इस कनेक्टिविटी से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई में लोगों को आसानी होगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है। कई जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री से अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी के चलते जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार गर्मी का यह सिलसिला अगले 3-4 दिन तक जारी रहेगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में महीने के अंत तक मानसून के पहुंचने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तापमान और लू की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े स्कूलों और मान्यता प्राप्त स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को 24 जून तक बढ़ा दिया है।

0: इसे लेकर शासन से जारी निर्देश के अनुसार अब तक हर साल गर्मियों की छुट्टियां 20 मई से 24 जून तक रहेंगी और नियमित शैक्षणिक गतिविधियां 25 जून से शुरू होंगी। हालांकि शिक्षक, शिक्षा मित्र, प्रशिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी 22, 23 और 24 जून को स्कूलों में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोबा और हमीरपुर में विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार की नीतियों से विकास की राह पर तेजी से अग्रसर है बुंदेलखंड। उत्साह के साथ मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में आयोजित कार्यक्रम में किया योगाभ्यास। प्रदेश के 59 जिलों में नीट यूजी की पुनर्परीक्षा शांतिपूर्वक हुई संपन्न, करीब 3.5 लाख अभ्यर्थी हुए शामिल। और प्रदेश के अधिकांश जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से जनजीवन हुआ प्रभावित, अगले 3-4 दिन तक गर्मी से राहत के नहीं है आसार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आप लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज के कलाकार हैं पंडित DV पलुस्कर। राग है तोड़ी।

अभी आप सुन रहे थे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के अंतर्गत गायन। आज के कलाकार थे पंडित डीवी पलुस्कर, राग था तोड़ी। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं हमसे कुछ

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीष शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कोनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की दो दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा का आयोजन करेगी। अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, स्विट्जरलैंड में प्रतिनिधिमंडलों की बैठक के बाद ईरान वार्ता में प्रगति। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग रॉटरडम चरण के अपने अंतिम मैच में नीदरलैंड को 3-2 से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति में समुद्री क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और भारत इसे मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कोलकाता में कल स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक पोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है और केवल हथियारों का खरीदार देश बनकर नहीं रहना चाहता।
1: आज भारत रक्षा क्षेत्र में केवल खरीदार बनकर नहीं रहना चाहता। हमारी सैन्य शक्ति दुनिया के लिए बाजार नहीं बन सकती। मेरी शक्ति की सामर्थ्य की पहचान मेरी आत्मनिर्भरता पर है।
0: श्री मोदी ने कहा कि समुद्री सामर्थ्य के बिना कोई भी देश वैश्विक शक्ति नहीं बन सकता। विकास, सुरक्षा और समृद्धि का सीधा संबंध समुद्र से है। श्री मोदी ने कहा कि INS विक्रांत से शुरू हुई आत्मनिर्भरता की यात्रा को इन नए पोतों के शामिल होने से और गति मिलेगी।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 40 से अधिक युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल की गई हैं।
1: भारत निर्माता बनना चाहता और जिस दिन निर्माता होगे ना, उस दिन हम निर्णायक भी होंगे। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्व भर के लोगों का आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये देखकर खुशी होती है कि योग सभी क्षेत्रों और विभिन्न देशों के लोगों को स्वस्थ जीवन तथा कल्याण की साझा खोज में एकजुट कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा किया। उन्होंने भारत के प्रमुख पहल चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह कूनो नेशनल पार्क में सफारी की। इसके बाद वे कूनो के चीता कमांड एवं कंट्रोल सेंटर का दौरा कर चीता परियोजना से जुड़ी प्रदर्शनी का अवलोकन किया था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वर्तमान में भारत में 52 चीते हैं। उन्हें चीतों की निगरानी और ट्रैकिंग व्यवस्था के बारे में भी जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2022 में अपने जन्मदिन पर नाम्बिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो

0: नेशनल पार्क में छोड़कर भारत की महत्वाकांक्षी चीता पुनर्स्थापन परियोजना की शुरुआत की थी। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से भी चीते लाए गए। संरक्षण और प्रजनन के प्रयासों के कारण अब कुनो में चीतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे परियोजना की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों तथा अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी इसमें शामिल होंगे। ये चौथी बार है जब भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इस वर्ष भारत की अध्यक्षता का विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सतत विकास का निर्माण। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की UGC नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू होगी। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। UGC नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF, सहायक प्रोफेसर के पदों और PhD पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हुई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देशभर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए। इस बीच NTA ने नीट UG पुनर्परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के दावे को खारिज किया है। सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में प्रश्न पत्र टेलीग्राम पर लीक होने का दावा किया गया था। NTA ने कहा है कि परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सफलतापूर्वक आयोजित की गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं के अंकों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के परिणाम जारी करने शुरू कर दिए हैं। बोर्ड के अनुसार 87% से अधिक आवेदनों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं जबकि शेष परिणाम जल्द ही जारी किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज भाजपा सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली सरकार के इस बजट पर सभी का ध्यान है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 कल शाम संपन्न हो गया। मुंबई में आयोजित समापन समारोह को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने महोत्सव को गैर काल्पनिक सिनेमा के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित समारोहों में से एक बताया। हमारी संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्ग में पोलैंड के वृत्तचित्र सिल्वर ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार जीता।
3: अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने माया सॉन्ग को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म के लिए सिल्वर कॉन्च और अंडर द स्नो को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म का सिल्वर कॉन्च दिया गया। राष्ट्रीय प्रतियोगिता विभाग ने आर्मस्ट्रांग फ्रॉम अंगलम्मन कोविल स्ट्रीट को सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन फिल्म का सिल्वर कॉन्च मिला, वहीं स्मॉल क्लाउड्स को सर्वश्रेष्ठ लघु कथा फिल्म और वाई को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म का सिल्वर कॉन्च प्रदान किया गया। द ओल्ड बुलनोज और वंस न्यू को सर्वश्रेष्ठ छात्र फिल्म का पुरस्कार मिला, जबकि द लास्ट शेल्टर को विकसित भारत, वंदे मातरम के 150 वर्ष, भारत एट 2026 विषय पर बनी सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का पुरस्कार दिया गया। इसी के साथ मिस 2026 का समापन हुआ। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ वार्ता में प्रगति हो रही है। स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर अमरीका और ईरान के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडलों के बीच

0: बातचीत जारी है, एक रिपोर्ट।
1: लेक ल्यूर्सन के निकट बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में बंद कमरे में हो रही इस वार्ता से पहले जेडी वेंस ने कहा कि अब तक की बातचीत के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं और आगे भी प्रगति की उम्मीद है। वार्ता का मुख्य केंद्र ईरान का परमाणु कार्यक्रम है। इसके साथ ही इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम बनाए रखने सहित क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी चर्चा जारी है। जेडी वेंस ने कहा कि हाल के कूटनीतिक प्रयासों से सकारात्मक परिणाम मिले हैं और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता बनाए रखने के लिए अमेरिका लगातार प्रयासरत है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने और कूटनीतिक समाधान की दिशा में इस वार्ता पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नज़र बनी हुई है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस अवसर पर हम अपनी विशेष श्रृंखला पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी के तहत 15 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं।
2: हम लिख के गया ऐसा करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतन के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
0: ये विशेष कार्यक्रम आज और कल प्रातः 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित होंगे, जिन्हें न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। पुरुष हॉकी में भारत ने कल रॉटरडैम में FIH प्रो लीग के अपने अंतिम मुकाबले में नीदरलैंड्स को 3-2 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। भारत की ओर से जुगराज सिंह, अभिषेक और राजेंद्र सिंह ने गोल किए। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में आज मूसलाधार बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले इलाकों और सिक्किम में भी आज तेज वर्षा की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा और लक्षद्वीप में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
6: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन और कड़ी सुरक्षा के बीच फिर से नीट परीक्षा कराए जाने के समाचार छाए हुए हैं। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को शीर्ष समाचार बनाया है। शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है योग। कोलकाता में योग दिवस समारोह के दौरान एक प्रतिभागी की मदद करते हुए प्रधानमंत्री की तस्वीर भी अखबार में प्रमुखता से प्रकाशित है। दैनिक जागरण ने इस खबर को शीर्षक दिया है, पहाड़ से मैदान तक योगमय हुई दुनिया। सियाचिन ग्लेशियर की बर्फीली ऊंचाइयों और पानी की गहराइयों में योग करते सैनिकों के चित्र भी ध्यान आकर्षित करते हैं। पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर ने क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी की तस्वीरों को पहले पन्ने पर सबसे ऊपर छापते हुए उनकी उपलब्धियां बयां की हैं। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, वैभव क्रिकेट की दुनिया का अजूबा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, नीट देने 2,00,000 कम अभ्यर्थी पहुंचे। दैनिक जागरण बताता है कि देश विदेश के 5,454 केंद्रों पर ये परीक्षा हुई और गड़बड़ी की कोई सूचना नहीं है। परीक्षा में भाग ले रहे उम्मीदवारों को कोई कठिनाई ना हो इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के हवाई अड्डे पर 45 मिनट प्रतीक्षा करने को भी अखबार ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने पहलगाम हमले की जांच के सामने आए कुछ तथ्यों को सचित्र प्रकाशित करते हुए खबर को शीर्षक दिया है, सीमा पार से आए ड्रोन ने गिराए थे हथियार।
0: और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मजबूत समुद्री क्षमता किसी भी देश के आर्थिक और रणनीतिक प्रभाव में निर्णायक है और भारत इस ओर अग्रसर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान के दौरे पर हैं, चीता परियोजना की समीक्षा की। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2-दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी आज से UGC नेट जून 2026 परीक्षा आयोजित करेगी। और पुरुष हॉकी में भारत ने FIH प्रो लीग

0: 3-2 in the last match of FIH Pro League Rotterdam leg. And with that, we end the morning news. Have a great day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुस्तहकम बहरी सलाहियतें किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मुअसर होने में एक फैसलाकुन उंसुर का किरदार अदा करती हैं और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की पेशरफ्त का जायजा लिया। भारत आज नई दिल्ली में ब्रिक्स मुल्कों के कौमी सलामती के मुशीरों की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। इम्तहान का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी 2026 के यूजीसी नेट इम्तहान का आगाज आज से कराएगी। अमरीका के नायब सदर जे डी वांस ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत में पेशरफ्त जारी है। वफूद ने स्विट्जरलैंड में मीटिंग की है और मर्दों के हॉकी में एफआईएच प्रो लीग रोटरडम मरहले के अपने आखिरी मैच में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एक मजबूत समंदरी सलाहियत किसी मुल्क के इक्तसादी और दिफाई तौर पर मौसर होने का फैसलाकुन उंसुर होती है और भारत इसके लिए तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि समंदरी सलाहियतों का हामिल कोई मुल्क मजबूत होता है और इक्तसादी और दिफाई तौर पर ज्यादा मौसर होता है।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: वजीर आजम ने यह राजधानी मुल्क ही में तैयार किए गए जंगजू जहाज दूनागिरी, जायजा लेने वाले जहाज संशोधक और गहरे पानी में सरगर्मियां अंजाम देने वाले आबदोस चिकन बहरी जहाज एग्रे को कल बहरिया के कामकाज में शामिल करते हुए किया। इन जहाजों को बहरिया के जंगजू जहाज तैयार करने वाले ब्यूरो ने डिजाइन किया है और इनकी तामीर गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने की है। इन बहरी जहाजों का मकसद जंगी सरगर्मियों को मुस्तहकम बनाना, समंदर के जायजे लेना और आबदोस शिकन कार्रवाइयां अंजाम देना है।
2: जब समुद्री विरासत की बात होती है तो बंगाल का नाम स्वाभाविक रूप से सामने आता है। यह भारत के समुद्री संपर्कों की भी महत्वपूर्ण भूमि रही है। हुगली की धाराओं ने इतिहास को बदलते हुए देखा है, व्यापार के नए अध्याय देखे हैं, विकास की नई यात्राएं देखी है और संयोग देखिए, ये पोर्ट बंगाल के ही सपूत देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर है।
1: वजीर आजम मोदी ने दुनिया भर के लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि उन्होंने योग के 2026 के बैन अलाक्वामी दिन को एक आलमी तकरीब की शक्ल दी। वजीर आजम ने कहा कि ये बात हिम्मत अफजा है कि योग की वजह से दुनिया के मुल्कों में जिंदगी के सभी शोबों के लोग तंदुरुस्ती और अच्छी सेहत के लिए यकजा हो रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस दिन से मजीद लोगों को तहरीक मिलेगी और वो योग को आने वाले वक्त में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कल मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क की सैर की। उन्होंने चीता प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया जो मुल्क में चीतों के खत्म हो जाने के बाद जंगल में इनकी बाजाबादकारी के लिए भारत का एक अहम कदम है। सदर जमहूरिया ने अपने दौरे में चीतों के बंदोबस्त के इलाके का दौरा किया। उन्हें अफसरों ने इस प्रोजेक्ट की मौजूदा सूरत हाल की जानकारी दी। कूनो मुल्क की पहली ऐसी जगह है जहां चीतों की बाजाबादकारी की गई है। इस जगह को प्रोजेक्ट चीता के तहत तैयार किया गया है क्योंकि ये इनके लिए एक मुनासिब और वाफर शिकार वाली जगह है। इसके अलावा यहाँ इंसानी मुदाखलत भी निस्बतन कम होती है।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कूनो नेशनल पार्क की सफारी का दौरा किया। उन्होंने सहारिया कबीले के अरकान से भी बातचीत की, जो चीता प्रोजेक्ट के तहत चीता मित्रों

0: बातचीत करेंगे और सलामती के उभरते हुए खतरात में नई टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी तवज्जो मरकूज करेंगे। वफूद साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल खतरात और मसनूई ज़हानत से पैदा होने वाले खतरात पर भी गौरखोज करेंगे। सभी रुकन ममालिक की कौमी सलामती के मुशीर और वफद के सरबराहान इंफॉर्मेशन और मवासिलाती टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी से मुतालिक ब्रिक्स की वर्किंग ग्रुप्स की हालिया मीटिंग के नतीजे का जायजा भी लेंगे। भारत की सदारत का मरकजी मौजू लचक पजीरी, इख्तरा, बाहमी ताउन और पायदारी को फरोग देना है, जिसकी वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आवाम पर मरकूज विजन की अक्कासी होती है, जिसे 2025 की रियो समिट में पेश किया गया था। चीन ने तस्दीक की है कि उसके वजीर खारजा वांग ई इस मीटिंग में शिरकत करेंगे। दिल्ली से ऋषु जायसवाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। इम्तहानात कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए आज से यूजीसी नेट 2026 का इम्तहान शुरू कराएगी। कौमी सतह की एहलियत का टेस्ट हर रोज दो शिफ्ट में इस माह की 30 तारीख तक कंप्यूटर पर मबनी टेस्ट सीबीटी मोड में कराया जाएगा। यूजीसी नेट इम्तिहान उन उम्मीदवारों के लिए कराया जाएगा जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन और पीएचडी कोर्सेज के दाखिले के लिए क्वालिफाई करने की ख्वाहिशमंद है। एनटीए ने सभी उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करें और इम्तिहान की सभी तफसीलात के पूरे ध्यान से तस्दीक करें। उसने कहा है कि उम्मीदवारों को इम्तिहान से पहले अपने इम्तिहान की तारीख, शिफ्ट, वक्त और इम्तिहान के मरकज के बारे में मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए। मजीद ये कि पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों को भी मशवरा दिया गया है कि वो अपने मुकर्रा इम्तिहानात के मराकज का पहले से दौरा करें ताकि मकाम और दस्तयाब सहूलियात से वाकफियत हासिल की जा सके। इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली एक वीडियो के इन दावों को मुस्तरद कर दिया है कि इम्तिहान से पहले टेलीग्राम पर नीट यूजी 2026 के दोबारा इम्तिहान का सवालनामा इफ्शा हुआ था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने कहा है कि नीट का इम्तिहान जामे सिक्योरिटी और निगरानी के तहत कामयाबी के साथ मुनक्किद कराया गया। उसने मजीद कहा कि तलबा के लिए इस तरह की गलत मालूमात जानबूझकर फैलाना एक संगीन जुर्म है। सीबीएसई ने 12वीं जमात से मुतालिक मामलात के तस्दीक नामे और दोबारा जांच के नतीजे जारी करना शुरू कर दिए हैं। बोर्ड ने एक बयान में कहा कि इन नतीजों का ऐलान मरहलेवार किया जा रहा है, जिनमें से 87% से ज्यादा दरखास्तों के नतीजों का ऐलान कल कर दिया गया। बाकी दरखास्तों के नतीजे दीगर मरहलों में जाहिर कर दिए जाएंगे और उम्मीद है कि यह अमल जल्द ही मुकम्मल हो जाएगा। दरखास्त किस मरहले में है इसकी मालूमात results.digilocker.gov.in पर की जा सकती है। सीबीएसई ने तलबा को यकीन दिलाया है कि हर एक दरखास्त एक बड़े, शफाफ और करीबी नजर रखने वाले निजाम से गुजारी गई है। तलबा को मशवरा दिया जाता है कि वो अफवाहों या गैर तस्दीक शुदा सोशल मीडिया पोस्ट पर ध्यान न दें और वो सही मालूमात के लिए सीबीएसई के सरकारी बयानात पर ही भरोसा करें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2026 के पद्म इनामात सिविल अवार्ड्स की कल दूसरी तकरीब में अदा करेंगी। इस मौके पर हम अपनी सीरीज आकाशवाणी पर लोगों के पद्म के हिस्से के तौर पर आपके लिए 15 खसूसी प्रोग्राम नशर कर रहे हैं।
2: लिख के गया ऐसे करते करते लेखक का दर्जा मिल गया।
3: सोना घाटी की पहाड़ी, पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वृक्ष विहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियाँ कुछ बची थी और वहाँ पर 8000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई।
4: समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए, आदमी के लिए हम सोचा क्या करना है और क्या नहीं करना है।
5: मेरे मन माया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है।
1: आप इस गुफ्तगू का आज और कल 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुबह 9:10 से सुन सकते हैं। ये प्रोग्राम आप न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन ऑफिशियल YouTube पर भी सुन सकते हैं। 19वां मुंबई बैन अलाक़वामी फिल्म फेस्टिवल मिफ 2026 कल शाम एक शानदार तकरीब के साथ इख्तिताम पसीर हो गया। मुंबई में इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने गैर अफसानवी सिनेमा के लिए दुनिया में मुंबई बैन अलाक़वामी फिल्म फेस्टिवल को एक सबसे पुरवकार फेस्टिवल करार दिया। पोलैंड की दस्तावेजी फिल्म सिल्वर को

0: 054-222-7658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मधुरिमा और ये कार्यक्रम लेकर आ गई हूँ मैं, यानी आपकी रेडियो हम सफर नीलू तिवारी। तो कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की सुरीली महफिल में हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय जो हर इंसान के जीवन से जुड़ा है, सफर और हम सफर। जिंदगी एक लंबा सफर है। जन्म से लेकर अंतिम पड़ाव तक हम निरंतर चलते रहते हैं। इस सफर में कभी खुशियों की धूप मिलती है, कभी चुनौतियों की छांव, कभी राहें आसान होती हैं तो कभी कठिन। लेकिन इन रास्तों को आसान बना देता है किसी अपने का साथ। हम सफर वो नहीं जो सिर्फ हमारे साथ चले, बल्कि वो है जो हमारे सुख दुख, हंसी आंसू, हार जीत, हर पल में हमारा हाथ थामे रखे। तो आइए जीवन के इसी खूबसूरत सफर को गीतों और बातों के साथ महसूस करते हैं।

दोस्तों, जब हम अपने जीवन के बीते पन्नों को पलटते हैं तो एहसास होता है कि मंजिल से ज्यादा खूबसूरत वे लोग थे जो रास्ते में हमारे साथ चले। बचपन में माता पिता हमारी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, स्कूल के दिनों में दोस्त हमारे हम सफर बनते हैं, और फिर जीवन के किसी मोड़ पर कुछ ऐसे रास्ते मिलते हैं जो हमेशा के लिए दिल में बस जाते हैं। रास्ते बदल जाते हैं, मौसम बदल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यादों में हमेशा साथ चलते रहते हैं।

दोस्तों आप सुन रहे हैं मधुरिमा अपने रेडियो हम सफर नीलू तिवारी के साथ। श्रोताओं, हर सफर का एक मकसद होता है। कोई अपने सपनों की तलाश में निकलता है, कोई अपने परिवार की खुशियों के लिए संघर्ष करता है, लेकिन जब राह मुश्किल हो और कोई अपना कह दे मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो थकी हुई राहें भी आसान लगने लगती हैं। जीवन में सच्चे हमसफर बहुत कम मिलते हैं, इसलिए जो लोग आपके साथ खड़े हैं ना, उनकी कद्र कीजिए। सफर का असली आनंद मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, बल्कि उन पलों में है जिन्हें हम रास्ते में जीते हैं। किसी दोस्त के साथ बिताई गई शाम, परिवार के साथ गुजारे हुए पल, किसी अपने की मुस्कान, यही तो जीवन की असली दौलत है। मंजिलें तो मिल ही जाती हैं, लेकिन यादें रास्तों में बनती हैं, और रिश्तों की खुशबू ही जीवन को महकाती है।

दोस्तों, समय का पहिया कभी नहीं रुकता। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो दूरी से नहीं, दिल से जुड़ते हैं। कभी कभी कोई व्यक्ति हमारे साथ नहीं होता, लेकिन उसकी बातें, उसका स्नेह और उसकी सीख जीवन भर हमारे हमसफर बने रहते हैं। यही रिश्ते जीवन को अर्थ देते हैं और इस सफर को खूबसूरत बनाते हैं। जिंदगी का सफर चलता रहेगा, मंजिलें आती रहेंगी, रास्ते बदलते रहेंगे, लेकिन जो लोग हमारे साथ चलते हैं वही इस सफर को यादगार बनाते हैं। आज की प्रस्तुति से बस इतना सा संदेश, सफर कितना लंबा है ये मायने नहीं रखता, साथ चलने वाला कैसा है ये मायने रखता है, क्योंकि अच्छे हम सफर ही कठिन रास्तों को भी आसान बना देते हैं। इसी खूबसूरत विचार के साथ अपने रेडियो हम सफर नीलू तिवारी को दीजिए अनुमति कार्यक्रम मधुरिमा समाप्त करने की। नमस्कार, खुश रहिए, अपनों का साथ निभाइए और सुनते रहिए मधुरिमा। राहें बदल जाए तो बदल जाने दीजिए, लेकिन रिश्तों की गर्माहट कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि जिंदगी के सफर में सबसे सुंदर मंजिल एक सच्चा हम सफर ही होता है। नमस्कार।

मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मधुरिमा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:15 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे जिले की हलचल, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कुशीनगर और मिर्जापुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कुशीनगर जिले की हलचल, आलेख और स्वर है डॉक्टर विवेक कुमार पांडे का।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों कुशीनगर जिले के तमकुही राज में आयोजित एक कार्यक्रम में तमकुही राज व फाजिलनगर विधानसभा क्षेत्रों की 424 करोड़ की लागत वाली 278 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने यहां जनता से कोई सरोकार नहीं रखा। यहां बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, युवाओं के रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं थी। 25 साल पहले यहां जंगल पार्टी का आतंक था, इंसेफेलाइटिस से पूरा जिला प्रभावित था, मुसहर समुदाय में भूखमरी थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आने के बाद कुशीनगर जिले की तस्वीर बदल गई है। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि यह तभी संभव हुआ है जब आपने अपना अच्छा जनप्रतिनिधि चुना है। उन्होंने कहा कि अब फाजिलनगर को पावागढ़ के नाम से जाना जाएगा, हम इसकी मान्यता देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट

0: कुशीनगर से शीघ्र ही उड़ान शुरू होगी तथा इसी सत्र से कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही जिले की अन्य विधानसभाओं में भी जनसभा करेंगे।
1: भगवान महावीर से नाम होगा, भगवान महावीर के साथ 24वें तीर्थंकर के साथ पावागढ़ का नाम और पावागढ़ की परंपरा और पावागढ़ की संस्कृति के साथ जुड़ करके देश और दुनिया आपके पास आएगी। अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कैसे होती है सनातन धर्मावलंबियों से ज्यादा कौन जानता है।
0: इससे पहले उन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को चेक और प्रमाण पत्र सौंपा। जनसभा को क्षेत्रीय सांसद शशांक मणि त्रिपाठी, गोरखपुर के सांसद रवि किशन तथा अन्य स्थानीय विधायक गण ने संबोधित किया। बाद में कुशीनगर स्थित निर्माणाधीन महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उनके साथ प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जनप्रतिनिधिगण तथा वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्यों के प्रगति की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को गुणवत्ता एवं समयबद्धता के साथ विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित हो रहा यह विश्वविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों, कृषि वैज्ञानिकों तथा युवाओं के लिए आधुनिक कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं नवाचार का प्रमुख केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ना, खेती की लागत कम करना, उत्पादन बढ़ाना तथा किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि सुनिश्चित करना है। प्रदेश सरकार के कारागार मंत्री एवं कुशीनगर जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान ने कुशीनगर में सांसद विजय दुबे एवं राज्यसभा सांसद आरपीएन सिंह व विधायक गण के साथ केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास कार्यों एवं सुशासन की उपलब्धियों को साझा किया।
2: पीएम किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को इसका फायदा मिल रहा है। हमारी जो लखपति दीदी हैं, वो अपने सरकार से मुख्यमंत्री जीवा योजना के अंतर्गत जो उनको लोन मिलता है, अपने तो रोजगार पा रहे, दूसरे को भी रोजगार देने का काम करते।
0: इस अवसर पर जिला मुख्यालय पर सूचना विभाग द्वारा केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय उपलब्धियों संबंधी तथा विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी और स्टॉलों का उन्होंने उद्घाटन व अवलोकन किया। प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को सरकार की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी प्रदान की गई है। राज्य महिला आयोग की सदस्य जनक नंदिनी की अध्यक्षता में कुशीनगर जिले की हाटा तहसील में महिला उत्पीड़न की समस्याओं पर महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। सुनवाई के दौरान कुल 23 आवेदन सामने आए, जिसे संबंधित विभागों को निस्तारण हेतु भेजा गया। महिला आयोग की सदस्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हाटा, आंगनबाड़ी केंद्र, वृद्धाश्रम व वन स्टॉप सेंटर का औचक निरीक्षण किया। कुशीनगर जिले में जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में विधायी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद में अपना कार्यकाल पूरा करने के उपरांत अवकाश प्राप्त विंग कमांडर आलोक सक्सेना ने अपना प्रभार नवागत अधिकारी अवकाश प्राप्त कर्नल डॉक्टर सुधाकर त्यागी को अपना कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों ने पुष्प मालाएं भेंट कर विंग कमांडर सक्सेना को भावभीनी विदाई दी। अपने संबोधन में उन्होंने सभी पूर्व सैनिकों एवं कार्यालय स्टाफ का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कुशीनगर में उनका कार्यकाल अत्यंत सुखद एवं यादगार रहा है तथा सभी का भरपूर स्नेह, सहयोग और सम्मान प्राप्त हुआ है।
3: कुशीनगर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं मिर्जापुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है SM सभा का।
4: कालीन और पर्यटन के लिए पहचान रखने वाला मिर्जापुर अब औद्योगिक विकास के नए दौर में प्रवेश करने जा रहा है। जिले में 78,148 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव पहुंचा हुआ है। इन निवेशों से न सिर्फ उद्योगों का विस्तार होगा बल्कि 13,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा। जिले को अब तक 192 निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें से 104 परियोजनाओं को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए चयनित किया गया है। इनमें 25,625 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है। प्रदेश की योगी सरकार ने हरियाली बढ़ाने के लिए जन सहभागिता सुनिश्चित करते हुए पौधारोपण का महाअभियान की अभी हाल में ही शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का प्रयास है कि अभियान के तहत रोपे गए पौधों को 100% सुरक्षित रखा जाए और आम जन को पौधारोपण के प्रति ज्यादा से ज्यादा जागरूक भी किया जाए। इसी कड़ी में मिर्जापुर जनपद में पौधारोपण अभियान को तीज त्योहारों और संस्कृति से जोड़ते हुए विभिन्न प्रकार के वनों की स्थापना के साथ ही विशिष्ट प्रकार के आयोजन भी किए जाएंगे, जिससे आमजन पौधारोपण के साथ साथ उनकी सुरक्षा के लिए भी जागरूक हो सके। वृक्षारोपण अभियान 2026 के तहत जिले में कुल 87,50,015 पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। प्रभागी वनाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए मानसून में 5 वनों व 2 वाटिकाओं की

0: स्थापना वन विभाग व अन्य विभागों द्वारा की जाएगी। इनमें मुख्य रूप से महर्षि चरक औषधि वन स्थापित किया जाएगा, जहां स्वास्थ्य के लिए लाभकारी जड़ी बूटियों और औषधि पौधों का रोपण होगा। इसके अलावा समरस वन, समृद्धि वन, कपिल वन एवं ऊर्जा वन भी बनाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के अवसर पर जनपद के बरकछा में वंदे मातरम वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर स्वतंत्रता सेनानियों के प्रिय पौधों का रोपण किया जाएगा। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर मणिहान रेंज में कप्फा झरना के पास रक्षाबंधन वाटिका की स्थापना की जाएगी, जहां पर भाई बहन मिलकर फलदार पौधों का रोपण करेंगे। इसके अलावा उद्यान विभाग की ओर से आम भंडारा का भी आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन के जरिए लोगों को फलदार पौधे रोपने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। इसी तरह ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रत्येक विकास खंड में सहजन का भंडारा कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के तहत आम जनों को रोपने के लिए सहजन के पौधे भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आयोजन का उद्देश्य सहजन के औषधि गुणों से आम जन को रूबरू कराते हुए ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण के लिए जागरूक करना है। केंद्र में भाजपा की मोदी सरकार के 12 साल पूरा होने पर मिर्जापुर के प्रभारी मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी गत दिनों मिर्जापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जिला पंचायत के सभागार में प्रेस वार्ता की और मोदी सरकार के कामों को गिनाया। कहा, भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। देश के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को सरकार के योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
1: आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे लंबे समय तक चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में काम करने का रिकॉर्ड बनाया है। देश के सबसे अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, जिसका नतीजा है कि 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। किसानों की आमदनी बढ़ाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, युवाओं को रोजगार देने वाला बनाना, निवेश को नई ऊंचाई पर ले जाना सरकार की प्रमुख प्राथमिकता रही है।
0: केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने गत दिनों मिर्जापुर के बीएलजे ग्राउंड में जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा लगाई गई विकसित भारत प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा विकसित भारत प्रदर्शनी व जनपद के विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की 12 वर्ष की योजनाओं की उपलब्धियों एवं प्रदेश सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों तथा स्थानीय उपलब्धियों और मिर्जापुर के विकास कार्यों को दिखाया गया था। केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन उर्वरक भारत सरकार अनुप्रिया पटेल ने देवरी ब्लॉक हलिया मिर्जापुर में भूमि पूजन कर हरबरा एमपी बॉर्डर तक मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि चौड़ीकरण व उच्चीकरण इन दिनों कार्यों के शुभारंभ की आवश्यकता बहुत लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इसके लिए हम निरंतर प्रयासरत भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए के शर्मा गत दिनों विंध्याचल धाम पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का विधि विधान से दर्शन पूजन किया, विकास और जन कल्याण की कामना की। दर्शन के उपरांत ए के शर्मा ने विद्युत विभाग के कार्यों पर प्रकाश डाला और पत्रकारों के सवालों का जवाब दिया।
2: स्मार्ट मीटर जो है वो प्रीपेड मोड में नहीं बल्कि पोस्ट पेड मोड में चल रहे हैं और कहीं कोई मीटर को लेकर कोई समस्या नहीं है। गर्मी का सीजन है, थोड़ा लोड बढ़ने से कई बार ट्रिपिंग होती है, लेकिन पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा बिजली आ रही है। विंध्याचल जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ अगर 20 घंटे बिजली आ रही है और 2-4 मिनट के लिए कहीं किसी की आंधी आती है, तूफान आता है, उसमें बिजली की व्यवस्था में थोड़ा विक्षेप होता है, नहीं तो सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में भी 20 घंटे कम से कम बिजली और शहरी क्षेत्रों में तो 24 घंटे बिजली हम देने का।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:25 हो रहे हैं। अब लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार रवि सोनकर पुत्र बहुआ सोनकर मच्छरहट्टा वार्ड थाना रामनगर वाराणसी से दिनांक 8 मई 2022 से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी लंबाई 5 फीट 6 इंच है, रंग सांवला, इनकी उम्र 28 वर्ष है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रामनगर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त थाना रामनगर से प्राप्त सूचना के अनुसार विश्वनाथ शर्मा उर्फ गुड्डू पुत्र छेदी शर्मा बटाओबीर मच्छरहट्टा

वार्ड थाना रामनगर वाराणसी से दिनांक 18 मार्च 2024 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 40 वर्ष, लंबाई 5 फीट है, रंग सांवला है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रामनगर को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार सत्येंद्र कुमार सिंह पुत्र स्वर्गीय रणजीत सिंह मच्छरहट्टा रामनगर वाराणसी से दिनांक 29 मार्च 2026 से लापता हैं। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 55 वर्ष, लंबाई 5 फीट, रंग गोरा है। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रामनगर वाराणसी को सूचित करें। थाना रामनगर वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार आसिफ हाशमी पुत्र नसीम हाशमी रायपुरिया नारायणपुर थाना अदलहाट मिर्जापुर से दिनांक 4 मई 2026 से लापता है। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 22 वर्ष है, लंबाई 4 फीट, रंग गेहुआ है। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना रामनगर को सूचित करें। सहायक पुलिस आयुक्त पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार नेहा सिंह पुत्री शिवम सिंह ग्राम पिंडराई पोस्ट पिंडरा फूलपुर जिला वाराणसी से दिनांक 8 अप्रैल 2026 सुबह 9 बजे से अपनी बेटी लावण्या सिंह को लेकर घर से पिंडरा दवा लेने गई और वापस नहीं आई। इनके बारे में जानकारी इस प्रकार है। इनकी उम्र 24 वर्ष, रंग गोरा, लंबाई 5 फीट। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर अपने निकट के थाने या थाना पिंडरा कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई।

स्वच्छता को आदत बनाओ, रोज सफाई करना ना भूल पाओ। हर नागरिक का ये हो सपना, स्वच्छ हो संपूर्ण भारत अपना। जब हमारा भारत स्वच्छ होगा तभी तो हर सपना सच होगा। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे उर्दू कार्यक्रम, जिसे हम रिले करेंगे अपने लखनऊ केंद्र से।

0: का लखनऊ केंद्र है, पेश है उर्दू कार्यक्रम।
1: पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामईन को निकहत सिद्दीकी का आदाब। सामईन, आज उर्दू बज्म में हम आपके लिए लेकर आए हैं मकाला मिर्ज़ा हादी रुस्वा नावेल उमरावजान अदा के आईने में, और कलाम शायर के तहत सुनिएगा जनाब आफताब अहमद अंसारी से उनका कलाम। सबसे पहले समाअत फरमाइए डॉक्टर जूही बेगम से मकाला मिर्ज़ा हादी रुस्वा नावेल उमरावजान अदा के आईने में।
2: मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा का शुमार उर्दू के नाबग़े रोज़गार उदबा में होता है। हमाजहत शख्सियत के मालिक रुस्वा बयक वक्त मुफक्किर, फ़लसफ़ी, रियाजी दां और मौसीकी के रमज़ शनास थे। उनकी इल्मी इस्तेदाद ने उनकी तख्लीकी बसीरत को गहराई गिराई अता की। यही वजह है कि उनका तख्लीकी जहान जज्बात व एहसासात के साथ साथ फ़िक्र व दानिश की रोशनी से भी मुनव्वर है। मिर्ज़ा हादी रुस्वा का ताल्लुक नावल के हवाले से उर्दू अदब के उन अजीम मेमारों में होता है जिन्होंने सिर्फ नावल को इस्तेहकाम बख्शा। उन्होंने नावल निगारी की दुनिया में उस वक्त कदम रखा जब उर्दू फिक्शन दास्तानवी असरात

से मुकम्मल तौर पर नजात हासिल नहीं कर सका था। रुस्वा ने अपनी खलाकाना सलाहियत, फनी शऊर और हकीकत पसंदाना तर्ज इजहार के जरिए उर्दू नावल को एक नई फिक्री और जमालियाती जहत अता की। उन्होंने इस सिन्फ का रिश्ता न सिर्फ जिंदगी की हकीकतों से जोड़ा बल्कि उसे अजमत, वक़ार, फनी पुख्तगी और नफसियाती बसीरत अता की। अगरचे उर्दू नावल के इब्तदाई नकूश डिप्टी नज़ीर अहमद, रतन नाज सरशार और अब्दुल हलीम शरर के यहाँ मिलते हैं, लेकिन नावल को इंसानी शख्सियत के दाखिली रमूज व असरार, मुआशरती तजादात और तहजीबी जवाल के शऊर से मुतारफ कराने का कारहाए नुमाया रुस्वा ने अंजाम दिया। रुस्वा का अहद सियासी, तहजीबी, मुआशी, समाजी हर सतह पर बहरान का शिकार था। बिलखसूस 1857 के बाद हिंदुस्तान की मुआशरती और तहजीबी जिंदगी शदीद तगैरात से गुजर रही थी। कदीम अकदार मिट रही थी और नई तहजीबी कुवतें सर उठा रही थीं। रुस्वा ने इस उबूरी दौर के इंसानी और तहजीबी मसाइल का बनजर गैर मुताला किया और उन्हें अपने नावलों में नहायत हकीकत बीनी से पेश किया। यूं तो रुस्वा का तख्लीकी सरमाया इफ्शाए राज, जाते शरीफ, शरीफ ज़ादा, अख्तरी बेगम जैसे नावलों से मामूर है, लेकिन उनकी शोहरत का तमाम तरदारो मदार उनके शोरह आफाक नावल उमराव जान अदा पर है। उर्दू नावल की तारीख में बाज तसनीफात ऐसी हैं जो महज अदबी सरमाया नहीं बल्कि अपने अहद का तहजीबी, समाजी और तारीखी दस्तावेज भी हैं। उमराव जान अदा का शुमार ऐसी ही तख्लीकात में होता है। अपने नावलों को अपने जमाने की तारीख कहकर पुकारने वाले रुस्वा ने उमराव जान की सरगुजश्त के पसे पर्दा लखनऊ की उस तहजीब की दास्तान बयान की है जो अपने हुस्न लताफत के बावजूद जवाल के दहाने पर खड़ी है। महफिलें, मुशायरे, मूसीकी, रक्स व सुरूर, जबान की शाइस्तगी और मुआशरती आदाब ये सब मौजूद हैं, लेकिन उसके बतन में एक टूटती हुई दुनिया की आहट भी सुनाई देती है। रुस्वा ने किसी मुअर्रिख की मानिंद नहीं बल्कि एक हसास फनकार की हैसियत से लखनऊ की जवाल पजीर तहजीब, तवायफाना और ऐश परस्ताना मुआशरत, इंसानी जज्बात और नफसियाती कैफियात को इस फनकाराना महारत से पेश किया है कि नावल उर्दू अदब के नवादिरात में शामिल हो गया। मिर्जा हादी रुस्वा की अदबी शख्सियत और उनकी नावल निगारी के फनकाराना महासिन को हम उमराव जान अदा के आईने में बखूबी देख और समझ सकते हैं। उमराव जान अदा पहली मरतबा 1899 में शाया हुआ। ये नावल लखनऊ की एक मशहूर तवायफ उमराव जान की जिंदगी की दास्तान पर मबनी है। उमराव जान अदा खुद अपनी जिंदगी की रुदाद रुस्वा से बयान करती है। उमराव जान को, जिसका असल नाम अमीरन था, बचपन में ही अगवा करके लखनऊ के कोठे पर फरोख्त कर दिया जाता है, जहाँ उस जमाने के दस्तूर के मुताबिक तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता होकर वो एक मशहूर तवायफ बन जाती है। जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल, मोहब्बतों, महरूमियों, कामयाबी और नाकामियों से गुजरते हुए उसकी शख्सियत कारी के रूबरू मुकम्मल तौर पर मुजस्सम हो उठती है। दरअसल रुस्वा ने उमराव जान के किरदार के जरिए उस तबके की जिंदगी को मौजू बयान बनाया है जिसे मुआशरा हकारत की निगाह से देखता है। रुस्वा का कमाल ये है कि उन्होंने एक तवायफ को इंतहाई जहीन, हसास और सुखन शनास औरत के रूप में पेश किया है। मिर्जा रुस्वा के नावलों की सबसे अहम फनी खसूसियत हकीकत निगारी है। उमराव जान अदा में उन्होंने जिंदगी को तखयलाती और रोमानवी अंदाज के बजाय उसके हकीकी पैराए में पेश किया है। इस नावल में लखनऊ की मुआशरत, रस्म व रिवाज, तवायफों की जिंदगी, उमरा, रुसा और नवाबीन की महफिल ऐशो तरफ, मौसीकी, तहजीब और सकाफत और माशरती तजादात नहायत जामे और फितरी अंदाज में सामने आते हैं। इस जिम्न में रुस्वा की नावल निगारी का इम्तियाज ये है कि उनकी हकीकत निगारी महज खारजी मनाजिर तक महदूद नहीं बल्कि इंसानी बातिन तक रसाई हासिल करती है। उमराव जान अदा का प्लॉट नहायत मरबूत और फितरी है। नावल की कहानी उमराव जान की जिंदगी के गिर्द घूमती है और वाकयात एक मंतिकी रब्त के साथ इर्तिका पजीर होते हैं। अमीरन का अगवा होकर खानम के कोठे पर पहुंचना,
उसका उमराव जान बनना और एक ऐसी दुनिया में दाखिल होना जहां खानम के अलावा बुआ हुसैनी, बिस्मिल्ला और खुर्शीद जान हैं, गौहर मिर्जा, नवाब सुल्तान, फजल अली और फैज अली हैं, और उन सब की अपनी अपनी कहानी है। मुख्तलिफ

दिन कटेगा जड़ से शजर, उसके बाद क्या बिखरेगी धूप होगा सफर, उसके बाद क्या बिखरेगी धूप होगा सफर, उसके बाद क्या उठेगा एक हुजूम कयामत हर एक सू, उठेगा एक हुजूम कयामत हर एक सू, होगी जमीन जेरो जबर उसके बाद क्या, होगी जमीन जेरो जबर उसके बाद क्या। और आंखों में पाल रखे हैं जो ख्वाब जिंदगी, आंखों में पाल रखे हैं जो ख्वाब जिंदगी, टूटेंगे सारे ख्वाब अगर उसके बाद क्या, टूटेंगे सारे ख्वाब अगर उसके बाद क्या। और कायल नहीं जो लोग वफाओं की राह के, कायल नहीं जो लोग वफाओं की राह के, मिल जाए भी जो उनको डगर उसके बाद क्या, मिल जाए भी जो उनको डगर उसके बाद क्या। और मीजान अदल तुमने तो नीलाम कर दिया, मीजान अदल तुमने तो नीलाम कर दिया, हाथों में होगा तेगो सिपर उसके बाद क्या, हाथों में होगा तेगो सिपर उसके बाद क्या। और ये मक्ता देखिएगा कि एक शख्स ले गया मेरे ख्वाबों का आफताब, एक शख्स ले गया मेरे ख्वाबों का आफताब, अब आए भी जो उसकी खबर उसके बाद क्या, अब आए भी जो उसकी खबर उसके बाद क्या। एक गजल और देखिए पेश करता हूँ। पेड़ पर मुंतशिर घोंसला देखकर, मतलब है कि पेड़ पर मुंतशिर घोंसला देखकर, गम से पत्थर हुई फाख्ता देखकर, गम से पत्थर हुई फाख्ता देखकर, अब फूल शाखों पे कुछ और खिलने लगे, फूल शाखों पे कुछ और खिलने लगे, तितलियों का हसी मशगला देखकर, तितलियों का हसी मशगला देखकर। और शब की आंखों में भी रोशनी बढ़ गई, बतौर खास देखिएगा कि शब की आंखों में भी रोशनी बढ़ गई, चांद का झील में आईना देखकर, चांद का झील में आईना देखकर, फूल पत्तों से बाहर निकलने लगे, फूल पत्तों से बाहर निकलने लगे, शबनमी धूप का दायरा देखकर, शबनमी धूप का दायरा देखकर। और दिल की वीरान दहलीज महकी बहुत, दिल की वीरान दहलीज महकी बहुत, आपके लब पे एक कहकहा देखकर, आपके लब पे एक कहकहा देखकर। और धूप ने ओढ़ ली शाम की चादरें, धूप ने ओढ़ ली शाम की चादरें, अब्र का टूटता हौसला देखकर, अब्र का टूटता हौसला देखकर। और लफ्ज कागज पर थक कर बिखरने लगे, लफ्ज कागज पे थक कर बिखरने लगे, रंग गिरता रहा हाशिया देखकर, रंग गिरता रहा हाशिया देखकर। और एक दरिया किनारे से वापस हुआ, एक दरिया किनारे से वापस हुआ, रेत पर प्यास का हादसा देखकर, रेत पर प्यास का हादसा देखकर। और उम्र भर जिसको तामीर करते रहे, उम्र भर जिसको तामीर करते रहे, खाक में मिल गया जलजला देखकर, खाक में मिल गया जलजला देखकर। फिर निकलने को है आफताब एक नया, फिर निकलने को है आफताब एक नया, शब का बिखरा हुआ सिलसिला देखकर, शब का बिखरा हुआ सिलसिला देखकर। आइए हजरात एक गजल और पेश खिदमत है। मतलब मुलाजा कि अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, जलता हुआ चराग बुझाने से क्या मिला, अपना वजूद खुद ही मिटाने से क्या मिला, जलता हुआ चराग बुझाने से क्या मिला। और जो वक्त था वो रेत की सूरत निकल गया, जो वक्त था वो रेत की सूरत निकल गया, यादों के नक्श दिल में बनाने से क्या मिला, यादों के नक्श दिल में बनाने से क्या मिला। वो शख्स उम्र भर का मुसाफिर ही रह गया, वो शख्स उम्र भर का मुसाफिर ही रह गया, घर छोड़कर जहां को बसाने से क्या मिला, घर छोड़कर जहां को बसाने से क्या मिला। और खुद साख्ता उसूल की जंजीर तोड़कर, खुद साख्ता उसूल की जंजीर तोड़कर, गैरों के दर पे सर को झुकाने से क्या मिला, गैरों के दर पे सर को झुकाने से क्या मिला। दरिया बुझा रहा था
समुंदर की प्यास को। दरिया बुझा रहा था समुंदर की प्यास को, सहरा को सब्ज बाग दिखाने से क्या मिला।

0: सुहानी। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप आफताब अहमद अंसारी का कलाम समाअत फरमा रहे थे, और इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होता है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नशर किया गया। इस प्रोग्राम को आपकी खिदमत में पेश किया निकहत सिद्दीकी ने।
2: हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए
5: 0542227658।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें
6: 0542227658।
2: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। सुबह के 9:50 हो रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए लोक संगीत। आज की कलाकार हैं रीना देवी और साथी। इनके स्वर में सबसे पहले लीजिए सुनिए देवी गीत।

आप सुन रहे हैं लोक संगीत। आज की कलाकार हैं रीना देवी। अब इनके स्वर में लीजिए सुनिए खेमटा गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत। आज की कलाकार थी रीना देवी। इसी के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए, सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला की 21वीं कड़ी।
1: ये आकाशवाणी है, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
2: इन द लास्ट 12 इयर्स

0: of the NDA government, Prime Minister Narendra Modi has always emphasized that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
1: Thank you.
0: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स है हमारे देश में. सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव की किस तरह से ग्रोथ हुआ है. सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप टू हमें बताएं, इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
1: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है. तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था. तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए. अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे. मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी. तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए. उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस. उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू होगी, जो उसके पिलर्स हैं खास करके, जो एक हम बात करते हैं कि एक फेसलेस, पेपरलेस और फिर लेसर प्रोसीजर्स एंड लेसर कंप्लाइंसेस, ये चार जो पिलर्स हैं, इन्होंने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आगे एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू दी है, जिसे हम आज अगर हम देखते हैं हमारे स्टार्टअप्स, जो आपने बात की कि लगभग कोई 360 स्टार्टअप्स थे, उसके बाद अभी 220,000 हैं. अगर हम देखें कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अभी हमारा लास्ट ईयर का अगर हम उसका ग्रोथ रेट देखें, तो मैन्युफैक्चरिंग ग्रू मोर देन 10%. सो डबल डिजिट ग्रोथ इज कमिंग इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. तो ये सब चीजें जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की वजह से ही हो पाई, जैसे कि हमारा जो इन्वेस्टर है, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ और जो एफडीआई आना शुरू हुआ, जो 2019-20 के बाद एक एफडीआई को ब्रेक थ्रू मिली और अभी हम 1 ट्रिलियन से भी ज्यादा क्यूमुलेटिव एफडीआई अट्रैक्ट कर चुके हैं हमारे देश में. 1 ट्रिलियन से ज्यादा का एफडीआई का एक क्यूमुलेटिव जो भंडार है वो हो चुका है, और अभी लास्ट ईयर ही हमारा एफडीआई $95 बिलियन था. तो लगभग हम, मेरे ख्याल से इसी वर्ष में हम $100 बिलियन का एक एफडीआई डेस्टिनेशन बनने जा रहे हैं. सो दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अवर इज ऑफ डूइंग बिजनेस विच हैज सपोर्टेड द मैन्युफैक्चरिंग, अवर एफडीआई एंड अवर वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटीज टू मूव फॉरवर्ड एंड टू बिकम मोर एंड मोर रेजिलियंट इन द ग्लोबल इकोनॉमी.
0: एब्सोल्युटली. सो मिस्टर चिनॉय, Dr. Sharma has extensively explained that how the ease of doing business has become the mantra for the push that has come to the manufacturing sector, to the Make in India initiative of the government and the GDP growth. Would you say that the government's focus has gradually shifted from a compliance-heavy system to a facilitation-driven ecosystem? How do you see this basic mindset change, or you can say paradigm shift, in how the government is taking a collaborative and inclusive approach?
2: If you look at the whole ecosystem, right, earlier business was

0: आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है। जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था। तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है। तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा, उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया है, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को एक लोन मिलता है अपने टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है। और साथ में क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है। वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था। और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो। एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव-गांव में, और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चली नहीं, तो पहले ये एक बहुत ही बुरी नजरिया से देखा जाता था। आप कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो।
1: बिल्कुल।
0: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में। अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया। और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में यंग स्टार्टअप्स जो है, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
1: और कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल। आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था, जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजन ने जो कोलैबोरेट किया था। अभी देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपीई किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे, पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीई किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था, और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात की रिफॉर्म्स से अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे, वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया, और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर

0: डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है, और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और एक कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं, जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं, उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इम्प्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में ये कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
0: जी,
1: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप इन्वायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्होंने क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करे कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
0: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है।
0: yes.
2: और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका, उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ GDP होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की, और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ GDP, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि PLI स्कीम, जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला, जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी। तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे RBI का एस्टिमेट 6.6 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडी

अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आपकी कसम से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है आर डी बर्मन ने।

अब लीजिए सुनिए अनुराधा पौडवाल और पंकज उदास की आवाज में बेटा फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है दिलीप ताहिर ने और संगीत दिया है दिलीप सेन और समीर सेन ने।

अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में चांदनी फिल्म से ये गीत। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है शिव हरि ने।

कार्यक्रम के अंत में अब लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म दहलीज से ये गीत। गीत लिखा है सहान कमाल ने और संगीत दिया है रवि ने।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 11 बजे हैं। प्रस्तुत है एक कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हमसफर अंजना झा के साथ। हमने आपके पत्रों को चुना है और उसी में से आपकी ही पसंद के गीत भी। तो करते हैं आज के कार्यक्रम की शुरुआत, और ये रहा आपकी पसंद का पहला गाना।

सिलसिला फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और इस गीत की फरमाइश आई ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, ग्राम भरभूजी मध्य प्रदेश से रघुनाथ मालवीय भंवरवाई, सुषमा पुष्पा ममता मंजू बबीता राधा सरिता श्याम बाबू दुर्गा मधुवाला विनोद

विशाल मिलन और ओम प्रकाश की। इसी गीत को सुनना चाहा डोंगरगांव राज नांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और अब हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाएंगे। उस गीत के लिए फरमाइश है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, मॉडल टाउन पानीपत से संदीप गुगलानी, आशा गुगलानी, पूजा नानू, नेहा सागर और हिमांशु गुगलानी, और अमरपुर छत्तीसगढ़ से रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी और दिशा श्रीवास्तव।

श्रोताओ, आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे इस विशेष कार्यक्रम के बाद। पद्म पुरस्कार पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुड्डू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही हैं प्रियंका अरोड़ा।
1: आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध संथाली रचनाकार रबीलाल टुड्डू जी। 77 वर्षीय श्री टुड्डू को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए इस वर्ष पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है। उनकी रचनाएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं, बल्कि इन्होंने सामाजिक जागरूकता और सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूती दी है। आइए आज उनसे बातचीत में जानते हैं उनके लेखन की प्रेरणा और उनके साहित्यिक सफर के बारे में। टुड्डू जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में।
2: नमस्ते।
1: आपको देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से अलंकृत किया जा रहा है, ये जानकर आपको कैसा लग रहा है?
2: ऐसे तो अच्छा ही लगता है, ये तो खूबी आनंद का बात है। बहुत सा मिला है इसका पहले, लेकिन ये तो नेशनल अवार्ड है ना, इसलिए ज्यादा खुश है। हम परिवार का स्वागत में खुश है।
1: आपका साहित्यिक लेखन अत्यंत विस्तृत और प्रभावशाली है। आपकी एक रचना है परसी खतीर, जिसके लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। इस रचना के बारे में हमें बताएं।
2: किताब एक ड्रामा का है, परसी खतीर। परसी खतीर के लिए ही सब कुछ मिल रहा है। वो तो एक हमारा जो भाषा के लिए आंदोलन था, भाषा स्वीकृति के लिए, जो 8वां तफसील में हमारा भाषा का स्वीकृति मिला है, ये भाषा आंदोलन का जो हिस्ट्री था वही हम ड्रामा का रूप में लिखा है। इसमें सोशल मैसेज भी है और जो लड़ाई का था उसका भी एक नाट्य रूप है, रोमांटिक भी है और भाषा आंदोलन का बाद भी उसी में है। इसलिए शायद हम लोगों का जो सिलेक्टर है अवार्ड का, वो चुन लिया है और डिक्लेयर भी हो गया पद्मश्री अवार्ड के लिए। हम बहुत खुश है।
1: आपकी इस कृति का मुख्य विषय और संदेश क्या रहा?
2: देखिए, बिना लड़ाई से कुछ नहीं मिलता है। या हम लोग इतना साल लड़के आया था 8वां सूची में संविधान का, कम से कम संताली भाषा का स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए बहुत साल से हम लोग लड़ाई करके बाद में जब डिक्लेयर हुआ, संताली भाषा 8वां तफसील में इंक्लूड हुआ, ये जो सक्सेस है, ये एक हिस्टोरिकल लड़ाई था। ये लड़ाई हम रोमांटिक वे से भी कोशिश किया है प्रेजेंट करने के लिए, और लड़ाई का एक मीडिया है ये भी। ड्रामा एक लड़ाई का भी इंस्ट्रूमेंट है। ये दोनों मिलके बड़ो सक्सेसफुल ये मिला है।
1: लेखन के प्रति आपकी रुचि कब से शुरू हुई?
2: वो तो स्कूल लाइफ से, हाई स्कूल में जब पढ़ता था उसी टाइम से हम शुरू किया है। ज्यादा से ज्यादा हम लोग ड्रामा लिखा है, प्रेजेंट किया है, परफॉर्म किया है, ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए। जनरल पब्लिक तो वो पढ़ना नहीं आता जिसको, वो तो हम क्या लिखा है वो कैसे जानेगा। लेकिन ड्रामा सब आदमी का पास एक्सेप्टेबल है। वो जब स्टेज में परफॉर्म होता है पब्लिक का पास बहुत इफेक्ट होता है, इसलिए हम ड्रामा को प्रेफर करता है।
1: आपका स्कूली जीवन कैसा रहा और क्या लेखन में रुचि बढ़ाने में आपके शिक्षकों की भी भूमिका रही?
2: बांग्ला मीडियम हम लोग का मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था, पढ़ाई का टाइम में बांग्ला में पढ़ता था हमारा। लेकिन बांग्ला हम लोगों का मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा है संताली। तो हम लोग क्या किया था, ज्यादा से ज्यादा संताली स्टूडेंट जो पक्षी का मापी के ये करता था, मीनिंग किसी को ठीक से पता नहीं था, लेकिन वो बोल बोल के पढ़ पढ़ के वो तो लिख देता था। हमारा भी ऐसा ही हैबिट था, जहां जो कुछ पढ़ा है हम टोटो नहीं लिखता है। आंसर पेपर में हम जो पढ़ा है वो टोटो नहीं लिख पाता है। हम क्या करता था, वो तो इसी का कंटेंट जो है वो अपना तरीके से हम लोग लिख देता था। इसी को हम लोगों का जो

0: मास्टर लोग को है, बहुत पसंद आता था। ये लड़का तो वो अपने आप लिख देता है, वो तो किसी को कंसल्ट नहीं करता है, नोटबुक या किताब तो नहीं कंसल्ट करता है। हम सिर्फ क्या प्रश्न है वो देख लिया और पढ़ा भी है, किताब में हम पढ़ा भी है। क्या करता था, जब लिखता था आंसर पेपर, जब लिखता था उस टाइम हम अपना से लिख देता था, इसलिए टीचर लोगों का बहुत पसंद आता था। उस टाइम से हमको इंस्पिरेशन मिलता था टीचर के पास से, अब लिख के जाओ, तुम्हारा जो खुश मन में है तुम लिख के जाओ। ऐसा करते करते करते करते पब्लिक लाइफ में भी आगे हम लोग जाओ, पब्लिक भी हमारा जो लिखन है बहुत पसंद करता था। हम तो रिएक्शन लेता था, कैसा लगा है, कैसा ही है, बोलता ना हम बहुत अच्छा लिखा है। तब तक इंस्पिरेशन मिल गया, हम लिख के गया, लिख के गया, लिख के गया, ऐसे करते करते लेखक का एक दर्जा मिल गया। यही है हमारा असली फ्रॉम बिगिनिंग, ऐसा एकटा इंस्पिरेशन मिल गया।
1: आपने स्कूली शिक्षा कहाँ से प्राप्त की?
0: प्राइमरी गांव में ही है, नुआड़ा गोड़ा निम्न बुनियादी विद्यालय, उसका बाद हाई स्कूल बदला हाई स्कूल है, वहाँ से पास आउट होके हम कलना कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, वहीं से प्योर साइंस लेके हम पास किया है। ऑनर्स नहीं मिला था उस टाइम, ऑनर्स मिलना बहुत टफ होता था, बहुत कंपटीशन होता था, तो हम तो ज़्यादा कॉम्पिटेंट उस टाइम नहीं था, इसलिए हम प्योर साइंस के लिए हम अप्लाई किया है, वही प्योर साइंस लेके ग्रेजुएशन किया है।
1: शिक्षा के बाद आपने अपनी नौकरी की शुरुआत कहाँ से की?
0: हम सर्विस के लिए बहुत से अप्लाई किया है, पहले हम मिला है एजी बंगाल में, अकाउंटेंट जनरल ऑफ वेस्ट बंगाल, वहीं से लोअर डिवीजन क्लर्क शुरू किया। हम चार साल बाद अपर डिवीजन का चांस आया, ऑडिटर पोस्ट के लिए चांस आया है, ऑडिटर भी हमको मिल गया, लेकिन एक साथ तीन चार नौकरी मिला है एक साथ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और एजी बंगाल का ऑडिटरशिप एक साथ मिल गया सब। तो फर्स्ट वन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, हम वहीं ज्वाइन कर लिया, वहीं से प्रमोशन होके असिस्टेंट मैनेजर, उसका बाद फिर दूसरा अप्लाई नहीं किया है, ये के लिए हायर पोस्ट के लिए हम वही असिस्टेंट मैनेजर होके रिटायर्ड किया है, लास्ट में रिटायर्ड किया है ओडिशा स्टेट से 2009 का दिसंबर में।
1: संथाली भाषा के प्रसार के लिए आपने बहुत काम किया है, आपके अनुसार मातृभाषा में शिक्षा क्यों आवश्यक है?
0: देखिए, जिसका मातृभाषा नहीं है उसका एडुकेशन भी नहीं होता है, दूसरा भाषा लेके आप एडुकेशन कितना टूट जाएंगे, ये तो संभव नहीं है, इसलिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सबको मातृभाषा से ही होना चाहिए। यही हमारा टारगेट भी था, लड़ाई भी था, काम भी ऐसा ही हम लोग करके आया है।
1: आगे भविष्य के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं?
0: अभी तो रिटायर्ड कर गया, बुढ़ापे में क्या काम करेगा, प्रैक्टिकली तो काम ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हम जितना दिन रहेंगे पब्लिक के साथ ऐसा ही इंटरेक्शन करेगा, लिख के पर्सनली कॉन्टेक्ट करके सोसाइटी के साथ तालमेल के काम करके जाएगा, जितना दिन हम जिएंगे इतना दिन काम करेंगे। और अभी जब एजेड हो गया हम लोग, जनरल पीपल को थोड़ा सा एडवाइस देने के लिए कुछ लिखेगा, कोई आदमी का एम्बिशन ऊंचा नहीं होने से ऊंचाई पे उड़ने नहीं सीखेगा से, इसलिए हर आदमी को एक तो एम्बिशन होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, हम क्या करके जाएंगे, हम क्या करेंगे, ये टारगेट होना जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा मोटिवेशनल कुछ करके जाएंगे ये सोच रहे हैं, कितना संभव होगा मालूम नहीं।
1: टूडू जी, संथाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं?
0: संथाल समाज सबसे अभी देश में पिछड़े वर्ग है, तो ये संथाल समाज को कैसे डेवलप किया जाए, मोटिवेट कैसे किया जाए, यही टारगेट होना चाहिए। हम लोग तो पीछे पड़े हुआ है, बहुत सा नेग्लिजेंसी है, बहुत सा ड्रॉबैक है, ये सब लेके बहुत सा पीछे चल रहा है,

0: कैसे आगे बढ़ना है।
1: आज की युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: सजेशन तो जरूर होगा, पहले तो इसका आर्थिक स्थिति स्टेबल होना चाहिए, उसका बाद आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। आपका पास जो ही कोई सपना नहीं होगा, आपका इंस्पिरेशन नहीं आएगा, काम करने का ही इंस्पिरेशन नहीं आएगा। आपका पास कोई सपना होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। लेकिन हम बोलेगा आदमी को, पीपल को बोलेंगे, जैसा भी आपका ये स्थिति है उसमें से आपको आगे बढ़ना है, इसलिए आपको एक ठोस फिक्स टारगेट होना चाहिए, हम ये करेंगे। टारगेट नहीं ठीक होने से, एम ठीक नहीं होने से आप कुछ भी, आपका मेंटेलिटी ऐसा तैयार नहीं होगा। इसलिए हर आदमी को एक तो टारगेट होना चाहिए, क्या हम लेखक बनेंगे, क्या हम आर्टिस्ट बनेंगे, क्या हम साइंटिस्ट बनेंगे, ऐसा टारगेट होना जरूरी है। हर आदमी को बचपन से यही टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तब सक्सेस कुछ मिलेगा।
1: आपको कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है?
0: प्राइवेट अवार्ड भी मिला है, पहले मिला था, और जो बिरसा भगवान का एक तो ये है जीवनी, उसका नाट्य रूप हम दिया था वीर बिरसा। तो पहले पब्लिक अवार्ड मिला था पंडित रघुनाथ मुर्मू अवार्ड फ्रॉम जमशेदपुर टाटा साजोंदा, वही शुरू हुआ हमारा सफर। उसका बाद मिला है हमारा वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से बंगभूषण मिला था, उसका बाद मिला है साहित्य एकेडमी का, लास्ट में पद्मश्री मिला है।
1: टुडू जी, मोदी सरकार आने के बाद से पद्म पुरस्कारों की बात करें तो देश के कोने कोने से प्रतिभा को ढूंढ कर दिया जा रहा है, आपकी क्या राय है इस बारे में?
0: पहले तो बहुत सा बड़ा बड़ा आदमी को मिलता था, अभी तो गांव के भी आदमी को मिल रहा है, नेशनल अवार्ड पद्मश्री मिल रहा है, ये देख के तो हम लोगों का ये विश्वास आ रहा है। अभी गांव के भी कोई आदमी कुछ अच्छा काम करेगा और तो उसको मिलने का अवसर मिलेता है, यही अच्छा वाला बात है। हम तो ऐसा सरकार को पदक्षेप को हम जरूर धन्यवाद देंगे। ये गांव का साधारण आम आदमी का भी आप लोग अच्छा काम ढूंढ के निकालता है, यही अच्छा होता है।
1: टुडू जी, आपकी बातें हमें संदेश देती हैं कि अपनी मातृभाषा, संस्कृति और परंपरा पर गर्व करना ही हमारी असली पहचान है। साहित्य केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि समाज को दिशा देने का एक सशक्त माध्यम है। टुडू जी, अपने विचार हमसे साझा करने के लिए धन्यवाद।
0: नमस्ते।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी प्रसिद्ध संथाली साहित्यकार रबीलाल टुडू के साथ विशेष बातचीत। तनुश्री बंदोपाध्याय के विशेष योगदान के साथ संचालन कर रही थी प्रियंका अरोड़ा। इसे आप हमारी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.eirnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम का शेष भाग। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ। तो चलिए अब इस कार्यक्रम में आपको जो गीत हम सुनवाने जा रहे हैं उस फिल्म का नाम है नूरी। आवाज लता मंगेशकर की है, संगीत खय्याम का। और इस गीत की फरमाइश आप सभी श्रोताओं की है, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु, अश्विन, गोविंद, टोनी और लव दीवान। इस गीत को सुनना चाहा हरिपुरा झज्जर से प्रदीप, वधवा, आशा, गीतेश, मोक्ष, यश, निखिल और उनके मित्रगण। दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैया।

लाल रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। इसी गीत की फरमाइश आई है परतूर जालना से जयश्री दसमले, शिवानी, अर्चना, आकांक्षा और इनके परिवार के सभी सदस्य। बिहारी कॉलोनी शाहदरा से तुलसी मस्कीन, रचिता मस्कीन और चैतन्य मस्कीन। डीएलडब्ल्यू वाराणसी से शिल्पा, रीमा, रीशु, सीमा, प्रीति, छोटी और मिठी। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। और ये फरमाइश आई है चांडूर बिस्वा तालुका नांदुरा बुल्डाना महाराष्ट्र से नारायण भाऊ खड़ से, रक्षाताई, ललिता, संजना, गणेश, कार्तिक, मालती चौधरी, स्वाति और प्रयाग चौधरी। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है नूरी।

आप सुन रहे थे नूरी फिल्म का गीत। और अब चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ। पड़ोसन फिल्म का गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं की पत्रों के माध्यम से हम तक पहुंची है। अस्तुपुरा मऊ यूपी से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद, बहादुरगंज गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद, धनबाद से प्रभात रंजन प्रसाद, शोभा रंजन, रितेश स्वाति और प्रतिभा रंजन, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप, केशव पटेल और सरला प्रकाश, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, फरमाइश आई अलीका डबवाली से वसंत सिंह, राजकुमार, सुनीता और कुलदीप गांधी की, नई दिल्ली से सुखविंदर सिंह, पिंटू, सुरेंद्र कुमार और जगमोहन साहनी, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, जुनैद अब्बासी, त्रिपड़ी पटियाला से मुकेश बाछल, राकेश बाछल, संदीप, अमनदीप, आकाशदीप, मनीषा और जतिन बाछल, और ये फरमाइश आई है छोटी पियरी वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती, विनायक सिंह, मोहिनी, मोहित सिंह, हर्षित पुलकित और उनकी दादी जी, दतरिंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, वेदवाई लीलेश्वरी वर्मा, सरिता किशोर कुमार, सुमित्रा, दीपक कुमार वर्मा और झावेंद्र कुमार वर्मा, और एक और पत्र है करौता लोहता वाराणसी से अशोक कुमार प्रजापति, मीना प्रजापति, अंजलि आकाश, शिव प्रकाश प्रजापति, मोना प्रजापति और राहुल प्रजापति। सुनिए अपनी पसंद का ये गीत, फिल्म का नाम है पड़ोसन।

आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत। और इस कार्यक्रम का अगला गीत जो आप सुनेंगे उस फिल्म का नाम है नया रास्ता। आशा भोसले की आवाज़ है और इस गीत के लिए फरमाइश आप सभी श्रोताओं की। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी, अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारिमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेराज अंसारी। लच्छनपुर से रामजी साहू और जीवन लाल रजक। फरमाइश है अहमदनगर से सुनील साठे, लता साठे, शुभम साठे और शुभांगी साठे की। अहमदाबाद से जतिन मेहता, भालचंद्र, फुलवा मेहता, विकास वड़के और नीलेश। नांगलोई दिल्ली से मदन चक्रवर्ती, राजेंद्र चड्ढा। इसी गीत को पसंद किया राम सकल चौधरी, सूरज, शिवम, सत्यम, आकाश और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। मौनी बाबा धाम चोचकपुर गाजीपुर से। ये फरमाइश है फणेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, गजेंद्र कुमार चंदन, ग्राम सुंगा, धमतरी, छत्तीसगढ़ से। रजानगर वाराणसी से नफीस अहमद अंसारी, अजीज अहमद अंसारी, शमीम अहमद अंसारी, अनीश अहमद अंसारी, शकील अहमद अंसारी और सुनील रस्तोगी। और ये फरमाइशी पत्र है जयपाल धीमान, यशपाल धीमान और इनके परिवार के सभी सदस्यों का, यमुनानगर हरियाणा से। तो चलिए आपको सुनवाई देते हैं आपकी पसंद का ये गीत नया रास्ता फिल्म से।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, और इस कार्यक्रम का ये गीत जो अब हम आपको सुनवाएंगे आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम है घराना, गीतकार शकील बदायूनी, संगीत रवि का, और पसंद आप सभी श्रोताओं की जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल, बबुरी बाजार चंदौली से विजय जायसवाल, सरोज जायसवाल, शुभम जायसवाल और शिवम जायसवाल, जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, राजेश जायसवाल, अवधेश जायसवाल, डिंपल जायसवाल, स्टेशन रोड जमानिया से आशुतोष, अभिनव, दिलीप और दुर्गेश जायसवाल, मोपका भाटापारा से

हेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित और सुमित्रा, विद्यानगर परली वैजनाथ से मास्टर आरजी फड़, विजय, गणेश, ऋषिकेश, अर्चना और प्रतीक्षा। इसी गीत को सुनने की फरमाइश एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, अंकित और साहिल कांगड़ा। ये फरमाइश आई है मस्तूरी ग्राम मचहा छत्तीसगढ़ से, राजकुमार पटेल, गोमती पटेल, धनय कुमार पटेल और टीकेश पटेल की। रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति और अतुल। कच्ची सराय दालमंडी वाराणसी से मोहम्मद नसीम, मोहम्मद सैफी, मोहम्मद हसन, तबस्सुम बानो, नाजिया रहनुमा। चौरहट नई बस्ती पड़ाव से रोशन अली, सिराज आलम, मोहम्मद समद, रोजी, अलीशा और ईदगाह मच्छरहट्टा वार्ड रामनगर से लंबे बाबू, नौशाद, लखू, बेलाल, शमा, सुगन, नौहीद, जरीन और बाबू अंसारी।

आपके पत्र आपके गीत इस कार्यक्रम का अगला गाना नैया फिल्म से हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। हेमलता की आवाज है, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। पसंद आप सभी श्रोताओं की। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान, डॉक्टर शहनाज, शकील अहमद और इस्लामुन निशा। गढ़नोखा लालगंज बिहार से राजकिशोर चौहान, संदेश कुमार चौहान, अनुराग कुमार, अनिल कुमार और बड़क चौहान। पसंद आई भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव शर्मा और गरिमा शर्मा की। जौनपुर ग्राम मुड़ेला से चंदा, आकाश कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य। पाकुर झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, डॉक्टर अमनदीप, अनिल शर्मा। कालका से शुभचंद्र बजाज, करनाल से जग्गी दुआ। पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा प्रकाश, प्राजक्ता, प्रांजलि और सोहम बोरगांवकर। इस गीत को सुनना चाहा धरसीवा से छेदूलाल यादव, सीता, अर्चना, अरुणा, अनुराधा और इनके परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा। स्टेशन रोड बस्ती से जयप्रकाश भारती, नीलेश कुमार, कविता स्वाति। खम्हरिया विलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार। पसंद आई त्रिलोचन घाट वाराणसी से राजेंद्र कुमार केशरी, सावित्री रंगोली केशरी और आशुतोष की। चरडोंगरी पिपरिया कबीरधाम से दुर्गा राम साहू, अजय कुमार, किशन साहू, जय कुमार, इंद्राणी और माया। जमानिया रेलवे स्टेशन से देवी दयाल चौरसिया, डीडी चौरसिया, दर्पण कुमार चौरसिया, पवन कुमार चौरसिया और जगमोहन चौरसिया। रायगढ़ बाबा कुटीर से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, अंजलि चौहान, रितिका चौहान और इनके मित्रगण। और ये पत्र है नगर पंचायत दिनारा से जयराम सिंह, सुषमा सिंह, कंचन मिश्रा, श्वेता रानी, मदनेश्वर सिंह, अमित कुमार, प्रभात कुमार, पुरुषोत्तम, सौरव, अर्पित, हर्षित, जयराम, बिंद, विद्या, संध्या, वीरेंद्र पांडे और लाल बहादुर। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

नैया फिल्म का ये गीत आज के आपके पत्र आपके गीत कार्यक्रम का आखिरी गीत है। आप गीत सुनते रहिए और आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अंजना झा को। नमस्ते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपके पत्र आपके गीत, आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
1: सभी श्रोताओं को आपके साथी अजीत का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आप सबका उमंग कार्यक्रम में। तो श्रोताओं, आइए सबसे पहले सुनते हैं हमेशा की तरह आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय जी ने। बड़ा खूबसूरत लिखा है। लिखते हैं, आर्थिक स्थिति मजबूत हो या ना हो, लेकिन खुश रहने के लिए मानसिक स्थिति का मजबूत होना और सकारात्मकता बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद मार्कंडेय जी आपके सुंदर विचार के लिए। सच है श्रोताओं, प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा तरीका है सकारात्मक भाव को बनाए रखना। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा जी का। दूसरा संदेश हमें मिला है डोंडी लोहारा

छत्तीसगढ़ से देवशंकर तमुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान और जिज्ञासा के साथ साथ विराट तमुरिया, तेजस्वी और गौरव तमुरिया जी का। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन का। अगला संदेश हमें मिला है भटीपुरा महोबा उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता और कमला देवी गुप्ता जी का। और आइए सुनते हैं संदेश भेजने वाले कुछ और श्रोताओं के नाम। तो अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम साहू के साथ साथ सेजल साहू जी का। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो सुनिए हमारा पहला प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर जान लेते हैं। इसका उत्तर है, लोहे की सुई पानी में इसलिए डूब जाती है क्योंकि उसका घनत्व यानी डेंसिटी पानी के घनत्व से अधिक होता है। इसके विपरीत लोहे का जहाज बहुत बड़ा और अंदर से खोखला होता है जिससे उसका औसत घनत्व पानी से कम हो जाता है और वो अपने भार से अधिक पानी को हटाकर तैरता रहता है। हमारा अगला सवाल था कि लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप किस चीज से बने हैं? इसका उत्तर है, लोकटक झील में द्वीप मिट्टी, घास और कई ऑर्गेनिक पदार्थों से बने हैं जिन्हें फुमदी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न था, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है, मानसरोवर झील के पास की खारे पानी की झील का नाम है राक्षस ताल। और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? तो श्रोताओं इसका उत्तर है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से चीन, साइबेरिया, रूस और मंगोलिया से आते हैं। और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न जो कि हमने आपसे पूछा था। हमारा अंतिम प्रश्न था, डल का अर्थ कश्मीरी भाषा में क्या होता है? तो इसका उत्तर है, डल का अर्थ होता है जलाशय या झील। तो श्रोताओं ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है। ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर हमें प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप ताजा जानकारी के लिए CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, राग सिंदूरा। इस कार्यक्रम में राग सिंदूरा की स्वरमालिका, आरोह, अवरोह, थाट और गायन समय के बारे में विस्तार से बताया गया है। श्रोताओं, संगीत विद्यार्थियों और शिक्षकों के साथ साथ ये कार्यक्रम सामान्य श्रोता वर्ग के लिए भी उतना ही उपयोगी है। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम राग सिंदूरा।

राग सिंदूरा। राग सिंदूरा की उत्पत्ति काफी थाट से हुई है। इसे राग सैंधवी भी कहा जाता है। इसमें कोमल गंधार यानी कोमल ग और कोमल निषाद यानी कोमल नी के अलावा सभी स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। इसके आरोह में गंधार और निषाद अर्थात ग और नी ये दोनों वर्ज स्वर हैं तथा अवरोह में

किए जाते हैं। इस प्रकार इसके आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व संपूर्ण है। इसका वादी स्वर षडज यानी स है, संवादी स्वर पंचम यानी प है। इसका गायन समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। राग सिंदूरा के आरोह अवरोह और पकड़ इस प्रकार है। सबसे पहले सुनिए आरोह।

प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है राग सिंदूरा की स्वर मालिका की स्थाई।

अभी आपने राग सिंदूरा की स्वरमालिका सुनी। अब प्रस्तुत है इसी स्वरमालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, कल कल नदिया बहती जाती। सबसे पहले सुनते हैं इस रचना की स्थाई।

0: और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सीमित मत रहिए। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रेरक प्रसंग श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसके द्वारा बताया गया है कि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं, लेकिन हमारी नकारात्मक सोच ही हमें सीमित कर देती है और इसी कारण हम पूरी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते।
1: साथियों नमस्कार।
2: नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: आज हम आपको एक बहुत ही खूबसूरत कहानी बताने जा रहे हैं और हमें आशा ही नहीं लेकिन पूरा विश्वास है कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सीमित मत रहिए।
2: तो आइए

0: साथियों, सबसे पहले पूछिए एक पहेली। जरा ये बताइए कि दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जो दो महादेशों में पड़ता है? सोचिए, जरा बताइए तो।
1: अच्छा चलिए, हम ही बता देते हैं। यदि आपने रूस देश का नाम सोचा है तो बिल्कुल सही सोचा है। जी हाँ, वो देश है रूस। ये एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में पड़ता है।
0: और हाँ, आपको हम ये भी बता दें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी राजधानी है मॉस्को, जिसे रूसी भाषा में मस्कवा कहते हैं।
1: और यहाँ की मुद्रा है रूबल। तो हाँ साथियों, जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो कहानी है रूस की। तो मित्रों, हम बात कर रहे थे रूस देश की एक कहानी की। जैसा कि आपने सुना कि वहां बहुत जंगल है, एक बार उन जंगलों में आग लग गई।

0: हजारों हेक्टेयर की भूमि उससे प्रभावित हुई।
1: पेड़ पौधे तो जले ही, बहुत से पशु पक्षी भी इस विकराल आग की वजह से जलकर मर गए। लेकिन एक छोटा सा भालू का बच्चा किसी तरह से बचकर पास के एक गांव में पहुंच गया। वो भूखा था और घायल भी।
0: एक किसान ने जब उसे देखा तो उसे बड़ी दया आई, वो उसे अपने घर ले गया।
1: अब वो भालू का बच्चा वहां के पालतू जानवरों के साथ ही रहता, उन्हीं के साथ घूमता और खेलता।
0: वो उन्हीं में घुल मिल गया और जैसा दूसरे घरेलू पशु व्यवहार करते वैसा ही वो भी व्यवहार करने लगा।
1: लेकिन पूरे गांव में वो एक कौतूहल का विषय तो था ही, लोग उसे देखने के लिए उत्सुक रहते थे, खास तौर से बच्चे।
0: धीरे धीरे ये बात आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और लोग बड़ी संख्या में उस भालू को देखने आने लगे।
1: लेकिन साथियों, ऐसा कब तक चलता? जैसे जैसे वो भालू का बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हिंसक प्रवृत्ति दिखाई देने लगी।
0: वो किसान अब उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उस भालू को देखने के लिए बहुत से लोग उसके घर पर आने लगे थे।
1: साथियों, फिर जो हुआ वो बहुत ही दुखद था। उस किसान ने एक लोहे का पिंजरा बनवाया और भालू को उसमें बंद कर दिया।

0: साथियों, अब वही पिंजरा उस भालू की दुनिया हो गया। वो उसी में घूमता और आगे पीछे होता रहता था।
1: फिर जो बात हुई वो और भी दुखद थी। उस किसान ने जब देखा कि लोग बहुत बड़ी संख्या में वहां आते हैं तो उसने उनसे पैसा लेना शुरू कर दिया।
0: लोग आते और उसे देखते, कुछ लोग डंडे या लोहे की छड़ भी लेकर आते और भालू को परेशान करते। भालू बहुत परेशान और बेचैन रहने लगा।
1: दोस्तों, जरा सोचिए, क्या उस किसान ने ये जो काम कुछ पैसों की खातिर किया, क्या वो ठीक था? क्या पशुओं के साथ ऐसा व्यवहार ठीक है? क्या उन्हें स्वतंत्र होकर अपने पर्यावरण में रहने का अधिकार नहीं है? ये सोचने की बात है। जब आप किसी चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं

0: तो पशुओं के प्रति हमारा क्या रवैया रहता है?
1: ये बात धीरे धीरे वन विभाग तक पहुंची। पर्यावरण और वन विभाग के कर्मचारी आए और वे उस भालू को ले गए।
0: वो उसे एक बहुत बड़े जंगल में ले गए। उसका पिंजरा खोल दिया गया और उसे आजाद कर दिया गया।

0: वे देखना चाहते थे कि भालू इस नए वातावरण में कैसा व्यवहार करेगा।
1: उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वो भालू कहीं नहीं जा रहा था। वो वहां भी आगे पीछे घूम रहा था। उसके सामने स्वतंत्रता थी, उसके सामने विशाल विस्तृत जंगल था। वो जहां चाहता वहां जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निरीक्षण में पाया गया कि वो बहुत समय तक वहीं आगे पीछे घूमता रहा। लेकिन प्रश्न ये है कि ऐसा व्यवहार वो क्यों कर रहा था।
0: बात स्पष्ट है, उस पिंजरे में बहुत लंबे समय तक रहकर उसने सीख लिया था, या यूं कहें उसे सिखा दिया गया था कि उसकी दुनिया बस इतनी सी है, वो आगे जा ही नहीं सकता।
1: हाँ दोस्तों, उसे शायद अब लगने लगा था कि इससे अधिक अब वो कहीं नहीं जा सकता। लंबे समय की पराधीनता, या कह लीजिए कि उसकी नकारात्मक स्थिति की वजह से वो मान चुका था कि उसकी दुनिया सीमित है और वो इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता।
0: बहुत धीरे धीरे उस भालू ने सीखा कि उसकी दुनिया इतनी सीमित नहीं है, बल्कि उसके सामने आजादी का असीमित संसार है।
1: मित्रों, क्या हम भी कई बार उसी भालू की तरह नहीं हो जाते? हमारे आपके साथ भी अक्सर ऐसा हो सकता है। नकारात्मक परिस्थितियों से हम सीखने लगते हैं कि हम जितना कर रहे हैं उससे ज्यादा कर ही नहीं सकते। हो सकता है कि कभी किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इससे अच्छा तुम कर ही नहीं सकते।
0: लेकिन मित्र, कोई कुछ भी कहे, कोई चाहे आपको बार बार याद दिलाता रहे कि आपसे कुछ नहीं होगा, आप स्वयं को याद दिलाइए कि आप में बहुत सी असीमित क्षमताएं मौजूद हैं और आप बहुत अच्छा कर सकते हैं।
1: तो विश्वास रखिए कि आप जितना कर रहे हैं उससे और भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। और हाँ, याद रखिए कि आपको अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी है।
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम सीमित मत रहिए, और अब इसी के साथ अपने साथी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: अपने बिजनेस को बढ़ाएं।
5: अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है।
6: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
7: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
6: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
7: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
6: डायल कीजिए
8: 0542227658।
7: नंबर एक बार फिर नोट करें
9: 0542227658।
5: श्रोताओं, अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
10: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
11: बुधरी ताती जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई।

0: सरकार ने आपको पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा महसूस हो रहा है आपको, कैसा लग रहा है?
1: हम जैसे जंगल में गांव में रहने वालों को चयनित करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमें खुश है, हमारे जो समाज के लोग भी संकुचित रहते थे, बिना उनको कोई पूछताछ नहीं, ऐसी व्यक्ति को प्रतिष्ठा जो मिल रहा है, उसके लिए मैं सभी के लिए बहुत खुश हूँ।
0: आपका बचपन कैसा था और समाज सेवा की भावना आप में कब जागी, इसके बारे में हमें बताएं।
1: गांव वीरानार में ही मेरा जन्म है, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पे तातीपारा में है। और बालकाल में हमने माँ के साथ रहते रहे, हम किसान के परिवार की हूँ और गरीब घर की हूँ, तो उस समय लगभग 8-9 साल के थे, तब से माँ बाप के साथ में माँ के साथ काम करते थे। फिर 8-9 साल के और छोटे थे तभी एक ही दिव्य जीवन संघ घुमर गुंडा, वहाँ पर पैदल पैदल जाते थे, वहाँ काम करते थे सेवा भाव पे। ऐसा ही कई दिनों से बीता है। फिर माँ भी हमको एकदम, हम लोग दो भाई दो बहन, ऐसे 4 भाई बहन थे, बड़े भाई तो नहीं है अभी, हम लोग भी 2 बहन 1 भाई है। और बचपना में मेरा ऐसा ही आम लोग जैसा है ऐसा ही जीवन बीता है। फिर 15 साल का आयु था, मेरे मन में ऐसी पता नहीं कैसा आया, और हमारे जो गुरुदेव का आशीर्वाद है कि ये सब बचपना में जैसा गुजरे और आज यहाँ तक की पहुँच गए।
0: आप पिछले करीब 40 वर्षों से आदिवासी इलाकों में और वन क्षेत्रों में नशा मुक्ति तथा सामाजिक जागरूकता के लिए काम कर रही हैं। ये सब आपने कब, कैसे और क्यों शुरू किया?
1: ये 1984 में मैंने नागपुर चले गई और महिलाओं के बीच में काम देखी, व्यवहारिकता 2-3 महीना सीखने के बाद, देखने के बाद मैं वापस आई। और हमें भी मन में आया कि मेरे दक्षिण बस्तर हो, बस्तर हो, जहाँ भी हो, हजारों बहने हल विज्ञता कभी शिक्षा नहीं पाए, स्कूल को पता नहीं है, ऐसी बहनों के बीच में जाके काम करना चाहिए। उसी समय से मेरा 84 से मन में आया है और मैं इस क्षेत्र में 1986 में ही काम शुरू की। और विशेष करके अब उन्मार को पहले चुई हूँ, मैं वहाँ गई हूँ और वहाँ देखने के बाद ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में काम करना है तो एक आदमी से नहीं होगा, यहाँ के लोकल लोगों को साथ लेना पड़ेगा, इनके साथ में काम होगा। 1986 से ही निरंतर साल भर का पूरे 500 गांव को संपर्क में ली हूँ, एक लक्ष्य रखी हूँ, सबसे पहले मैं 500 गांव को संपर्क करूंगी और इसी समाज से जो बहनें मिलेंगे तो उनके साथ में मुझे काम करना होगा, उनको प्रशिक्षित देना है और कार्य काम कैसा करना है, मैं उन्हीं से स्टार्ट की हूँ। 15-20 साल से 30-35 साल की बहनों को हमने यहाँ पर वापस उनको लाते थे, लाने के बाद उनको साक्षरता सिखाए, उनको एकदम बच्चे जैसा पकड़ पकड़ के उनकी बड़ी बहनों को सिखाना, मन तो तकलीफ तो है, जैसा गिल्ली मिट्टी को आकर देना सरल होता है पर वैसे बड़े लोगों को कठिन परिस्थिति में भी सीखे हो, तो मैं उनको साक्षरता सिखाने के बाद ही ये सब कार्य शुरू किए हैं और उनके कारण से सब बहुत अच्छा सफल भी मिला है और कार्य करने में गति हो गया कि क्योंकि 1 साल हमने पूरे गांव को देखे हैं, परिस्थिति देखे हैं कि इनको कैसा किस टाइप के काम करना है, क्योंकि हम लोगों को देखने से हमारे समाज के लोग हैं जंगल इलाका में रहने वाले, हम लोगों को देखने के बाद ही दोबारा हमारे सामने आना पसंद नहीं करते थे। ये सारे कठिनाई देखने के बाद जो है हम लोगों के मन में ऐसा एक तो काम हुआ कि इनके बीच में हमको बड़े ठोस रूप से काम करना चाहिए। करीबन 150 तक ऐसी बहने फुल टाइम काम करने वाले बहने भी साथ दिए और साथ मिले कि हम काम को पहला ही ऐसा है।
0: आपने बस्तर संभाग के 500 से अधिक गांवों में पैदल यात्रा करते हुए लोगों को जागरूक बनाया, अपनी इस यात्रा के अनुभव के बारे में हमें बताएं।
1: इसमें तो उनको जागरूकता लाना है तो हमने पैदल इसलिए घूमे हैं कि जब तक हम उनके पास नहीं जाएंगे, हम उनके समस्या से लेकर उनका शिक्षा से लेकर जो भी करना चाहते हैं जब तक उनके पास नहीं जाएंगे, हमको समझ में नहीं आता है, हम उनके पास जाना है, उनके पास उठना बैठना, उन लोग जैसा रहते हैं उनके साथ रहना, जो खाते हैं उनके साथ खाना, और जैसे कभी ठंड में है तो बिना कपड़ा के सोते रहे, अभी तो विकास हुआ, उस समय उनको पहनने के लिए एक साड़ी होता था, ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं होता था, किसी के पास एक कंबल होना मैंने बहुत बड़ी बात समझते थे। उनके साथ घूमते हुए ये सब परिस्थिति देखने के बाद बहुत कठिनाई भी आया है, तकलीफ हुआ है, तब हमको समझ में आया कि इनके बीच में काम करना है तो क्या क्या चीज आवश्यकता पड़ेगा, सब यात्रा में देखने को मिला है। उनके साथ काम नहीं करती तो उनके बीच में नहीं जाती तो शायद काम करने का मुझे भी इतना अनुभव नहीं होता कि हम क्या करेंगे कैसा करेंगे, उनके पास तारे जाने के कारण, इतना घूमने के कारण, ये सभी उस समय रास्ता नहीं होता था, कभी साइकिल जाने के लिए रास्ता भी नहीं मिलता।

0: था, जैसे जाए बैल जाता है इसी रास्ते से हम लोग पूरे समय में उनके पास पहुंचे गए।
1: आपने अनेक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, तो ये विचार आपके मन में कब और कैसे आया, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आप उन्हें किस तरह से प्रशिक्षण देती थी या अभी भी किस तरह से उन्हें प्रशिक्षण देती हैं?
0: इस समय तो ये महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए इसलिए मन में आया कि हमारे एक तो

0: मन में आया कि हमारे एक तो ऐसा गरीब स्थिति रहा, तो उस समय सबसे पहले तो मेरे मन में आया कि हम इनको आत्मनिर्भर करना है तो इनको साक्षरता बनाना है, इनको शिक्षा देना है, शिक्षा के साथ साथ व्यवहार भी देना है, संस्कार भी देना है, जागरूकता लाना है। तो ये मन में आया कि हम लोग उनको साक्षरता भी बनाए। साक्षरता लगभग 400-500 बहने उसमें साक्षरता ली है, 5वीं 8वीं 10वीं, कभी स्कूल नहीं गए ऐसी बहनों को हमने साक्षरता बनाए, आत्मनिर्भर किए। दूसरा है कि हम लोग उनके पास जाते थे, कभी 1 पैसा 2 पैसा होता था, उस समय तो सीट का घर नहीं होता था, घास भूसा का घर होता रहा, वहाँ पैसा छुपा के रखना, फिर जमीन में गाड़ के रखना, कभी दिमाग पकड़ता रहा, कभी चूहा कतरता रहा। तो ऐसी लोगों को हमने आत्मनिर्भर करना, उनको आर्थिक स्थिति सुधारना है तो कैसा करना होगा, उनको हम लोग उनको सिखाए, पास में लाए, समझाए। और बैंक को कभी नहीं जानते थे, अब वहां तक उनको ले जाके 10-12 हजार खाता खोले। उस समय उनके पास पैसा नहीं होता था, 500 रूपये 50 रूपये में हमने खाता खोले। बैंक मैनेजर से भी बात की है कि इनका आर्थिक स्थिति सुधारना है, इनको निर्भर करना है, उनको स्वयं पर स्वावलंबन बनाना है, तो आप भी इनको मदद करिए, 10 रूपये भी लाएंगे तो उनका खाता में जमा करिए। फिर सिलाई का प्रशिक्षण दिए, साथ साथ में कढ़ाई बुनाई का काम किए, ऐसा आत्मनिर्भर उनको किए है, स्वयं सक्षम खड़े हो गए। और आज जो है 1 लाख 2 लाख हर महिलाओं में जरूर होगा।
1: महिलाओं के अलावा अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की दिशा में काफी अच्छा काम किया है, तो इसके बारे में भी हमें बताएं।
0: तो कुछ समय बच्चे लोग स्कूल नहीं जाते थे, माँ के साथ मजदूरी करना या फिर मोबाइल इकट्ठा करना, आप जान रहे ऐसा उनका जीवन व्यतीत होता था। हमने सोचे कि इनको इनके लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में उन्हीं का नागरिकता है, ये गाँव के होते हैं, और आने वाले समय में उन्हीं लोगों के भविष्य कैसा बनाना है। हम लोग सोच के एक बाल संस्कार केंद्र के नाम से हमने शुरू किए हैं, कई स्थानों में बाल संस्कार शुरू किए। 4 साल से 5-6 साल तक की हमने उनको साक्षरता, खेल कूद से हंसते हंसते कई प्रकार का करते हुए उनको आगे बढ़ाए हैं। 6 साल होने से हम सीधा स्कूल में उनको भेजने का कोशिश किए है। तो ऐसी कई जगह में हमने बाल संस्कार केंद्र के रूप में किए हैं, कई बच्चों का आज ही भविष्य बहुत बना है, हजारों बालक बालिका है शिक्षा पाए हैं और स्कूल जाते हैं, जहां नहीं जाते वहां तक भी हमने इस सब किए हैं। आबोधमा क्षेत्र जैसा हम लोग को देख के भगने वाले माता बहने आज बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, आज कोई घर में रखवाली करने के लिए भी कोई नहीं, ऐसा बच्चों को भेज रहे हैं। बहुत अच्छा सफल हुआ इसमें भी बच्चों का, आज ही अच्छे अच्छे पद में उन्होंने पहुंचा है, और अभी मिलते भी है तो बोलते हैं कि धन्यवाद दीदी, आपने हमको बहुत आगे किए हैं, बड़े बड़े पोस्ट में है, उनका जिंदगी अच्छा बन रहा है। वैसा कई बच्चों के लिए हमने काम किए शिक्षा के रूप में।
1: बुद्री जी, आपको इस इलाके के लोग बड़ी दीदी कहकर बुलाते हैं, तो आपको ये सुनकर कैसा लगता है, और ये नाम आपका कब और कैसे पड़ा था?
0: ये तो मैं 1986 में जब जाने लगी हूँ, तभी से लोग ही ये हमारे लिए पूरा चिंता करती है। एक हमारे घर में कोई बड़े होते हैं तो हम अच्छा लगता है, जैसे कि परिवार में कोई बड़ा होता है, लोग आदर से उसको नाम नहीं लेते, बड़े दीदी के नाम से जाना जाता है। ये नाम 1986 में जब मैं गांव में जाती थी, लोगों के साथ बैठना उठना, हम तो बड़े को बड़े आदर करते हैं, माँ है तो माँ बोलते हैं, बच्चे है तो बच्चों को प्यार से नाम लेते हैं, वो हम लोग अपने आप उन्होंने चुने हैं कि ये तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम सबका चिंता करते हमारे बड़े दीदी है, वैसा इस नाम से लोग अधिकतर लोग बोलते हैं। और आजकल तो माँ कह के भी पुकारना चालू किए। इस परिवार का हम लोग यहाँ का सब परिवार के एक सदस्य के समान है, और इससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लोग हमको बड़े दीदी के नाम से छोटे से लेके बड़े तक नाम लेते हैं, तो अच्छा लगता है समाज में जाके, क्योंकि हम उस समाज से घुल मिल होके रहते हैं, समरसता एक मिलाते हैं, तो सबको एक समान होता है।
1: आपने जड़ी बूटियों के माध्यम से लोगों का उपचार भी किया है, तो ये आपने कब कहाँ और कैसे सीखा?
0: जड़ी बूटी का क्या है, हमारे अखिल हमारे साथ में 7-8 बहने लोग हैं, तो हमारे बहनों में भी बहुत कुछ इस बारे में ज्ञान है। जैसे जड़ी बूटी इसलिए हम लोग ये करते हैं कि जंगल में जितना भी रहने वाला हमको बचपन से नॉलेज है, और एकदम कमजोरी हो जाते हैं, 6 महीना तक साल भर तक लोग ऐसी कमजोरी में रहते हैं, हम उन ऐसी लोगों को हम यहाँ का ही जो वस्तु मिलता है तो उसको इकट्ठा करके हम लोग उसका पूरा बना

0: के, कभी सुरन के नाम से बनाते, कभी लड्डू बना के देते हैं जड़ी बूटी का। तो इस प्रकार से हम लोग पूरे गांव गांव में जा करके इसका भी करते हैं। कुपोषित है सभी है, ये सभी दवा हम लोग उनको, माने दवा माने यहाँ हमारे जो हमारे आप में जो खेती करते हैं उसी में से हम लोग इसको बना के खा सकते हैं, तो कितना हम लोगों का तंदुरुस्त होता है। हम लोग तो ये तो हमारा परंपरा है, आदिवासियों में तो जुड़ा हुआ रहता, प्रकृति से जुड़े हैं, इसका सब मालूम रहता है। सूजन आने से कैसे उसको करते हैं, उबाल के कैसे नहलाते हैं, सूजन कैसे उतरता है, गाँव होने से ये दवा लगाने से गाँव बढ़ता है, ये सारे जानकारी हम तो इंसान के गाय बैल से लेकर सभी का सेवा करते हैं।
1: और अंत में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अब आप दूर दराज के इलाकों में काम करने वाले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, तो आपका योगदान देश और दुनिया जाने और सरकार की ये जो पहल है ये आपको किस तरह से लगती है?
0: हम लोग तो अभी तक की 1984 से आज तक में जो काम किए हैं, जो हम चाहते हैं कि इस काम को गुप्त रूप से रहे, काम करते रहे, लेकिन ये ऐसा एक काम होता है कि इसको छुपा नहीं सकते हैं। जन जन में पहुंचने वाला काम है, हर व्यक्ति का पुकार है, इस गांव से लेकर नगर से लेकर बड़े बड़े शहर से लेकर केंद्र तक का ये अपने आप ही होने वाला चीज है। तो आगे फोकस हो गया, आगे चला गया, और आज हम जैसे कि धूल में मिले हुए कंकड़ को परसमणि बनाने की कोशिश करने वाले सरकार है उनके हाथ में, और इसमें बड़ा समाज है, ये समाज का बल है, समाज का ऋणी है। आज तक हमने जो किए है कि हमने भी मैं कभी सोचे नहीं थी कि इतना बड़ा अवार्ड जो है कभी होगा और सम्मानित करने का कभी मौका हमको भी मिले, ऐसा कभी हम लोग को पता भी नहीं था। लेकिन आज ही आप सभी के सहयोग है, हमारे दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला और पूरे बस्तर संभाग, हमेशा लोग सोचते थे कि लोग ये अबूझ है, आप जान रहे हैं, तो ऐसा क्षेत्र में भी आज ही उभर कर काम सामने आया। ये कार्य का प्रणाम है ये सब करने के लिए करता है, और ये सब आज ही जो पिछड़े समाज भी चाहता है कि हमारे बीच में कोई सम्मानित है, वो उनका सम्मानित है ये सब।
1: कार्यक्रम में शामिल होने, हमारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक सेवा कार्यों में विशिष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ से पद्मश्री के लिए चुनी गई बुधरी ताती के साथ खास बातचीत। नरेश मिश्रा के सहयोग से इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे एकल तबला वादन। कलाकार हैं डॉक्टर रजनीश। आपने तबले पर प्रस्तुत किया है तीन ताल

0: अभी आप सुन रहे थे तबले पर प्रस्तुत तीन ताल। कलाकार थे डॉक्टर रजनीश। इस एकल तबला वादन के साथ ही शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। हिंदी में समाचार सुनिए दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत आज से नई दिल्ली में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान साइबर सुरक्षा, डिजिटल खतरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े जोखिमों और अन्य गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि आतंकवाद रोधी सहयोग और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के सुरक्षित उपयोग से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा करेंगे। बैठक में भारत, ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित ब्रिक्स के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख हिस्सा लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कोनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इससे पहले राष्ट्रपति ने कोनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। राष्ट्रपति ने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जल्दाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने से मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा शामिल है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम की एक बस को पीछे से आ रही स्टेशनरी ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस, जिला प्रशासन अधिकारी और स्थानीय निवासियों ने तुरंत बचाव और राहत अभियान शुरू किया। राज्य के परिवहन मंत्री आनंदमय बर्मन ने दुर्घटना स्थल और अस्पताल का दौरा किया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपये का इनाम था।

0: पुलिस के अनुसार मुठभेड़ सरसावा नाकुर रोड पर हुई। एसटीएफ के अनुसार ललन सिंह और उसके साथी हत्या, बैंक डकैती, कैश वैन लूट और सरकारी हथियारों की चोरी जैसे कई संगीन अपराधों में शामिल थे। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर, धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य और एक किसान तथा अन्य निवासी शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के नेतृत्व के साथ मुलाकात करेंगे। वे मंगोलिया की विदेश मंत्री बी बत्तिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। वहां वे विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 360 अंक बढ़कर 77,163 पर और निफ्टी 105 अंक बढ़कर 24,118 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण और खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। पहले कार्यक्रम विवरण में आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन। आपसे मिलिए, इस कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 10:00 का। आज इस कार्यक्रम में पद्मश्री प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर से आशुतोष की बातचीत आप सुनेंगे। गैर फिल्मी गीतों और गजलों पर आधारित अंजुमन का प्रसारण समय होगा रात्रि 9:30 का। सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला आप सुन सकेंगे रात्रि 8:10 पर। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार तलत अजीज और पिनाज मसानी, समय होगा रात्रि 8:00 का। किसान भाई अपना कृषि जगत कार्यक्रम सुनेंगे शाम 6:30 पर, जिसमें बातचीत के साथ ही किसान भाइयों को सुनवाएंगे रीना देवी और साथी का गाया लोकगीत। इन्हीं के गाए लोकगीत आप दिन 1:45 पर लोक संगीत के कार्यक्रम में भी सुनेंगे। आज शाम 5:15 पर युवा साथी सुनेंगे अपना कार्यक्रम युववाणी, इसमें होगी आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन और युवा साथियों को सुनवाएंगी वार्ता, जिसका विषय होगा फिटनेस, योग और युवा पीढ़ी का बदलता लाइफस्टाइल। वार्ताकार होंगी ऋचा रमन। अभी से थोड़ी देर बाद यानी दिन 1:15 पर बहनें सुनेंगी अपना गृहलक्ष्मी कार्यक्रम, जिसमें सुखद वैवाहिक जीवन की कुंजी आपसी विश्वास, इस विषय पर बहनों को सुनवाएंगे वार्ता। वार्ताकार होंगी डॉक्टर ऋचा सिंह। व्हाट्सएप संदेशों पर आधारित भोजपुरी फिल्म संगीत का कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस आप सुनेंगे दिन 2 बजकर

30 मिनट पर। फिल्म संगीत आपको सुनवाएंगे शाम 5 बजे, शाम 6:10 पर, शाम 7 बजे और रसरंग कार्यक्रम में शाम 7:31 पर। ये थे आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रम। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण।

0: और अब आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार खुशबू, जिनके पिता का नाम है रोशन कुमार, खुशबू निवासिनी है ग्राम रुदौली थाना चुनार मिर्जापुर के। खुशबू विगत 3 मई 2026 से लापता हैं। खुशबू के बारे में जानकारी की बातें इस प्रकार, इनकी उम्र है 18 वर्ष, चेहरा गोल, रंग गोरा और इनकी लंबाई है 5 फिट। अगर आपको खुशबू के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थाना अध्यक्ष चुनार मिर्जापुर को सूचित करें। और सूचना के लिए हम आपको फ़ोन नंबर भी बता रहे हैं, नंबर है 8953325977। नंबर एक बार फिर से सुन लें, 8953325977। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद मिर्जापुर से ही प्राप्त सूचना के अनुसार अंजलि, जिनके पिता का नाम जोगिंदर है, अंजलि निवासिनी है ग्राम वजरडीहा बजहा थाना कछुआ जनपद मिर्जापुर की। अंजलि 7 मई 2026 से लापता हैं। इनकी उम्र है 19 वर्ष, लंबाई 5 फिट, इनका रंग गोरा और चेहरा गोल है। इनके बारे में विशेष बात ये कि ये मानसिक रूप से कमज़ोर हैं। अगर आपको अंजलि के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त हो तो आप थानाध्यक्ष कछुआ मिर्जापुर को सूचित करें। और सूचना के लिए नंबर है 6307609783, 6307609783। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। और अब सुनिए इलाकाई खबरें लखनऊ केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 81 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वज़ीराला ने कहा कि फिरोजाबाद और अलीगढ़ तरक्की और लोगों को बाख्तियार बनाने के एक नए बाब का मुशाहिदा करेंगे। उन्होंने बताया कि फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत की 81 तरक्याती मनसूबों और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की लागत के 85 तरक्याती मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के इस्तेफादा कुनिंदगान में घर की चाबियां तकसीम की जाएंगी और मुख्तलिफ स्कीमों के फायजीन को सर्टिफिकेट, चेक और आलात वगैरह भी तकसीम किए जाएंगे। वज़ीराला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश ने न्यू इंडिया की मिसाल पर चलते हुए अपनी एक नई अलग पहचान बनाई है। डबल इंजन वाली हुकूमत की पॉलिसियों की बदौलत बुंदेलखंड तेज़ी से तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीराला ने महोबा और बुंदेलखंड में 697 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 88 तरक्याती प्रोजेक्टों और हमीरपुर ज़िले में 636 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 75 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किद एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीराला ने कहा कि बुंदेलखंड की तरक्की रियासती हुकूमत की तरजीह है। इस सिलसिले में बुंदेलखंड में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का अहाता किया गया है। जनाब योगी ने कहा कि बुंदेलखंड जल्द ही मिज़ाइल हब के तौर पर भी जाना जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश की डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में बनी हुई मिसाइल ने साबित करके दिखाया और उसका हब हम चाहते हैं आने वाले समय में हमारा महोबा बने, हमीरपुर बने, चित्रकूट बने, झांसी बने, ऊर्जा के केंद्र के रूप में विकसित हो। और इसलिए विकास की योजनाओं को लेकर के औद्योगिक निवेश के लिए भी हम लोगों ने एक औद्योगिक क्लस्टर यहाँ विकसित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। करवई बांध के जिन किसानों ने जमीन दी थी, वर्षों से की भूमि का पैसा नहीं मिला था, उसको निस्तारित

0: करके उसका भुगतान की कार्रवाई को संपन्न किया गया।
1: गुज़िश्ता रोज़ बैनुल अक़वामी योगा डे जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर न सिर्फ मुल्क बल्कि दुनिया भर में योगा पर प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर मुनक़िद मरकज़ी बैनुल अक़वामी योगा डे की तकरीब में कौम की क़यादत की। जनाब मोदी ने योगा की मशक की और योगा को हमारे रोज़मर्रा के मामूलात का लाजमी हिस्सा बनाने का पैगाम दिया। रियासत में योगा डे के मौके पर तमाम अज़ला में प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने झांसी और बुंदेलखंड में मुनक़िद तकरीब में शिरकत की और लोगों को योगा के मशक करके सेहतमंद रहने की तरगीब दी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पानी के तहफ़ को एक अवामी तहरीक बनाने पर जोर देते हुए कहा कि गैर यकीनी मौसम और मुमकिन मानसून की तब्दीलियों के पेश नज़र रियासत के हर बाशिंदे को पानी के तहफ़ के लिए कोशिशों में शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पानी की एक बूंद भी ज़ाय नहीं होनी चाहिए। कैच द रेन मुहिम को ज़्यादा मौसर तरीके से लागू किया जाना चाहिए और बारिश के पानी को ज़खीरा करने को वसी पैमाने पर अवामी शिरकत से मुंसलिक किया जाना चाहिए। रियासती हुकूमत ने कबायली अक्सरियती ज़िले सोनभद्र में 257 करोड़ रुपए की लागत से 86 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाने का फैसला किया है। ज़िला मजिस्ट्रेट चर्चित गौड़ ने बताया कि सड़क की तामीर के लिए सर्वे और टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल हो जाएगा और काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि इन सड़कों की तामीर से 4 सरहदी रियासतों के साथ रबते में बेहतरी आएगी। ये राबता सनतों के लिए खाम माल और तैयार मसनूआत की नकलो हमल में सहूलत फराहम करेगा। रियासत के बेशतर अजला में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है। कई अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा है। गर्मी ने आम जिंदगी को दरहम बरहम कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की यह लहर आइंदा 3 से 4 रोज़ तक जारी रहेगी। मानसून के मशरकी उत्तर प्रदेश में महीने के आखिर तक पहुँचने की आमद है। दूसरी तरफ रियासत में बढ़ते हुए दर्जा हरारत और गर्मी की लहर की सूरत हाल के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बुनियादी तालीमी काउंसिल से मुंसलिक स्कूलों और तस्लीम शुदा स्कूलों में गर्मियों की तातीलात 24 जून तक बढ़ा दी हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।
2: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 1:15 हो चुके हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी।
3: सखियों के साथ,
4: सखियों की बात,
3: सखियों के जज्बात,
4: गृहलक्ष्मी।
5: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोता बहनों को और हमारी रेडियो सखी पूजा को मेरा यानी कि इला का प्यार भरा नमस्कार।
6: इला जी आपको और मेरी प्यारी सखियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
5: हमारी बहनों के साथ बहुत दिल का रिश्ता है और ये रिश्ता ऐसा है ना कि भाई हम तो अपने जब कार्यक्रम का समय होता है तो अपने आप को लगता है कि कितनी जल्दी हमारी घड़ी समय बताए कि भाई हमें बहनों से रूबरू होने का समय आ चला है। वैसे पूजा, हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं और नए रिश्ते भी जुड़ते हैं, है ना।
6: हाँ, और जैसे माता पिता को ले लीजिए, भाई बहन को ले लीजिए, लेकिन सबसे अलग जो रिश्ता होता है वो होता है पति पत्नी का। और पति पत्नी में अगर नोक झोंक ना हो तो फिर वो प्यार नहीं होता है।
5: बिल्कुल।
6: और ये जो पति पत्नी वाला रिश्ता यानी जो विवाह है वो कह लीजिए तो एक गाड़ी होती है ना, उसके दो पहिए की तरह है। अगर एक पहिया थोड़ा सा भी खराब हो जाए तो अगला पहिया काम करना बंद कर देता है। तो विवाह दो लोगों का एक सहयोग भी है और साथ ही दो परिवारों का भी मेल है।
5: बिल्कुल सही बात है कि विवाह जो है वो दो परिवारों को जोड़ने का खूबसूरत सा बंधन है और साथ में विवाह एक जिम्मेदारी है, ये बोझ नहीं है। यह दो दिलों को साथ में जीवन भर का जोड़ करके रखता है और मुझे लगता है कि विवाह ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके बंधन में जब दो लोग जुड़ते हैं, उनके साथ दो परिवार जुड़ते हैं, दो परिवार के आपसी रीति रिवाज भी जुड़ते हैं, अगर इस रिश्तों को बहुत समझदारी के साथ, खूबसूरती के साथ, प्यार के साथ और देखभाल के साथ सजाया जाए तो जो वैवाहिक जीवन होता है ना वो बहुत सुखमय बन जाता है।

0: और इला जी देखिए ना, जिस विवाह में सम्मान, सहयोग और त्याग ना हो ना, तो इनके बिना कोई भी रिश्ता नहीं टिकता है। और तब ये विवाह क्या होता है कि विवाह में तनाव होने लगता है। और जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, अगर वो दोनों मिल के बात करें कहाँ पे क्या कमी रह गई, कहाँ पे किस चीज़ों को लेकर मतलब तनाव हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें अपने आप धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएंगी।
1: बिल्कुल, क्योंकि देखो पूजा, अभी क्या है ना, आज के समय में भाई महिलाएं भी काम कर रही हैं, वर्किंग हैं, तो उनके पास भी समय उतना नहीं मिलता है कि घर को कैसे मैनेज किया जाए। ऐसे में भाई पति अगर कहता है कि भाई हम भी तुम्हारा सहयोग करते हैं, तो दोनों के सहयोग से, और अगर पति की आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए पत्नी को सहयोग करती है, तो जो दोनों के सहयोग से जो रिश्ता है ये और मजबूत होता है, और ऐसे में ही ना वैवाहिक जीवन सुखमय भी होता है।
0: हाँ, और देखिए ना कि जैसे कि आजकल वर्किंग वूमेन ज़्यादा हैं, ऐसे में पति का सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। अगर कभी पत्नी बीमार पड़ जाए तो पति उनका सहयोग कर दे, तो वो घर के जो काम हैं उसको करने में आसानी भी हो जाती है, और जो पत्नियां हैं वो भी उनके उन्हें भी अच्छा लगता है कि चलो हमारा जो पार्टनर है वो हमें सपोर्ट कर रहा है, हमारा ध्यान रखना है। यही कुछ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो विवाह को एक सुखद वैवाहिक जीवन बनाता है।
1: बिल्कुल, दो अनजाने लोग जब एक ही पथ पे आगे बढ़ते हैं ना, तो वो खूबसूरत सा रिश्ता उम्र भर का जो साथ है, वो और खूबसूरती के साथ दिलों को सुकून दे जाता है।

0: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
1: सुनो ना।
2: हाँ?
1: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
3: 0542227658।
1: ओ
0: 0542227658।
1: लो अभी फोन लगाता हूँ।
0: 0542227658।
4: इला जी, सफल विवाह की नींव जो है वो आपसी विश्वास, प्रभावी संवाद और एक दूसरे के सम्मान पर टिकी होती है। क्यों?
5: बिल्कुल, जो विवाह है ये ऐसा संस्कार है हमारे जीवन का कि जैसे हर उम्र के हिसाब से सबके जीवन में कुछ न कुछ आता है। बाल्यावस्था आती है, उस समय हम लोग पढ़ते लिखते हैं, अपने व्यक्तित्व को बनाते हैं। युवावस्था आने पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ता है, और ऐसे में जब अपने को होता है कि भाई अब कुछ आमदनी भी करनी है, और जहाँ हमारे यहाँ का तो ऐसा कल्चर है ना, हमारे अपने यहाँ पे, या हर, मुझे लगता है हर देश हर संस्कृति में युवावस्था होने के बाद जहाँ स्त्री पुरुष अपने पैरों पे खड़े हुए उनको विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है।
4: ये तो है।
5: और इस बंधन को खूबसूरती बनाए रखने के लिए आपसे समझदारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन कभी कभी छोटी मोटी नोक झोंक से या आपसी नासमझी से ये रिश्ते कभी कभी थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाते हैं कि कैसे तालमेल बिठाया जाए। क्यों ना हो, बहनों को हम इसी से जुड़ी हुई एक अच्छी सी वार्ता सुनवा दें। सुखद वैवाहिक जीवन की कुंजी आपसी विश्वास। वार्ताकार हैं डॉक्टर ऋचा सिंह। तो बहनों आइए सुनते हैं ये वार्ता।
6: सुखद वैवाहिक जीवन की कुंजी आपसी विश्वास। जिंदगी में वैसे तो सभी रिश्तों की बहुत अहमियत है, चाहे वह माता पिता व संतान के बीच का हो या फिर मित्रता का श्रेष्ठ संबंध हो। पर इन सब रिश्तों में एक रिश्ता ऐसा भी है जिसे इन सब से बढ़कर कहा जा सकता है। इसलिए नहीं क्योंकि वह सभी को बहुत ज़्यादा प्रिय है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकतम समय के सुख दुख और खुशियों को तय करता है, और वह रिश्ता है विवाह का, पति पत्नी का पवित्र सामाजिक संबंध। भारतीय समाज में विवाह को बेहद अहम संबंध की संज्ञा दी जाती है। विवाह एक ऐसी धार्मिक और सामाजिक संस्था का नाम है जो न सिर्फ संबंधित महिला पुरुष को बल्कि उन दोनों परिवारों को भी आजीवन के लिए सूत्र में बांध देता है। दो अलग अलग स्वभाव के लोग और विभिन्न तरीकों वाले परिवार जब इस विवाह के पश्चात एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो इस जुड़ाव को बरकरार रखने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान देना होता है। भारत में विवाह सबसे पवित्र बंधन माना जाता है, लेकिन आजकल वैवाहिक युगल के रिश्तों में दरार आना आम बात हो चुकी है, जिससे उनके जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। वैवाहिक जीवन को सुख

सुखद बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वे एक दूसरे की बातों को समझें व दोनों एक दूसरे की बातों का सम्मान करें। विवाह के लिए सबसे जरूरी है विश्वास। विश्वास के बिना वैवाहिक जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। विश्वास पर ही इस रिश्ते की नींव टिकी होती है, जिसके जरा भी डगमगाने पर रिश्ता रूपी दीवार को ढहने में जरा भी वक्त नहीं लगता। पति पत्नी का रिश्ता जीवन भर का होता है। जीवन में अनेक क्षण ऐसे आते हैं जब सहनशीलता और समर्पण की आवश्यकता होती है। कठिनाइयां भी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अनेकों बार आती हैं, परंतु रिश्ते में विश्वास और समर्पण की भावना है तो मिलकर उन कठिनाइयों से उभरने में जरा भी वक्त नहीं लगता। रिश्ते में विश्वास बनाए रखने के लिए एक दूसरे के बीच सच्चाई बहुत ज़रूरी है। पति पत्नी दोनों ही एक दूसरे को इस तरह का माहौल प्रदान करें कि कोई भी किसी तरह की बात को करने में हिचकिचाए नहीं और किसी बात को छुपाए नहीं। एक साथी द्वारा बातें तब छुपाई जाती है जब दूसरा उन्हें समझने की कोशिश नहीं करता। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे रिश्ते में दूरियां बढ़ने लगती हैं और विश्वास खत्म हो जाता है। मनमुटाव, नोकझोंक प्रत्येक पति पत्नी में होती हैं, लेकिन उस नोकझोंक को ज़्यादा न बढ़ने दें तथा बैठकर सुलझाने का प्रयास करें। पति पत्नी में विश्वास से ही पैदा होता है सम्मान। यह रिश्ता बराबरी का होता है, न कोई बड़ा न कोई छोटा होता है। किसी भी नोकझोंक में कभी भी अहम की भावना को न आने दें तथा कभी भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे शब्दों का न उपयोग करें कि दूसरे का दिल आहत हो जाए। मनमुटाव के बीच हमेशा शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखें। अपशब्दों या कटु शब्दों का प्रयोग एक साथी के मन में हीन भावना पैदा कर सकता है। कभी कभी दूसरे साथी को खुश करने के लिए ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो आपको पसंद नहीं है, परंतु इस तरह का व्यवहार रिश्ते में प्यार और विश्वास बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन माना जाता है जो न केवल परिवार निर्माण की धुरी है बल्कि समाज का स्वरूप भी तय करती है। विवाह दायित्वों से भरे मर्यादित जीवन की ओर बढ़ा कदम है। यह आपकी आज़ादी ही नहीं छीनता बल्कि आपको अपना सामर्थ्य बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, अपने चरित्र को और ऊंचा उठाने का अवसर देता है, उन मुश्किलों के जरिए, उन जिम्मेदारियों के जरिए जिन्हें स्वीकार करने का साहस हम कभी नहीं कर पाते। हर वैवाहिक व्यक्ति चाहता है कि उसका जीवन सफल और सुखद रहे, परंतु वैवाहिक जीवन में समस्याएं भी आती हैं, कुछ मामले में ज्यादा, कुछ मामले में कम। सभी दंपतियों को इन समस्याओं से निपटने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। आमतौर पर लोग सुखद वैवाहिक जीवन की कुंजी आर्थिक रूप से मजबूत होने को मानते हैं और यह कुछ हद तक सही भी है, लेकिन ज़रूरी नहीं। सुखद वैवाहिक जीवन की कुंजी कुछ और नहीं बल्कि एक दूसरे का प्यार और विश्वास है। कई बार किन्हीं कारणों से पति पत्नी एक दूसरे के विपरीत होने और अलग अलग विचार होने के कारण आपस में सौहार्द नहीं बना पाते हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि एक दूसरे की सोच और विचारों का सम्मान करते हुए एक दूसरे को समझें। एक दूसरे के काम को महत्व देना और उसकी अहमियत समझ उसमें अपने साझेदारी दिखाना भी सुखद वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही अपने साथी के साथ दोस्ताना व्यवहार करना चाहिए, तभी आपका साथी आपसे बेझिझक मन की बात कर पाएगा। ऐसा कहा जाता है कि पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं। दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना दोनों की राहें मुश्किल हो जाती हैं। आपसी समझ किस हद तक है और किस हद तक वे एक दूसरे को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, यह संबंध इसी बात पर टिका है। वैवाहिक जीवन में आपसी विश्वास बहुत ज़रूरी है। जब विश्वास टूट जाता है तो संबंध का अंत हो जाता है। विश्वास का अभाव संदेह की ओर ले जाता है। संदेह

0: से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध के कारण शत्रुता अलग होती है। संत कबीरदास जी के जीवन से संबंधित एक प्रसंग के माध्यम से वैवाहिक जीवन में विश्वास के महत्व को समझा जा सकता है। संत कबीर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ काशी नगरी में बेहद साधारण जीवन व्यतीत करते थे। वे व्यवसाय से जुलाहे थे और सूत कातकर जो भी धन मिलता था, घर के सभी प्राणी उसी में हंसी हंसी खुशी गुजर बसर करते। आजीविका का प्रबंध करने के पश्चात जो समय बचता उसमें वे सत्संग का आयोजन करते जिसमें सभी वर्गों के लोग शामिल होते। एक दिन की बात है, सत्संग समाप्त होने के पश्चात सभी लोग तो चले गए पर एक युवक वहीं बैठा रहा। वह बड़ा दुखी और बेचैन सा प्रतीत हो रहा था। शायद कोई समस्या उसे रह रहकर परेशान कर रही थी। उसी का समाधान ढूंढने आज वह यहाँ आया था। एकांत देखकर वह संत कबीर दास के पास गया और उन्हें प्रणाम करने के पश्चात बोला, मैं अपने वैवाहिक जीवन से बड़ा दुखी हूँ। घर में बिल्कुल शांति नहीं रहती। अब मुझे संसार में रहने की इच्छा नहीं है। कृपया मुझे संन्यास की दीक्षा देने की कृपा करें जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके और सभी दुखों से मुक्ति पा सकूं। संत कबीरदास ने एक बार युवक को ध्यान से देखा, फिर अपनी पत्नी को आवाज लगाई। जब वे घर से बाहर आईं, तो कबीर जी ने उन्हें दीपक जलाकर लाने को कहा। उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी बिना कुछ पूछे घर के अंदर गई और एक दीपक जलाकर संत कबीरदास के पास रखकर घर के अंदर वापस चली गई। न तो संत कबीर ने न ही उनकी पत्नी ने अपने मुख से कुछ कहा, पर वह युवक आश्चर्यचकित हुआ। यह सोच रहा था कि आखिर यह क्या हो रहा है, इस दोपहरी में कबीरदास जी इस दीपक का क्या करेंगे। उन्हें चुपचाप काम करता देख युवक ने सोचा, शायद संत जी उसके प्रश्न का उत्तर देना भूल गए हैं, इसलिए उसने प्रश्न फिर दोहराया। संत कबीर उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए बोले, यह दीपक तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। तुमने देखा ही होगा, जब मैंने अपनी पत्नी से दीपक जलाकर लाने को कहा, तो उन्होंने मुझसे दीपक की आवश्यकता के संबंध में कुछ पूछे बिना ही यह कार्य कर दिया और फिर अपने काम में लग गई। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि दिन अभी बचा हुआ है, बल्कि उन्होंने वह करना ज़्यादा ज़रूरी समझा जो मैंने उन्हें कहा था, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में ही उनकी खुशी निहित है। उनके हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा ही नहीं थी, बल्कि मुझ पर विश्वास भी था कि मैंने उनसे जो कार्य करने को कहा है वह व्यर्थ नहीं है। मैंने भी केवल एक ही बार उन्हें यह काम करने को कहा। यदि वे नहीं करती तो मैं उनसे यह काम करने को दोबारा नहीं कहता। मुझे आशा है कि अब तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। युवक आश्चर्यचकित होकर अपने घर चला गया। शायद अब उसे सुखद वैवाहिक जीवन का रहस्य मालूम हो गया था। श्रद्धा, विश्वास और सहनशीलता, ये तीन गुण ही सफल एवं सुखद वैवाहिक जीवन की नींव हैं। श्रद्धालु होने से व्यक्ति व्यर्थ के तर्क, कुतर्क एवं अहम से बचता है। विश्वास होने से प्रेम और आत्मीयता में वृद्धि होती है तथा समर्पण की भावना उपजती है। सहनशील बनने से हठ, जिद और उत्पीड़न की प्रवृत्ति का विनाश होता है।
1: सखियो, अभी आप सुन रही थी वार्ता। वार्ता का विषय था सुखद वैवाहिक जीवन की कुंजी आपसी विश्वास, और वार्ताकार थी डॉक्टर ऋचा सिंह।
2: पूजा, शादी ब्याह की बात आते ही मन में एक एक रोमांच होने लगता है ना, कि भाई चलो भाई अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे,
1: अच्छे
2: हैवी
1: अच्छे
2: मेकअप होगा,
1: हाँ
2: हैवी ज्वेलरी पहनेंगे, क्योंकि हम लोग सभी लोग को सजने संवरने का बहुत शौक होता है और
1: और
2: सजना सबको अच्छा लगता है। लेकिन हमारा सजना तब अच्छा लगता है जब हमारा पहनावा ओढ़ावा हमारे मौसम के अनुसार हो और हमारे शरीर पे शरीर के अनुसार हो जो कि हमारे शरीर को सुंदर बनाए।
1: और इसमें हमारी जो ज्वेलरी है इलाजी, उसका भी बहुत रोल होता है।
2: बिल्कुल, तो बहनें हमारी पहनती भी हैं और सुंदर भी लगती हैं। लेकिन बहनों, हर चीज़ का अपना एक रखरखाव होता है। ज्वेलरी को आप पहनिए, लेकिन पहनने के बाद उसकी सावधानी

0: से उसको जतन के साथ जरूर रखिए ताकि उसकी चमक बरकरार रहे। अगर आप सोने के आभूषण पहन रहे हैं तो सोने के आभूषण की रख रखाव तो बहुत ज़्यादा खास हो जाती है क्योंकि वो सुरक्षा मांगता है।
1: और कोई भी गहना हो, कोई भी ज्वेलरी हो, उसको प्लास्टिक में ना रखें, क्योंकि उसमें कभी कभी नमी आ जाती है जिससे वो गहनों की जो चमक होती है वो खराब हो जाती है।
0: खास तौर से जब आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर
1: हाँ
0: हमारी बहनें पहन रही हैं तो उसको जरूर ध्यान रखिए कि हवा और नमी के संपर्क में वो न आए।
1: और जो सोने चांदी के गहने होते हैं ना, उन्हें काला पड़ने से बचाने के लिए उन्हें बॉक्स में सिलिका पाउच रखें जिससे नमी ना आए और उनकी चमक जो है वो हमेशा बरकरार रहे।
0: हाँ, और सोने चांदी की ज्वेलरी को आप सुरक्षित जगह पे रखिए और साथ ही उसकी साफ सफाई करिए, हो सके तो उसकी पॉलिशिंग करा के रखिए ताकि उसकी चमक बरकरार रहे। और जो सिंथेटिक होती है आपकी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है,

0: सिंथेटिक होती है आपकी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसके साथ में, कि अगर आप बहनों आप पहन रही हैं तो आप उसके पीछे में आप हल्का सा जो ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश होती है अगर आप पीछे लगा देती हैं तो उससे क्या होता है ना कि आपको भी कभी कभी बहुत सी बहनों में होती है कि इस तरीके की चीज़ों से सिंथेटिक चीज़ों से उनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो वो नहीं होती है और उसकी चमक भी बरकरार रहती है।
1: और इला जी एक बात और है कि जब भी बहनें तैयार हों, सखियां तैयार हों, तो परफ्यूम लगाते समय ज्वेलरी कभी ना पहने, इससे ज्वेलरी का रंग जो होता है वो काला पड़ सकता है। और एक बात, जब भी आपको बहुत पसीना आए तो भी ज्वेलरी पहनने से, थोड़ा हैवी ज्वेलरी पहनने से बचना चाहिए, क्योंकि उससे भी धातु जो है वो खराब हो सकती है।
0: बिल्कुल सही बात है। तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं ये आर्टिफिशियल या फिर सोने की ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी कोई भी हो, ये हमारी खूबसूरती को और बढ़ाते ही हैं। तो आपकी खूबसूरती ऐसी बरकरार रहे, और हम अपने प्रोग्राम में खूबसूरती में से चार चांद लगाते हैं इस गाने के माध्यम से। तो बहनों आइए सुनते हैं ये गीत।

0: निरंतर उसका अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है।
1: और योग करने से सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं, जो मन है वो भी शांत होता है, हमारा जो तनाव है, हमारा जो चित्त है वो भी स्थिर होता है। क्यों ये
0: बिल्कुल,
1: रहता है?
0: हम तो यही कहेंगे ना कि स्वस्थ जीवन का एक ही राज, योग करो अपने साथ, योग करिए। और योग का फायदा है कि जहाँ आपका जो पाचन तंत्र है योग के माध्यम से, वो आप सही कर सकते हैं। प्राणायाम आपके हृदय को मजबूत करता है, आपके श्वसन तंत्र को मजबूत करता है, और इसके साथ साथ निरंतर योग करने से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। क्रॉनिक बीमारियां जो लंबे समय से चल रही हैं, यानी कि थायराइड है, शुगर है, डायबिटीज़ है ना, मोटापा है, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर लो ब्लड प्रेशर की समस्या है, ये सारी बीमारियां भी आप निरंतर अगर योग कर रहे हैं तो काफ़ी ये नियंत्रण में रहती है। तो आप अपने साथ में, जैसे आप अपनी रूटीन में खाना पीना करते हैं, वैसे ही योग को भी एक रूटीन में अपना के रखिए।
1: हाँ, और मतलब इला जी, आपका कहना है कि योग करने से बहुत सारी बीमारियां बिना दवाओं के भी ठीक हो सकती हैं।
0: बिल्कुल, ये नियंत्रण में रहती हैं भाई, अगर बराबर योग करेगा तो ऐसी कोई बीमारियां होंगी भी नहीं
1: हाँ,
0: और हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी
1: बनी
0: रहती है।
1: रहेगी। सही बात है इला जी। देखिए ना, घड़ी की सुइयां जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और कह रही है कि हम अपने सखियों से अब
0: विदा
1: विदा ले
0: लेते
1: ले।
0: हैं। तो चलिए बहनों, फिर अगले कार्यक्रम में फिर हम लोग आएंगे कुछ नई बातों के साथ में। आज करते हैं आपको नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: सखियों के साथ,
3: सखियों की बात,
2: सखियों के जज्बात,
3: गृह लक्ष्मी।
4: अभी बहनें सुन रही थी अपना कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। लीजिए सुनिए लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं रीना देवी और साथी। इनकी आवाज में पहले आपको सुनवा रहे हैं दादरा।

बहनों, कल हम सभी ने योग दिवस मनाया, तो बहनों हम आपसे कहेंगे कि इस ये सिर्फ एक दिन का समय नहीं होता है, कोई भी जो हम लोग मनाते हैं दिवस,

आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कलाकार हैं रीना देवी और साथी। कार्यक्रम के आखिर में इनकी आवाज में सुनिए छप रहिया।

अब से चेता भाई, अब से

इस छपरैया के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। कलाकार थी रीना देवी और साथी। हम आपको बता दें, इन्हीं का गाया लोकगीत आप कृषि जगत कार्यक्रम में शाम 6:30 पर भी सुनेंगे। आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 2 बजने वाले हैं। मिड डे न्यूज और उसके बाद दोपहर समाचार आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से।

0: register their second win of the leg against the Dutch side. Stand-in captain Hardik Singh was named player of the match for his leadership and strong midfield performance. Benchmark domestic equity indices were trading around 0.5% up in the afternoon session today. The Sensex rose 375 points to 77,178, while the Nifty advanced 108 points to 24,121 when reports last came in. In the broader market on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index added 0.3%, while the small-cap 100 index was trading 0.5% up a short while ago. And now before we end the bulletin, the headlines once again. BJP government in West Bengal presents first full budget focusing on social welfare, infrastructure development and employment, announces a slew of women-centric schemes. BRICS National Security Advisors meeting begins in New Delhi to discuss emerging security challenges. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar arrives in Mongolia to hold meeting with his counterpart to deepen economic ties. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Assam and Meghalaya today. And in FIFA World Cup, Egypt beat New Zealand 3-1 to secure first ever World Cup victory. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू, उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर मंगोलिया पहुंचे, आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने पर अपने समकक्ष से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जनकल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने बजट पेश करते हुए बताया कि नौकरियों में 33% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें शिक्षकों और शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए 50,000 पद और पुलिस विभाग में 20,000 नियुक्तियां शामिल हैं। अग्निवीरों के लिए आवश्यकता अनुसार 10% आरक्षण शुरू किया गया है। सिविक वॉलंटियर्स, होमगार्ड, ग्रीन पुलिस कर्मियों और एनवीएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय ₹2,000 बढ़ाया गया है। कोलकाता क्षेत्र के लिए कल्याणी के पास एक नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का प्रस्ताव है। बजट में दो प्रमुख रक्षा केंद्रों के विस्तार और विकास में मदद के लिए हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन को 37 एकड़ जमीन सौंपने का प्रस्ताव भी है। एक रिपोर्ट।
2: राज्य सरकार ने सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और शिक्षा कर्मियों के लिए 20% महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। महंगाई भत्ता बढ़ के 38% हो जाएगा। यही सुविधा पेंशन भोगियों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि ये दर 1 अक्टूबर से लागू होगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वर्तमान में राज्य पर कुल ऋण 8,15,891 करोड़ रुपए की है। इस कारण सामाजिक परियोजनाओं और वित्तीय शासन की बीच संतुलन बनाए रखना सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा है। बजट में अन्नपूर्णा योजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। पार्श्व शिक्षक का वेतन 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। आंगनवाड़ी कर्मी और आशा कर्मियों के लिए मासिक मानदेय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। चंदीपन दासगुप्ता के साथ काशफिन नाहर, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
1: तमिलनाडु विधानसभा में आज कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना पर चर्चा हुई। AIADMK, PMK और CPM सहित विपक्षी दलों ने आशंका जताई कि इस परियोजना से कावेरी जल बंटवारे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और तमिलनाडु के हित प्रभावित हो सकते हैं।

0: राज्य सरकार ने परियोजना के विरोध में अपना रुख दोहराते हुए कहा कि वो तमिलनाडु के जल अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने मेकेदातु जल न्यायाधिकरण के गठन की मांग से जुड़े विधानसभा के सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का भी उल्लेख किया। ओडिशा में विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाढ़ी ने मार्च में राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजू जनता दल बीजेडी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग के आरोपी विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है। अध्यक्ष ने कहा कि दलबदल विरोधी कानून के अंतर्गत याचिकाओं में गंभीर प्रक्रियात्मक कमियां और सबूतों का मानक अभाव था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुनो नेशनल पार्क में चीता मित्रों और सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत की। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता में उनके योगदान की सराहना की। राष्ट्रपति ने कहा कि इस महत्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम की सफलता में स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ने कूनो नेशनल पार्क में सफारी की और चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने चीता कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का दौरा किया। उन्होंने प्रोजेक्ट चीता पर लगी प्रदर्शनी देखी और जानवरों की निगरानी, ट्रैकिंग और संरक्षण के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी ली। अधिकारियों ने राष्ट्रपति को बताया कि भारत में अभी 52 चीते हैं, जिनमें 49 कूनो नेशनल पार्क में हैं, जबकि 3 को गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य में स्थानांतरित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2022 में प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत की थी। उन्होंने नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना से और चीते लाए गए। समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: नई दिल्ली में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की बैठक चल रही है। 2 दिन की इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल कर रहे हैं। बैठक में समूह के 11 सदस्य देशों के सुरक्षा प्रमुख भागीदारी कर रहे हैं। इन देशों में भारत, ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। बैठक का मुख्य विषय वर्तमान समय में गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियां हैं। इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के तेजी से बदलते स्वरूप और उभरते सुरक्षा जोखिमों में नई तकनीकों की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने देश के विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ की अहम भूमिका पर जोर दिया है। नई दिल्ली में आज सीआईएसएफ के मुख्यालय के इमारत के भूमि पूजन और ई उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि सीआईएसएफ के जवान देश की तरक्की को सुरक्षित रखने वाले आर्थिक सैनिक के तौर पर काम करते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर आज 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मंगोलिया पहुंचे। डॉ जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे भारत और मंगोलिया के बीच विशेष साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक वार्ता की आशा करते हैं। इस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री मंगोलिया के विदेश मंत्री बी बत्सिसक के साथ वार्ता करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में विदेश मंत्री बुधवार और बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया जाएंगे। यात्रा के दौरान डॉ जयशंकर वहां के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ चर्चा करेंगे। वे बृहस्पतिवार को जेजू में शांति और समृद्धि के लिए जेजू फोरम पर मुख्य भाषण भी देंगे। विदेश मामलों की स्थायी समिति ने सामरिक सीमा सुरक्षा और विदेश नीति मुद्दों की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 4 दिन की अध्ययन यात्रा शुरू की। सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता में ये समिति सीमांत क्षेत्रों में सीमा प्रबंधन और सुरक्षा स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन करेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 25 जून तक समिति जम्मू, श्रीनगर, करगिल और लेह की यात्रा करेगी। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर जलपाईगुड़ी के जलदाबाड़ी में एक सड़क दुर्घटना में 2 और घायलों की मृत्यु होने के बाद मृतकों की संख्या 6 हो गई है। मृतकों में 2 महिला और 1 बच्चा भी शामिल है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और 2 मंत्रियों ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। उत्तर प्रदेश में कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। झारखंड में पिछले 24 घंटे में बिजली गिरने से लगभग 8 लोगों की मृत्यु हो गई और 12 से अधिक लोग घायल हुए हैं। बिजली गिरने की घटनाएं रामगढ़, गिरिडीह, खूंटी, देवघर,

0: धनबाद और साहिबगंज जिलों में हुई हैं। बिजली गिरने की घटना में मरने वालों में सीपीआई के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज लुधियाना में प्रख्यात कृषि वैज्ञानिक और पद्म भूषण से सम्मानित सरदारा सिंह जोहल से मुलाकात की। श्री नवीन ने उनके साथ पंजाब के कृषि संकट पर चर्चा की। बैठक के बाद श्री नवीन ने कहा कि श्री जोहल के साथ बातचीत के दौरान कृषि के मुद्दों पर अमूल्य जानकारी प्राप्त हुई।
1: मैं मानता हूं कि ऐसी शख्सियत जिसने किसानों की भावनाओं को समझा, कृषि को समझा और कृषि को कैसे एक सही रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस चीज को उन्होंने एक रिसर्च के रूप में देखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे शख्सियत से मिलना मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है।
0: केंद्रीय सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ. एल मुरुगन आज शाम 2 दिन के मध्य प्रदेश दौरे पर भोपाल पहुंच रहे हैं। डॉ. मुरुगन कल देवास जिले की कन्नौज तहसील के डोकाकोई जाएंगे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा परिचर्चा में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केर स्टार्मर ने 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर एक बयान में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि पद पर रहते हुए उन्होंने जो भी फैसले किए उनमें देश को सबसे पहले रखने की बात ही मुख्य रही है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर में 0.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 375 अंक बढ़कर 77,178 पर, जबकि निफ्टी 108 अंक बढ़कर 24,121 पर कारोबार कर रहा था। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता समाप्त होने के बाद आज कच्चे तेल की वैश्विक कीमत में 3% तक की गिरावट दर्ज की गई। इससे आपूर्ति बाधा को लेकर चिंताएं समाप्त होने और ईरान के तेल निर्यातों में वृद्धि की आशा बढ़ गई है। पश्चिम एशिया में नाजुक संघर्ष विराम को बढ़ाने तथा तनाव को कम करने पर केंद्रित पहले दौर की वार्ता के समापन की खबर अमेरिका और ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद ये गिरावट आई है। ताइवान की सेना ने 5 दिवसीय तत्काल युद्ध तत्परता अभ्यास शुरू किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में सैन्य बल तुरंत और प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया दे सकें। ताइवान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस अभ्यास के जरिए सैन्य इकाइयों की शांतिकाल से युद्धकालीन संचालन में तेजी से बदलाव करने की क्षमता को मजबूत किया जाएगा। यह अभ्यास ऐसे समय में हो रहा है जब हाल के वर्षों में चीन ने ताइवान के आसपास अपना सैन्य अभ्यास और गतिविधियां बढ़ा दी हैं। फीफा विश्व कप 2026 में मिस्र ने आज सुबह वैंकूवर में न्यूजीलैंड पर इस विश्व कप में 3-1 से अपनी पहली जीत दर्ज की। लिवरपूल के स्टार खिलाड़ी मोहम्मद सलाह ने टूर्नामेंट में अपना पहला गोल किया। इस जीत के साथ मिस्र ग्रुप सी में पहले स्थान पर पहुंच गया है। आज ग्रुप जे में अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, कर्नाटक, तेलंगाना, केरलम, गोवा, ओडिशा और पूर्वोत्तर के कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और कार्यकाल में भी दिन के दौरान ऐसी स्थिति रहेगी। आज हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवा तथा बादल गरजने के साथ वर्षा का भी अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, विदर्भ और तेलंगाना में कल तक लू चलने की संभावना है। हरियाणा के राखीगढ़ी पुरातात्विक स्थल से खुदाई में मिले मानव कंकाल अवशेषों को उन्नत वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण को सौंप दिया गया है। ये प्रक्रिया भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के बीच हाल ही में हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत की गई है। करीब 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला राखीगढ़ी सिंधु सरस्वती सभ्यता की सबसे बड़ी ज्ञात बस्ती माना जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन कंकालों के अध्ययन से सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोगों के जीवन स्वास्थ्य और

0: सामाजिक संरचना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सकेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एक लेख साझा किया। इस लेख में कानूनी व्यवस्था को मजबूत करने, न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं को अधिक सुलभ बनाने की सरकार की कोशिशों का उल्लेख किया गया है। अपने लेख में श्री मेघवाल ने कहा कि न्यायिक संस्थान एक पुल की तरह काम करते हैं, जो हर हितधारक को न्याय की व्यापक खोज और सामूहिक भलाई के साथ विश्वास, अपनापन और जुड़ाव की भावना विकसित करने में मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता इस बात का प्रमाण है कि योग न केवल विश्वभर में लाखों लोगों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने में मदद कर रहा है, बल्कि उन्हें सकारात्मक जीवन जीने के लिए प्रेरित भी कर रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। सामाजिक कल्याण, अवसंरचना विकास और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करते हुए महिलाओं के लिए कई योजनाओं की घोषणा। नई दिल्ली में आज से ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक शुरू। उभरती सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर मंगोलिया पहुंचे। मौसम विभाग ने आज असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। और फीफा विश्व कप में मिस्र ने न्यूजीलैंड को 3-1 से हराकर विश्व कप में पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2:23 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। श्रोताओं, आज का ये कार्यक्रम भोजपुरी फिल्म संगीत का है और आपके व्हाट्सएप संदेश पर आधारित इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे उन फिल्मों के नाम जिनके गीत आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे और उन्हीं गीतों के लिए आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। तो आज का फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो हम सफर अंजना झा के साथ। हम कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले आपसे अनुरोध, आज के इस कार्यक्रम में आप केवल एक बार ही अपना संदेश, अपनी फरमाइश हम तक पहुंचाएंगे और एक श्रोता कोशिश करें कि एक संदेश में आप 4 या 5 नाम ही मेंशन करें ताकि हम आपके नाम को सही तरीके से पढ़ सकें और सभी संदेशों को आज के इस कार्यक्रम में शामिल कर सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और बताते हैं उन फिल्मों के नाम जिनके गीत सुनने के लिए आज आपको हमें व्हाट्सएप संदेश भेजना है। हमारी फिल्में हैं सैया हमार, दुल्हा गंगा पार के, बलम परदेसिया और पिया के गांव। फिल्मों के नाम एक बार फिर से सुन लें, सैया हमार, दुल्हा गंगा पार के, बलम परदेसिया और पिया के गांव। पहला गीत सैया हमार फिल्म से। हम गीत आपको सुनवाएं उसके पहले संदेश पढ़ लेते हैं। ये संदेश आया है बक्सर बिहार से। शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराह बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीबा, वसीम अंसारी। सारिमपुर बक्सर से राज एसडी अंसारी, आसमा खातून अंसारी, आफताब अंसारी, मेहताब अंसारी, मेराज अंसारी, कल्लू और मल्लू अंसारी। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गम्हरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमानिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष और अभिनव जायसवाल। छत्तीसगढ़ नगर पंचायत पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा। सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष और आकर्ष राजभर। ये संदेश आया दतरिंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा। ग्राम ममना हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। गम्हरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल, आर्य जायसवाल, बबरी बाजार चंदौली से विजय और सरोज जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से मुराहू जायसवाल, देवंती जायसवाल और

चकिया बाजार चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल, ग्राम पंचायत बठेना पाटन दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और यश प्रयाण वर्मा, मुजफ्फरपुर बिहार से राजू कुमार, बिट्टू कुमार, मुन्नी कुमारी, कल्पना, अर्चना, नंदिनी और चांदनी, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका और प्रभा देवी तामुरिया और अल कबीर। नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय, नवनीत राय और ये संदेश आया लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, रानी मानिकपुरी, उज्जवल दास मानिकपुरी का। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह यादव, दीनानाथ सिंह यादव और कयूम शाह। और एक संदेश और लेते हैं फिर गीत की तरफ चलेंगे। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, यहीं से लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। गीत सुनिए, फिल्म का नाम है सैया हमार।

सैया हमार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और अगला गीत दुल्हा गंगा पार के फिल्म से। और दोनों ही गीतों के लिए मिलीजुली फरमाइशें श्रोताओं की। ये संदेश है विशाल मिश्रा बंधवा बाजार माधोपुर इमलिया जौनपुर से, शाहकुटी मुगलसराय।

शाहकुटी मुगलसराय से सोनू जायसवाल, मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगलसराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल, खानपुर चुनार मिर्जापुर से अक्षय राजभर और आशु राजभर। संदेश है ग्राम पिपरलोट सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का। ग्राम चकफुटही असनाव बाजार भदोई से गिरधारी लाल यादव। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा रिमझिम गुप्ता का व्हाट्सएप संदेश। कुरमा जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ से दिलदार मिरी, ज्योति जानवी और दीक्षांत। ग्राम बहुआरा पोस्ट दिलदार नगर गाजीपुर से अक्लूराम केदार राम और दीनानाथ सिंह। ये संदेश आया भीमपुर भदोई से महेंद्र कुमार, सरिता, आशीष, सतीश, पूजा, नीतू, सानवी, रत्तू, प्रद्युम्न, नंदलाल और लालू का। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। छत्तीसगढ़ रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, मोहम्मद हसनैन रजा, गौसिया फातिमा। राम सकल चौधरी चोचकपुर बाजार गाजीपुर से आपका व्हाट्सएप फरमाइशी संदेश। शिवपुर बागान हावड़ा से अब्बास अंसारी, रजिया खातून अंसारी, फरीदा खातून अंसारी और हयात मोइन अंसारी। ये संदेश आया है कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़ का।

दुल्हा गंगा पार के इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवाएंगे फिल्म बलम परदेसिया से। बहुत सारे व्हाट्सएप संदेश कंप्यूटर स्क्रीन पर, ये संदेश आया पोफाली जिला यवतमाल से, जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार सिंगणकर और अर्पिता। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, सकीना हसीना दिलशाद और वसीम फातिमा। संबलपुर कांकेर से फागूराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। दिलदार नगर से ये संदेश है श्री किसुन सिंह कुशवाहा और छविनाथ शर्मा का। सुमंत कुमार प्रजापति हथौज बलिया उत्तर प्रदेश से, ये फरमाइश आई अस्तुपुरा मऊ से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद। अडार नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी भूपेश और दीपेश वर्मा। गंगापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, अमित कुमार, स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार। ये संदेश आया ग्राम पोस्ट गुरैनी गाजीपुर से, उमेश, रमेश, मुकेश, सोनी, सरिता और सपना का। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे। गोपालपुर जौनपुर रमईपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

गंगापुर वाराणसी से शंकर प्रसाद, आदर्श कुमार, अमित कुमार, स्नेहा कुमारी, श्वेता कुमारी और रुद्र कुमार। ये संदेश आया ग्राम पोस्ट गुरैनी गाजीपुर से उमेश, रमेश, मुकेश, सोनी, सरिता और सपना का। चोचकपुर गाजीपुर से भास्कर दुबे। गोपालपुर जौनपुर रमईपुर से अवधेश तिवारी, प्रियंका तिवारी, शिवांगी तिवारी और इनके परिवार के सभी सदस्य।

आशा भोसले की आवाज़ में आप सुन रहे थे बलम परदेसिया फिल्म का गीत। और अब कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पिया के गांव फिल्म का गीत। फरमाइशी संदेश मोहल्ला फतेहगढ़ लुधियाना से विनोदपुरी, वीपी रंजू अशोकपुरी, सुशीलपुरी, बीकेपुरी, कैलाशपुरी, नीलम रमा पलीपुरी, सुनील पाठक और विनोदपुरी। ये संदेश आया है कोटवा कपिलधारा सराय मोहाना वाराणसी से रतिनाथ त्रिपाठी, राखी आर्या इंद्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति निर्मला त्रिपाठी। और अगला संदेश गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य, परमानंद आर्य, राजा बाजार बिहिया आरा से सुरेश केशरी, पूनम प्रतीक केशरी। दिनारा रोहतास से प्रभात कुमार, सौरव कुमार, हर्षित कुमार और वैभव। ये संदेश आया है आर अश्विन शानू, शोभनाथ अवस्थी और इनके दोस्तों का शिवराजपुर चुनार मिर्जापुर से। ग्राम बाघी नंदगंज गाजीपुर से अच्छे लाल बिंद और ये संदेश है भोला यादव का धानापुर चंदौली से। धर्मेश मौर्य अंचला मौर्य हिसार हरियाणा से आपका संदेश और ये संदेश आया खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज आर्यन, बीबी आरूही, ऐशिका, अंजलि, श्वेता वर्मा का।

गोपालपुर से संदेश एके तिवारी, शिरीष तिवारी और जयप्रकाश का, और ये संदेश आया है शाहकोटी मुगल सराय से सोनू और मंजू जायसवाल, हनुमानपुर मुगल सराय से डब्लू जायसवाल, माया जायसवाल, सोनारी जमशेदपुर से कृष्णा जायसवाल, पूनम जायसवाल, रामनगर कदमा जमशेदपुर से विनोद जायसवाल और पिंकी जायसवाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। मीडियम वेव के 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप, डीटीएच डीआरएम 1233 किलोहर्ट्ज़ और वेव्स ओटीटी पर आकाशवाणी का ये वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बज चुके हैं। संपन्न होती है आज की ये सभा। हमारी सायंकालीन सभा आरंभ होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

1233 किलो हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं, आरंभ होती है हमारी आज की शाम की सभा। सभा के आरंभ में आइए सुने फिल्म संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ करते हैं ब्रह्मास्त्र फिल्म के इस गीत से, जिसे आवाज दी है अरिजीत सिंह ने। शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य का है और संगीत निर्देशन प्रीतम का।

केसरिया फिल्म से ये गीत आपने सुना, जिसे लिखा था अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत निर्देशन दिया था प्रीतम ने, आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। और कार्यक्रम का अगला गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं चमेली फिल्म से, सुनिधि

चौहान की आवाज में। इरशाद कामिल के बोलों को सुरों में पिरोया है संदेश शांडिल्य ने।

चमेली फिल्म से ये गीत आपने सुनिधि चौहान की आवाज में सुना। ये कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। अफलातून फिल्म से आवाज हरिहरन और चित्रा की है। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार दिलीप सेन, समीर सेन।

ने सुना ए हरिहरन और चित्रा की आवाज़ में। इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है युववाणी कार्यक्रम।

0: शाम की बेला बड़ी सुहानी लगती जैसे कोई कहानी। धीरे धीरे दिन ढल जाता, मन को सुखद एहसास दिलाता।
1: बिल्कुल, एहसास तो दिलाता है दोस्तों। दिन जब ढलता है तो सुबह से शाम तक की जो हमारी थकान है या सुबह से शाम तक का हमारा कोई सुखद एहसास है, वो पूरे दिन में एक बार ज़रूर कौंध जाता है। और समय शाम का हो रहा है और कुछ हमारे दोस्त जो है वो दफ्तर से बैग पैक कर रहे होंगे कि अब घर चलना है। और घर में बैठे हमारे दोस्त शाम की चाय और नाश्ते की तैयारी कर रहे होंगे। और इसी तैयारी के बीच आ गई है आपकी युवावाणी। तो आप सभी का स्वागत करते हैं आपकी ये दो रेडियो साथी यानी कि मैं शिवानी
0: और मैं दिव्या,
1: आपके पसंदीदा कार्यक्रम युवावाणी में। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार।

0: पापा ये सब?
1: हाँ, जो चीजें सालों से बेवजह पड़ी हो उन्हें हटा देना चाहिए।
0: ये भी दादाजी की पुरानी पासबुक और FD।
2: अरे ये कैसे रह गया?
0: पैसे गए?
2: नहीं नहीं नहीं, उपाय है उपाय है।
3: बैंक खाते को संचालित करते रहना चाहिए वरना खाता इनऑपरेटिव हो जाता है।
2: ऐसे में बैंक से संपर्क करें, खाता सक्रिय करवाएं और आपकी रकम जो है उसे ब्याज समेत क्लेम करें।
4: दादू ये
5: RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सही कह रहा है।
7: आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
8: सुनो ना।
9: हाँ?
8: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
9: तो रोका किसने है? हाँ?
8: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
9: मुझसे।
8: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
9: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
8: पर उससे मेरा क्या फायदा?
9: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
8: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
9: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो
10: 0542227658।
8: ओ
7: 0542227658।
8: लो अभी फोन लगाता हूँ
7: 0542227658।
11: दिव्या, बातों का सिलसिला शुरू किया जाए?
12: बिल्कुल
11: किया जाएगा, लेकिन एक बात ये बताओ कि तुम अपने बचपन में पेरेंट्स के साथ मेले में गई हो या नहीं?
12: बिल्कुल।
11: अच्छा, ये पूछने वाली बात नहीं है क्योंकि हर एक बच्चा जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ जो है मेले में जाता ही।
12: अरे
11: है।
12: मेला देखते ही एक अंदर से खुशी जागती है कि नहीं मेले में जाना है हमको भी।
11: अच्छा, क्यों ये खुशी होती है मेले में जाने की?
12: इतने तरह तरह के खाने पीने के आइटम्स मिलते हैं, झूला मिलता है झूलने को।
11: हाँ बात है, क्यों गेम्स वहाँ खेलने को मिलते हैं। और पता है इस वक्त ना जब मेरे घर में मेरा भांजा है उसके साथ मेले में जाती हूँ ना, तो बचपन की जो यादें हैं वो ताज़ा हो जाती है कि कभी हम भी अपने पेरेंट्स के साथ ऐसे बचपन में पापा के कंधे पे बैठकर जो है मेला घुमा करते थे।
12: अगर कोई चीज़ लगी होती थी, अगर या कोई एक्ट चल रहा हो, कोई नाटक चल रहा हो, तो इतनी भीड़ वहाँ जमा होती थी और पापा हम लोग को अपने कंधे पे उठाकर या गोद में उठा करके ऊंचाई से दिखाने की कोशिश करते थे। हम लोग इतने छोटे छोटे थे, दिखता ही नहीं था।
11: बिल्कुल। और तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मेले जो लगते हैं ना उनके पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है हमारी आध्यात्मिक चीज जुड़ी होती है। किसी भगवान की जो है कि वहाँ पे पूजा हो रही है, उस उपलक्ष में उनका वार्षिक श्रृंगार है या कुछ है, तो आज ये मेला लगा है चलो एक हफ्ते के लिए घूम लेते हैं। तो तुम्हें पता है कि ऐसा ही एक मेला जो है ना वो कश्मीर में लगता है। क्या इस मेले के बारे में आपको पता है दोस्तों? नहीं पता है, कोई बात नहीं। आज हम ना आपको बताते हैं कि कश्मीर में जो है ना वो मेला खीर भवानी मेला लगता है, जो कश्मीर के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मेले में से एक है। और ये मेला ना माता रागन्या देवी, जिन्हें खीर भवानी माता के नाम से भी जाना जाता है, को समर्पित है। ये पवित्र मंदिर कश्मीर के

0: गादरबल जिले के तुलमुला गांव में स्थित है। हर वर्ष ज्येष्ठ मास की अष्टमी तिथि को इस मेले का आयोजन किया जाता है।
1: बिल्कुल, और इस अवसर पर हजारों श्रद्धालु विशेष रूप से कश्मीरी पंडित माता के दर्शन करने के लिए यहाँ आते हैं, और ये मेला श्रद्धा, भक्ति और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक माना जाता है। खीर भवानी मंदिर एक सुंदर झरने के बीच बना हुआ है। मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े चिनार के पेड़ हैं जो उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं।
0: वैसे दोस्तों, इस मेले के बारे में मैंने भी सुना था, लेकिन आज जब ये दिन वहां मनाया जा रहा है तो हमने सोचा कि क्यों नहीं इस मेले के बारे में आपको भी बताया जाए। और इस मंदिर की सबसे विशेष बात, यहाँ का पवित्र कुंड है। दोस्तों, यहाँ मान्यता है कि इस कुंड का पानी समय समय पर अपना रंग बदलता है। लोग इसे शुभ और अशुभ संकेतों से जोड़कर देखते हैं। श्रद्धालु माता को खीर, दूध, फल और अन्य बहुत सारी पूजा सामग्री अर्पित करते हैं। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं तो भगवान को अर्पित करते हैं, तो इसी कारण ना इस मंदिर का नाम खीर भवानी पड़ा।
1: इस मेले का धार्मिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। माना जाता है कि माता रागन्या देवी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। मेले के दिन विशेष पूजा, हवन और भजन कीर्तन का आयोजन भी किया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन मंदिर परिसर में पूजा अर्चना करते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।
0: और दोस्तों, कई लोग अपने परिवार के साथ यहाँ आकर धार्मिक और आध्यात्मिक जो वहाँ का वातावरण है उसका आनंद भी लेते हैं। मेला खीर भवानी केवल धार्मिक आयोजन ही नहीं है दोस्तों, बल्कि यह कश्मीर की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं को भी दर्शाता है। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है। वहां पर
1: लोग एक दूसरे से मिलते हैं, अपनी परंपराओं को याद करते हैं और सामाजिक सद्भाव का संदेश देते हैं। ये मेला कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये उन्हें अपनी जड़ों और सांस्कृतिक विरासत से जोड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: सरकार और स्थानीय प्रशासन मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था भी करते हैं।
0: दोस्तों, मंदिर परिसर को, क्योंकि ये खीर भवानी माता का मेला है तो जाहिर सी बात है मंदिर को, मंदिर परिसर जो है उसको खूब सजाया जाता है। आने वाले भक्तों के लिए भोजन, पानी तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। दोस्तों, यहाँ देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोग इस मेले में भाग लेकर कश्मीर की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता को करीब से देखते हैं।
1: और इसी प्रकार मेला खीर भवानी कश्मीर का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है। ये लोगों को आस्था, प्रेम, भाईचारे और एकता का संदेश देता है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस मेले में शामिल होकर माता खीर भवानी का आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। ये मेला कश्मीर की पहचान और उसकी गौरवशाली परंपराओं का एक सुंदर उदाहरण है।
0: और दिव्य, पता है ऐसे जब आयोजन होते हैं ना, तो वहाँ की हर सांस्कृतिक जो है, या कह लो या परंपरा कह लो, वहाँ लोकगीत या ऐसे कुछ गीत होते हैं। अब यहाँ पे तो हम वहाँ के गीत नहीं गा सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन अपने दोस्तों को एक मनोरंजन भरा गीत, प्यारा सा गीत तो सुना ही सकते हैं। तो बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा दोस्तों, लेकिन फिलहाल मनोरंजन करते हैं आपका और अपना, और सुनते हैं ये गीत।

0: दोस्तों, आज के समय में ना स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ रहने के लिए हम शायद ऐसे ही गाने सुनकर अपने आप को फिट रखते हैं, गानों पे डांस करते हैं, तो जाहिर सी बात है फिट रहेंगे। तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास भी होता है, ऐसा कहा जाता है और हम मानते भी हैं। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और नियमित व्यायाम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, व्यायाम हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और हमें कई बीमारियों से बचाता है, ये हम सब जानते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि व्यायाम करें और स्वस्थ रहें।
1: और व्यायाम का मतलब है शरीर को सक्रिय रखने के लिए नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियां करना। इसमें दौड़ना, टहलना, योग करना, साइकिल चलाना, तैरना, खेल कूद में भाग लेना और दूसरी शारीरिक गतिविधियां शामिल होती हैं।
0: बिल्कुल
1: नियमित व्यायाम करने से शरीर की जो मांसपेशियां होती हैं वो मजबूत होती हैं और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इससे जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी अच्छा होता है और उससे हमारे शरीर के जो सभी ऑर्गन्स हैं वो भी सही ढंग से काम करते हैं।
0: क्योंकि आजकल लोगों की जीवन शैली जो है ना दोस्तों, काफी बदल गई है। हम में से कई लोग, अधिकतर लोग, कई लोग नहीं कहूंगी, अधिकतर लोग घंटों तक बैठकर पढ़ाई करते हैं, या तो कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं। इससे शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं और वहीं मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग तथा अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। ऐसे में रोज कुछ समय निकालकर हमें व्यायाम के लिए निकालना चाहिए, जो कि बहुत आवश्यक है। सुबह की ताजी हवा में टहलना या हल्का व्यायाम करना शरीर को मन दोनों के लिए लाभदायक होता है।
1: बिल्कुल, और व्यायाम केवल शरीर को ही नहीं बल्कि जो हमारा मानसिक स्वास्थ्य है उसको भी बेहतर बनाता है। नियमित व्यायाम करने से जो हमारी तनाव होती है, चिंता है, थकान है, सब कम हो जाती है और इससे मन भी खुश रहता है और जो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ता है।
0: बिल्कुल
1: जो लोग नियमित रूप

0: से व्यायाम करते हैं वो ज्यादा सक्रिय और उत्साहित महसूस करते हैं। और खासकर विद्यार्थियों के लिए तो व्यायाम बहुत लाभदायक होता है, क्योंकि इससे उनकी जो उनका जो कंसंट्रेशन लेवल होता है, उनकी जो याद रखने की जो क्षमता होती है वो बढ़ती है।
1: एकदम सही कहा दिव्या तुमने। और वैसे भी दोस्तों, योग भी तो व्यायाम का एक महत्वपूर्ण रूप है। भारत में योग की परंपरा बहुत पुरानी है। योग करने से शरीर जो है हमारा वो लचीला बनता है, मन शांत रहता है और कई रोगों से भी बचाता है। आज दुनिया भर में लोग योग के महत्व को समझ रहे हैं और इसे अपने जीवन का हिस्सा भी बना रहे हैं।
0: और व्यायाम करते समय कुछ बातों का भी ध्यान रखना जरूरी है दोस्तों। हमेशा अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करना चाहिए। शुरुआत में जो हल्के हल्का व्यायाम है उसको करें और धीरे धीरे समय के साथ उसको बढ़ाएं। व्यायाम के साथ पर्याप्त पानी पीना और जो पौष्टिक भोजन है वो लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर किसी व्यक्ति को कोई स्वास्थ्य समस्या हो तो उसे डॉक्टर की सलाह लेकर ही व्यायाम करना चाहिए।
1: बिल्कुल दोस्तों, व्यायाम स्वस्थ जीवन की कुंजी है। यह हमें शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मजबूत बनाती है, जीवन को खुशहाल और एनर्जेटिक बनाती है। इसलिए हमें रोजाना कम से कम नहीं तो 30 मिनट व्यायाम करने की आदत डालनी ही चाहिए। यदि हम नियमित रूप से व्यायाम करेंगे तो हम स्वस्थ, फिट और रोग मुक्त जीवन जी सकेंगे। वास्तव में व्यायाम करें, स्वस्थ रहें एक ऐसा संदेश है जिसे हम हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाना चाहिए और
0: बिल्कुल
1: अपनाते भी हैं। अभी कल ही हमने जो है दिव्या योग दिवस मनाया था।
0: तो चलिए दोस्तों, जैसा कि आज सोमवार है और संडे की छुट्टी के बाद काम का पहला दिन है, और इस काम के दिन हम हमारे जैसे युवा दोस्तों को मौका देते हैं घर से निकलकर आकाशवाणी के स्टूडियो आने का और किसी भी विषय पर अपनी बात हमारे बीच रखने का वार्ता के माध्यम से।
1: क्योंकि दोस्तों कल योग दिवस हम सभी ने मनाया और हम में से बहुत से युवाओं का खुद को फिट रखने का ये पहला मोटिवेशन होगा। कुछ लोगों ने प्रण लिया होगा कि खुद को फिट रखने का, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार के वार्ता का विषय भी इसी से जुड़ा हो। तो हमारी आज की जो वार्ताकार हैं ऋचा रमन, वो फिटनेस, योग और युवा पीढ़ी का बदलता जो लाइफस्टाइल है इस पर अपनी बातें हमारे बीच रख रही हैं। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या कह रही हैं।
2: नमस्कार, मैं हूँ रचा रमन और आज के इस युवाणी के वार्ता में हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधे आपसे, मुझसे और हमारे आने वाले कल से जुड़ा है, फिटनेस, योग और युवा पीढ़ी का बदलता लाइफस्टाइल। आज का युग अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति, तीव्र गतिशीलता और असीम अवसरों का युग है। इस चौतरफा विकास की धुरी हमारी युवा पीढ़ी है, जो अदम्य ऊर्जा, नवोन्मेषी विचारों और महत्वाकांक्षा से पूरी तरह लबरेज है। लेकिन इस चमकते चमक दमक से भरे और निरंतर दौड़ते परिदृश्य के पीछे एक मूक, अदृश्य और गहरा संकट भी धीरे धीरे आकार ले रहा है, जिसे हम बदलती जीवन शैली या लाइफस्टाइल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। यह संकट बाहर से जितना शांत दिखता है, भीतर से उतना ही विनाशकारी साबित हो रहा है। आज के इस दौर में, जिसे हम डिजिटल युग कहते हैं, हमारी विशाल दुनिया सिमटकर हमारे हाथों से, यानी हमारे स्मार्टफोन की छोटी सी स्क्रीन में समा गई है। इस आभासी दुनिया के चक्कर में हम वास्तविक दुनिया, अपने के साथ और प्रकृति से कोसों दूर होते जा रहे हैं। देर रात तक नीली रोशनी उत्सर्जित करने वाले स्क्रीन पर अनावश्यक रूप से जगना, सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी नींद भरी आंखों से सोशल मीडिया के नोटिफिकेशंस चेक करना और इस अंधी भागदौड़ भरी जिंदगी में समय बचाने के नाम पर अत्यधिक प्रसंस्कृत भोजन पर निर्भर हो जाना, ये आज की युवा पीढ़ी की मुख्य पहचान बनती जा रही है। लेकिन यहाँ एक विचारणीय सवाल यह खड़ा होता है कि क्या यह तथाकथित स्मार्ट लाइफस्टाइल वास्तव में हमारे जीवन को बेहतर बना रही है या यह हमें खोखला कर रही है। वैसे तो आज की इस अति तेज रफ्तार जिंदगी में स्वास्थ्य और शारीरिक सुदृढ़ता का महत्व तो पहले की तुलना में कहीं अधिक बढ़ गया है। विज्ञान, तकनीक, सोशल मीडिया और अत्याधुनिक सुविधाओं ने जहां एक ओर हमारे भौतिक जीवन को बेहद आसान और सुलभ बनाया है, वहीं दूसरी ओर इसने हमारी शारीरिक गतिविधियों को लगभग शून्य कर दिया है, जिससे मानसिक तनाव, अवसाद और एंग्जाइटी जैसी गंभीर समस्याओं का बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे विषम और चुनौतीपूर्ण समय में भारत की प्राचीन योग संस्कृति ने न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने का एक साधन मात्र है, बल्कि यह हमारे विचलित मन को संतुलित कर

करने और आत्मिक शांति प्राप्त करने का एकमात्र राजमार्ग है। आज यह जब युवा पीढ़ी की पूरी जीवन शैली बदल रही है, तो इस संक्रमण काल में फिटनेस और योग की भूमिका महज एक विकल्प नहीं बल्कि जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बन गई है। योग हमें स्क्रीन की आभासी दुनिया में से बाहर निकालकर आत्म अनुशासन, सजगता और संपूर्ण कल्याण की ओर ले जाता है। बदलता लाइफस्टाइल एक गंभीर चुनौती। पिछले दशकों में लाइफस्टाइल को लेकर जो बदलाव आए हैं वे चौंकाने वाले हैं, जैसे शारीरिक निष्क्रियता। पहले बच्चे और युवा अपना अधिकांश खाली समय बाहर खेल कूद में बिताते थे। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, बैडमिंटन और साइकिल चलाना उनकी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा था। इन गतिविधियों से शरीर स्वस्थ रहता था, मांसपेशियां मजबूत होती थीं और मोटापे जैसी समस्या कम होती थी। लेकिन आज तकनीक के

थीं और मोटापे जैसी समस्या कम होती थी। लेकिन आज तकनीक के बढ़ते प्रभाव के कारण अधिकांश युवा घंटों तक मोबाइल फोन, लैपटॉप, वीडियो गेम और सोशल मीडिया पर समय बिताते हैं। उदाहरण के लिए, एक छात्र स्कूल या कॉलेज से आने के बाद मैदान में खेलने जाने के बजाय ऑनलाइन गेम खेलने या इंस्टाग्राम और यूट्यूब देखने में कई घंटे बिताता है। इससे शारीरिक गतिविधि कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मोटापा, कमर दर्द, आंखों की समस्या और मधुमेह जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। खान पान की आदतें। आधुनिक जीवन शैली में युवाओं का झुकाव फास्ट फूड और जंक फूड की ओर बढ़ता जा रहा है। पहले घरों में दाल, रोटी, हरी सब्जियां, दूध, दही और मौसमी फल जैसे पौष्टिक भोजन का सेवन अधिक होता था। ये खाद्य पदार्थ शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते थे। वर्तमान समय में पिज्जा, बर्गर, इंस्टेंट नूडल्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स और पैकेट बंद खाद्य पदार्थ युवाओं की पहली पसंद बन गए हैं। उदाहरण के लिए, परीक्षा की तैयारी कर रहा छात्र भोजन बनाने या खाने के बजाय 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स खा लेता है। इसी प्रकार दोस्तों के साथ मिलने पर पौष्टिक भोजन के साथ पर फास्ट फूड का सेवन अधिक किया जाता है। इन खाद्य पदार्थों में अत्यधिक नमक, चीनी और वसा होती है, जो मोटापा, हृदय रोग और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। मानसिक तनाव। आज का युवा शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक चुनौतियों का भी सामना कर रहा है। शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, नौकरी और करियर की अनिश्चितता के कारण युवाओं पर लगातार दबाव बनता रहा है। इसके साथ ही सोशल मीडिया ने इस समस्या को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, जब कोई युवा इंस्टाग्राम पर अपने मित्रों की महंगी यात्राओं, कई कारों या सफलता की तस्वीरें देखता है, तो वह अपनी तुलना उनसे करने लगता है। इससे उसके मन में हीन भावना और असंतोष पैदा हो सकता है। इसी प्रकार परीक्षा में अच्छे अंक लाने, सरकारी नौकरी प्राप्त करने या समाज में सफल दिखने का दबाव भी तनाव का कारण बनता है। कई युवा अपनी वास्तविक समस्याओं को साझा नहीं करते और अकेलेपन का अनुभव करने लगते हैं। परिणाम स्वरूप चिंता, अवसाद, आत्मविश्वास की कमी और नींद से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा एक छात्र लगातार असफलताओं के कारण मानसिक तनाव का शिकार हो सकता है और उसका आत्मविश्वास कम हो सकता है। इस प्रकार आधुनिक जीवन शैली ने युवाओं को अनेक सुविधाएं तो प्रदान की हैं, लेकिन इसके साथ शारीरिक निष्क्रियता, अस्वस्थ खानपान और मानसिक तनाव जैसी गंभीर समस्याएं भी बढ़ाई हैं। इन चुनौतियों से बचने के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, सीमित स्क्रीन टाइम और सकारात्मक सामाजिक संबंधों को अपनाना आवश्यक है। फिटनेस केवल बॉडी बनाना नहीं बल्कि सर्वाइवल है। जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो अक्सर युवाओं के मन में जिम, भारी वजन उठाना या मस्कुलर बॉडी की तस्वीर आती है, लेकिन फिटनेस का मतलब इससे कहीं व्यापक है। फिटनेस का अर्थ है आपके शरीर की वह क्षमता जिससे आप बिना थके अपने दैनिक कार्यों को ऊर्जा के साथ पूरा कर सकें। फिटनेस के लिए आपको घंटों जिम में बिताने की जरूरत नहीं है। शुरुआत आज से ही करें। आपको केवल प्रतिदिन 30 मिनट सैर करना है, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है, पर्याप्त पानी पीना और गहरी नींद लेना है। ये छोटी छोटी आदतें आपके मेटाबॉलिज्म को सुधारती हैं और आपको बीमारियों से दूर रखती हैं। याद रखिए, एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अब बात करते हैं योग की। योग का अर्थ है जुड़ना, जैसे आत्मा का परमात्मा से और मन का शरीर से जुड़ाव। योग भारत की प्राचीनतम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। इसका इतिहास लगभग 5000 वर्ष या उससे भी अधिक पुराना माना जाता है। आज योग केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि विश्व भर में स्वास्थ्य, मानसिक शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए अपनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने 11 दिसंबर 2014 को 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। यह प्रस्ताव भारत द्वारा रखा गया था और 175 देशों ने इसका समर्थन किया। योग भारत की वह अमूल्य विरासत है जिसे आज पूरी दुनिया अपना रही है। अक्सर युवा सोचते हैं कि योग केवल बुजुर्गों या सन्यासियों के लिए होता है, लेकिन सच यह है कि योग आज की चुनौतियों का सबसे सटीक समाधान है। योग को अपनी दिनचर्या में लाने से एकाग्रता, शरीर में लचीलापन और मानसिक शांति मिलती है। योग में अगर आप प्राणायाम और ध्यान कर रहे हैं तो यह आपकी फोकस करने की शक्ति बढ़ाते हैं, जो पढ़ाई और करियर के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही घंटों लैपटॉप और फोन पर झुककर बैठने से होने वाले टेक्स्ट नेक और रीढ़ की समस्याओं का समाधान योग के आसनों जैसे भुजंगासन, ताड़ासन में छिपा है।

0: योग केवल शरीर को मोड़ना नहीं, बल्कि यह अपने मन को नियंत्रित करना सिखाता है। यह आपको भीतर से शांत और मजबूत बनाता है। तो आइए निष्कर्ष पे आते हैं। आज के इस आधुनिक युग में हमारी युवा पीढ़ी ही इस राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य की असली शिल्पकार है। आपके पास असीमित ऊर्जा है, ऊंचे सपने हैं और उन सपनों को हकीकत के धरातल पर उतारने का अटूट जुनून है। लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि इन महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए एक स्वस्थ शरीर और संतुलित व शांत मन का होना अनिवार्य है। आज के इस बेहद तेज रफ्तार और बदलती जीवन शैली की दिशा को हम रातों रात पूरी तरह बदल तो नहीं सकते, लेकिन अपनी समझदारी और आत्मनियंत्रण से इसे प्रबंधित जरूर कर सकते हैं। इसके लिए हमें दैनिक जीवन में कुछ छोटे परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण बदलाव करने होंगे, जैसे आभासी नियंत्रण से मुक्ति, स्क्रीन टाइम को धीरे धीरे कम करें और डिजिटल दुनिया के बजाय वास्तविक रिश्तों और प्रकृति को समय दें, रसायनों और प्रसंस्कृत जंक फूड के मुंह से बाहर निकलकर घर के बने शुद्ध और सात्विक आहार को प्राथमिकता दें। योग से दिन का आगाज, अपने दिन की शुरुआत मात्र 15 से 20 मिनट के योग, प्राणायाम और शारीरिक व्यायाम से करें, जो आपके शरीर को ऊर्जा और मन को स्थिरता देगा। याद रखिए, शारीरिक और मानसिक सुदृढ़ता कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि यह जीवन भर चलने वाला एक अत्यंत सुखद सफर है। आज आत्म सुधार के लिए लिया गया आपका एक छोटा सा सकारात्मक संकल्प आने वाले कल में आपको एक अधिक जागरूक, ऊर्जावान और सफल इंसान बनाएगा। आकाशवाणी के इस मंच के माध्यम से बस यही अंतिम संदेश है। अंततः यह कहा जा सकता है कि फिटनेस और योग को अपनाकर हमारी युवा पीढ़ी ने न केवल अपने जीवन शैली को सुधारा है, बल्कि एक नए स्वस्थ और जागरूक भारत की नींव भी रखी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, और आज का युवा इसी मंत्र को चरितार्थ कर रहा है। जब देश का युवा शारीरिक रूप से सशक्त, मानसिक रूप से शांत और आध्यात्मिक रूप से जागृत होगा, तभी हम एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के सपने को साकार कर सकेंगे। आइए इस वैचारिक यात्रा को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
1: तो ऋचा रमन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। फिटनेस, योग और युवा पीढ़ी का बदलता लाइफस्टाइल, ये इस पर अपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ऋचा रमन की ये बात जो है, वार्ता जो है, पसंद आई होगी। तो अब जब आपसे बातें जानकारी भरी और ज्ञान की हो ही रही हैं, तो क्यों ना शब्दों के ज्ञान पर भी बातें कर लेते हैं।
1: हाँ भाई, क्योंकि हम तो आपको वो सारी बातें बताना और ज्ञान देना जरूरी समझते हैं जो आपके लिए फायदेमंद हो।
2: तो चलिए, शब्दों को जानने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए हमारा हिंदी का शब्द आपको बताते हैं, जो है समन्वयक, जिसे इंग्लिश में हम कोऑर्डिनेटर कहते हैं। समन्वयक शब्द को ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि वह व्यक्ति या संस्था जो किसी परियोजना, आयोजन या संगठन के विभिन्न कार्यों और लोगों के बीच तालमेल बैठाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सभी लोग मिलजुल कर कुशलतापूर्वक काम करें और काम बिना किसी बाधा के पूरा हो। अब अगर समन्वयक शब्द को वाक्य में प्रयोग करने के बारे में आप सोच रहे हैं, तो कुछ यूं कर सकते हैं कि अस्पताल में मरीजों और चिकित्सा स्टाफ के बीच समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की गई।
1: और हिंदी शब्द के बाद अब बारी है आज के इंग्लिश वर्ड की, जो है विंडिक्टिव, जिसकी स्पेलिंग होती है VINDICTIVE, विंडिक्टिव, जिसका अर्थ होता है प्रतिशोधी, बदला लेने वाला या फिर ईर्ष्यालु। सम सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड कुड बी रिवेंजफुल, स्पाइटफुल, मैलिशियस एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, हिज रिएक्शन वॉज प्योरली विंडिक्टिव, यानी उसकी प्रतिक्रिया पूरी तरह से प्रतिशोधी यानी बदला लेने वाली थी।
2: वैसे दोस्तों, विंडिक्टिव शब्द यानी कि प्रतिरोध, ऐसे शब्द का हम यहाँ प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन आपकी युववाणी कार्यक्रम के बीच हम समन्वयक वाला काम बहुत अच्छे से करते हैं, तो बताइएगा कि हम आपके अच्छे कोऑर्डिनेटर हैं या नहीं।
1: वैसे अब आपको कोऑर्डिनेट करते करते अब बारी आ गई।

0: गई है इतिहास की, तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं इतिहास में आज के दिन के बारे में।
1: दोस्तों, आपको क्या ये जानकारी है कि मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के दौरान 22 जून 2025 को भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था। इस विशेष अभियान के तीसरे चरण में ईरान के तेहरान से लगभग 290 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश यानी कि नई दिल्ली लाया गया था।
0: और साथ ही साथ 22 जून 2024 को ओडिशा के समुद्री तट पर भारतीय प्राणी सर्वेक्षण यानी ZSI के वैज्ञानिकों ने स्नेक ईल की एक नई प्रजाति खोजी थी।
1: इसी के साथ 22 जून 2024 को ही भारतीय नागरिकों को प्रवासी भारतीय OCI के लिए आव्रजन इमिग्रेशन प्रक्रिया को तेज करने हेतु
0: फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टेस्ट ट्रेवलर प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया था और वर्ष 2006 में अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। साथ ही वर्ष 2007 में सुनीता विलियम्स अपनी टीम के साथ धरती पर लौटी थी।
1: और दोस्तों, अगर ढूंढा जाए ना तो अभी भी इतिहास के पन्नों में जानने के लिए बहुत कुछ है। तो पढ़ने, समझने और सीखने और किताबों को उठाकर पढ़ने का प्रयास जीवन में हमेशा करते रहिएगा। बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे आप रोज प्रयास करते हैं हमारे सवालों का सही जवाब देने का।
0: हाँ, और आपका ये जो प्रयास होता है हमें बहुत अच्छा लगता है, तभी तो हम अपने इस सवाल पूछने के प्रयास को बंद नहीं करते बल्कि रोज नए सवाल के साथ हाजिर होते हैं। तो आज भी हम हाजिर हैं आपके लिए नया सवाल लेकर, लेकिन उससे पहले कल के सवाल का सही जवाब देने वाले विजेताओं के बारे में जान लेते हैं।
1: तो दोस्तों, हमने आपसे कल सवाल किया था कि सूर्य नमस्कार में कुल कितने आसन होते हैं। जो लोग सूर्य नमस्कार करते होंगे उन्हें पता होगा, और इसका सही जवाब है 12 आसन। और जिन्होंने ये सही जवाब दिया है उनके नाम भी हैं।
0: दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा पीपलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, वंश भटनागर और उत्तर प्रदेश आजमगढ़ ग्राम सेमरौल से हैं रवि मौर्य, प्रवीण चौहान खरगोन मध्य प्रदेश से हैं, ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधे श्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू कुसुमबाई बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से, ग्राम खैगांव तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, वेदिका वंश, निकेश धर्मेंद्र, मेघा नंदिनी, हर्षिता और ममताबाई वर्मा, रिंग रोड नर्मदा नगर मध्य प्रदेश से हैं सूरज वर्मा, नीरज शिवम, धीरज चिंता वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा, नेपानगर मध्य प्रदेश से प्रभु दयाल शिवदे, शिवा बसंती बाई और गणेश शिवदे, संगीत की नगरी खंडवा से हैं श्यामा बाई रायकवार। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत बधाई।
1: हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और चलिए इसी के साथ सुनिए ध्यान से आज का सवाल। तो हमारा आज का आपसे सवाल है कि
0: विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? हमारा सवाल एक बार फिर से सुनिए। विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो फटाफट से उठाइए फोन और जाइए हमारे इंस्टा आईडी youth_AIR वाराणसी, या फिर आप अपना जवाब हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है youth_AIR_VNS@gmail.com पर। तो आप जब तक अपना जवाब दे रहे हैं तब तक आइए सुनते हैं ये गीत।

0: चलिए दोस्तों, जानकारी और मनोरंजन के बीच अब बात कर लेते हैं करियर की, जिसमें आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रोजगार की सूचना SSC एग्जाम की। तो दोस्तों, कर्मचारी चयन आयोग SSC ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर SSC संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है।
1: ये भर्ती 12,256 रिक्तियों के लिए आयोजित की जा रही है और इसकी प्रक्रिया 21 मई से ही शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
0: यानी कि दोस्तों, आज इस फॉर्म को भरने की अंतिम तिथि है और इसे भरने के लिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 1 अगस्त 2026 तक 32 वर्ष होनी चाहिए। आप इस फॉर्म के बारे में अधिक जानकारी इसके ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर ले सकते हैं। और दोस्तों, ये जानकारी हम इसलिए भी दे रहे हैं क्योंकि आखिरी आज ये फॉर्म को भरने की आज अंतिम तिथि है और हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसी जानकारी आपसे छूट ना पाए। तो इसलिए इस फॉर्म के को अगर आपको भरना है तो भरिएगा, आज इसकी अंतिम तिथि है।
1: और दोस्तों, आज के समय में जैसा कि जानते हैं कि आर्थिक समझ होना बहुत जरूरी है। आर्थिक समझ का मतलब होता है पैसों का सही उपयोग करना, बचत करना और भविष्य की जरूरतों के लिए योजना बनाना। जिस व्यक्ति को पैसों का सही प्रबंधन करना आता है, वो अपने जीवन को अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बना सकता है। इसीलिए हर व्यक्ति को छोटी उम्र से ही थोड़ा थोड़े मामलों में आर्थिक जानकारी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल दोस्तों, आर्थिक समझ केवल बड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है। यदि विद्यार्थी शुरू से ही पैसे का महत्व समझेंगे तो वे भविष्य में जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। उन्हें अपनी जेब खर्च का सही उपयोग करना और बचत करना सीखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि आर्थिक समझ अपनी बढ़ाइए और आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनिए। यह हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना सिखाती है। इसी संदेश के साथ आज का कार्यक्रम आप सुन रहे थे शिवानी
1: और दिव्या के साथ। अब हमें दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।

0: अभी युवा साथी सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे भोजपुरी में समाचार, जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले।
1: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ ही हम सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपया से बेसी लागत का कई गो विकास परियोजना का लोकार्पण और नई दहले। ये मौका पर वहां के काली की डबल इंजन का सरकार कारीगरन और उद्यमियों के साथ एक कंधे से कंधा मिलाकर उनकर विकास और प्रोत्साहन बदे पुरहर प्रतिबद्धता के साथ कार कई रहा है। श्री योगी कहने कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एगो नया केंद्र बन के उभरल हो।
2: फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को पछाड़ दिया है।

0: दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। और यहाँ के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकीर्ति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूँ ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहाँ के उद्यमियों की परिश्रम का ये परिणाम है।
1: ये मौके पर मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों के चाबी और कई गो योजना के लाभार्थियों के प्रमाण पत्र दिहले और चेक को बटले। लखनऊ के अलीगंज इलाका में आज एगो दुकान के ऊपर चलत कोचिंग सेंटर में भयानक आग लग गई, जेकरा से ओजा अफरा तफरी मच गई। दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी लोग मौका पर पहुंच के बचाव के कार्य में लागल बा। दुर्घटना में घायल भयल लोगों के अस्पतालन में भर्ती करावल गई हो, ओजा उनकर इलाज चली रहा हो। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और स्थानीय प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ के टीम की ओर से चलावल जा रहा बचाव और राहत कार्य का जायजा ले बांटे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये दुर्घटना पर गहरा दुख जतौले हवे। वहां के एगो सोशल मीडिया पोस्ट में कहले हवे कि लखनऊ में आग लगी के दुर्घटना में भयल जनहानि बहुत दुखद बा, हमार संवेदना शोका कुल परिवार के साथ बा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एगो सोशल मीडिया पोस्ट में योगी कपाती साझा करत बरखा ऋतु के अहले पर लोगों से खास सतर्कता बरतले का अपील कैले हवे। एगो रिपोर्ट।
2: मुख्यमंत्री ने कहा है कि वर्षा ऋतु नव सृजन, संवर्धन और समृद्धि का आगमन है। वर्षा ऋतु के साथ चतुर्माध का यह समय हमें प्रकृति के साथ सह अस्तित्व, संयम, संवेदनशीलता और संतुलित जीवन का संदेश देता है। श्री योगी ने कहा कि वर्षा के समय आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी होती हैं, इसलिए उस समय अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें और पेड़ों के नीचे खड़े न हों। उन्होंने कहा कि कई बार अतिवृष्टि के कारण नदियों एवं जलाशयों का जल स्तर तेजी से बढ़ जाता है, अतः इस दौरान नदियों एवं जलाशयों में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें। श्री योगी ने एक पेड़ माह के नाम अभियान के तहत पेड़ लगाने, जल संचयन और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से प्रेमचंद गुप्ता।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का एगो लेख साझा कैले। ये लेख ने कानून व्यवस्था के मजबूत कैले, न्याय का प्रक्रिया के आसान बनौले और नागरिकन बदे सरकारी सेवा के ज्यादे सुलभ बनावे के सरकार के कोशिशन का उल्लेख कैल गैल हौ। कुख्यात अपराधी ललन सिंह के काल ही रतिये सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ मुठभेड़ में मार गिरावल, ऊपर 1,25,000 रुपया का इनाम रहल। बहराइच जिला का जरवल थाना क्षेत्र में आज भी नहीं एगो सड़क हादसा में दुगो भाई के सतही तीन लोग का मौती हो गई। हादसा मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होके सड़क के किनारे बनल पुलिया से टकरा गई, लेकिन आते भाई दुर्घटना का सूचना पाते पुलिस मौका पर पहुंचलस और सज्जो सबके कब्जा में लेके पोस्टमार्टम खातिर भेज दियालस। गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गो जिला में गरज चमक के साथ भयल हल्लुकाहे बरखा से लोगों के भीषण गर्मी से राहत मिलल हो। मौसम विभाग अगला 24 घंटा में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर के साथ ही कई गो जिला में गरज चमक के साथ बरखा का आगम जतौले। हालांकि मौसम विभाग के हिसाब से तापमान में कौनो बढ़न बदलाव का आगम नहीं हो। समाचार पूरा भइल, नमस्कार।

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। कार्यक्रम विवरण में हमारे केंद्र से आज और

कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में सुनिए। पहले सुनिए आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से थोड़ी देर बाद यानी 6:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। छह बजकर 30 मिनट पर कृषि जगत कार्यक्रम में किसान भाई सुनेंगे भैंस में स्थायी बांझपन की रोकथाम विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से राकेश यादव की बातचीत, साथ ही रीना देवी और साथियों का गाया लोक गीत भी सुनेंगे। रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम, जिसमें आज कलाकार होंगे तलत अजीज और पिनाज मसानी। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। रात्रि 10 बजे आपसे मिलिए कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर से आशुतोष की बातचीत, और रात्रि 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुनेंगे संतूर वादन, कलाकार होंगे पंडित भजन सोपोरी। ये थी संक्षिप्त जानकारी आज प्रसारित होने वाले शेष प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। आइए अब सुने कल प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। प्रातः 6:05 पर खेती की बातें कार्यक्रम में आप सुनेंगे मृदा में जीवांश का महत्व विषय पर जानकारी। 6:10 पर भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम आराधना। 6:30 पर विचार बिंदु और 6:35 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में पेट संबंधी रोग, कारण, लक्षण और आयुर्वेदिक उपचार विषय पर जानकारी। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर राजेश पांडे। और 6:40 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 7:31 पर आप सुनेंगे शहनाई वादन, जिसमें कलाकार होंगे उस्ताद अली अहमद हुसैन और साथी, और दिन 12:45 पर एकल तबला वादन, कलाकार होंगे रामजी मिश्रा। लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:50 पर और दिन 1:45 पर आप हेमंत कुमार श्रीवास्तव के गाये लोकगीत सुनेंगे, और दिन 12:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में कलाकार होंगी प्रियंका सहवाल। दिन 1:15 पर अग्नैया कार्यक्रम में बहने सुनेंगी बदलती जीवन शैली और रसायन चिकित्सा की आवश्यकता विषय पर डॉक्टर शिखा सिंह से की गई बातचीत, साथ ही साथ गीत संगीत का भी आनंद लेंगी। प्रातः 10:30 पर और दिन 11:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। सुबह 7 बजे आनंद उठाइएगा गुड मॉर्निंग बनारस कार्यक्रम का, और 8:45 पर मधुरिमा कार्यक्रम में मधुर गीतों का आनंद लीजिएगा। ये थी संक्षिप्त जानकारी आज और कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज़, और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

0: पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं निखिल कुमार।
1: अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप अपनी जीवन यात्रा और अब तक के अनुभवों के बारे में कुछ बताएं। आप अपने जीवन और कार्यों की इस यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं?
2: मैं रेलवे नौकरी करता था। उस टाइम में गार्ड का नौकरी में दो स्टेज है। एक स्टेज में गुड्स ट्रेन

0: वर्किंग करना पड़ता है। तो बूटस्ट्रैप बहुत रिस्पॉन्सिबल है, उसमें जिम्मेदारी ज्यादा है और एकाकी का काम है, अकेला ही रहता है, वो झड़ आदि तूफान जो भी है उसको सामना करना पड़ता है। और आधारी रात में कोई प्रॉब्लम आ जाएगा गाड़ी का तो भी देखभाल करने होता था।
1: अशोक जी, आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई और इसके पीछे आपकी प्रमुख प्रेरणा क्या रही? आपके जीवन में ऐसा कौन सा अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: प्रेरणा मिला काम करते प्रगति का साथ रहते हुए। अंधारी डिब्बा में जब अकेलापन था उस टाइम में चिंतन भावना और प्रगति में क्या देखा, बाहर जगत में क्या है क्या नहीं है, वो हम अंदर में ले लेता, माने बाहर दर्शन अंतर दर्शन में आ जाता था। उसका बाद जब हमारा मानी नौकरी खत्म हो जाता है, ड्यूटी शेष शेष टाइम में तो रेस्ट मिलता है, घर चला आता है, कभी रानी हूं में चला जाता है। उसका बाद जब घर फिकता वही जो भावना मेरा कल्पना जो देखा हम जो फेस किया वही चीज हम आके पेन पेपर में लिख, जो मेरा चिंतन क्या है, क्या हम बाहर जगत में टोबिक में देखा और क्या होना चाहिए। मेरा भी वैसा ही है, एक संसार में फूल खिलती है वो फूल भी झड़ जाता है और उसको कोई कीमत नहीं रहता है। जब तक फूल बगीचा में रहता है तब तक उसको कीमत है। मेरा आदमी का जीवन मनुष्य का जीवन भी ऐसा है, जब तक आपको काम रहेगा तब तक कीमत रहेगा और काम का अभाव में और कोई इसको कीमत नहीं है। तो एक तो जगह में कीमत है जहाँ आप ऐसा काम करना है जो काम समाज का हर आदमी को काम में आएगा, कुछ चेतना समाज चेतना के लिए हम सोचा, समाज जागरण के लिए आदमी के लिए हम सोचा, क्या हम देखा आदमी को क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये चीज एक अनुप्रेरणा हम प्रगति से मिला। उसका बाद मालगाड़ी का बाद जब पैसेंजर में प्रमोशन हुआ तो आदमी का साथ मेरा काम हुआ। आदमी जब जाता है काहे के लिए जाता है, कुछ काम करने के लिए रोजगार के लिए जाता है। दिन में रात में आदमी का साथ हम था और उससे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ है वही ज्ञान का हम किताब में लिखा है, जो क्या आदमी परिश्रम करता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कैसे होता है, अगेंस्ट द नेचर वी हैव टू परफॉर्म आवर जॉब फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ये हम देखा और उसी चीज का हम किताब में लिखा है।
1: अशोक जी, आपको इस वर्ष देश के प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री के लिए चुना गया है, तो ये न केवल आपके व्यक्तिगत योगदान का सम्मान है बल्कि आपके क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर सराहना भी है। तो इस सम्मान के लिए चुने जाने पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, कोई अवार्ड मिलने से एक तो इंस्पिरेशन मिलता है और हम जो हमारा काम हमारा रास्ता सही था और मेरा काम भी सफल हुआ जिससे कारण से हमको मिला। 30 साल तक हम ये साधना किया, लेखा पढ़ा के साथ जुड़ा हुआ है और वो काम करते चले। हम कभी नहीं सोचा कर्मण्येवाधि के रास्ते में पुलिस पदा चलना, नहीं नहीं कभी नहीं सोचा जे हमारा एक पुरस्कार मिलेगा। हम काम के लिए काम करता था, यही हमारा उद्देश्य था, लेकिन जो मिल गया तो उसमें और चेतना हमारा इंस्पिरेशन वाला समाज को हम और कुछ दे सकता है, यही सोच के अभी मेरा खुशी होता है। हाँ, जो हम धन्यवाद ज्ञापन करता है भारत सरकार को, उसके बाद मोदी जी को हमारा धन्यवाद ज्ञापन करते हैं, जो सही कर्मों का फल मिला है मेरा मेरा समाज को मिला। हम दलित समाज में बिलोंग करता है उसको भी, और जो शिक्षा साहित्यिक अनुप्रेरणाएं जिसको शिक्षा प्रेमी आदमी है शिक्षा अनुरोगी मानुष उसके साथ में जो हमारा विजय आज मिला है उसको साथ मेरा विजय हम बांटने चाहता है।
1: अशोक जी, आपके अनुसार आज के युवाओं को अपने जीवन और करियर में आगे बढ़ने के लिए किन गुणों को विकसित करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए?
0: नेक्स्ट जेनरेशन, देखिए कोई काम दृष्टि ठीक रख के प्रोचेस्टा जारी रखना है अविराम, उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है। हमारा काम में बाधा आ सकता है, रुकावट आ सकता है, लेकिन जब हमारा प्रोचेस्टा रहेगा उसका ऊपर डिवोशन

0: रहेगा कम का ऊपर तो आप कामयाब हो जाएगा। यही मेरा सोच है और यही मैंने सोच हम संसार को मनुष्य आदमी को समाज को देने चाहता है। जे शिक्षा चेतना आदमी को होता है तब उसको सही दिशा सही काम में वो काम करेगा। देखिए मुंह का तो जैसा वर्षा का पानी नदी में बह जाता है तो बह ही जाता है। तो समाज में पैसा बहुत ही आदमी आता है भीड़ करता है अपना काम हो जाता है चला जाता है लेकिन वास्तविक में जो है सो एक लय है। सुनने से कोई चीज आविष्कार होता है और सुनने से विलीन हो जाता है यही मेरा सिद्धांत है। तो इसमें कोई आवेश नहीं है यही हमारा जीरो सिद्धांत है।
1: अशोक जी आपका शैक्षणिक जीवन कैसा रहा और आपकी शिक्षा ने आपके व्यक्तित्व या फिर आपके कार्यक्षेत्र को किस प्रकार से प्रभावित किया और जब आप एक छात्र थे तो किन अनुभवों ने आपको सबसे अधिक प्रेरित किया था?
0: शिक्षा तो चेतना देता ही है। देखिए आज का जो समाज व्यवस्था है आज का जो शिक्षा है हमारा पीरियड में वैसा नहीं था। इतना फैसिलिटी भी नहीं था और इतना मोबाइल फोन भी नहीं था और टेलीफोन भी बहुत आदमी के पास नहीं था। बड़ा बड़ा आदमी जो था उसके पास टेलीफोन का मनी व्यवस्था था और जो सामान्य आदमी था उसके लिए एक ही काम था जो हमको कुछ करना है तो क्या करेगा हमको लेखा पढ़ा सीख के समाज को परिवार को बचाना है रोजगार करना है और उसके साथ हमारा जो चिंतन है उसको विकास करना है। जब मेरा विकास नहीं होगा तो हमारा परिवार का विकास भी नहीं होगा समाज का विकास नहीं होगा। तो पहले अपना विकास करो उसके बाद दूसरा विकास करने जाओ चिंता करो तब विकास होगा। तो वो सोच हम लोग मेरा को मिला इनिशियल स्टेज से इस चीज हम अपना से सोचा। उस टाइम में कोई विनोदन का व्यवस्था नहीं था और शिक्षा चेतना छोड़ के दूसरा कोई रास्ता नहीं था। पोस्ट कार्ड का व्यवहार था एक तो जोगाजोग व्यवस्था भी अच्छा नहीं था पोस्ट कार्ड में सब कुछ वो तो टाइमिंग फैक्टर था जिससे कारण से एक ही चीज आनंद मिलता था किताब मिला किताब पढ़ने से एक तो आनंद मिलता था और चेतना भी उसको साथ हो जाता है शिक्षा भी उसमें ही रहता है यही मेरा विचार था। तो हम शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ था अभी तक जब तक जिंदा रहेंगे उसको संयोग रहेगा।
1: अशोक जी हमसे बात करने के लिए चर्चा करने के लिए और इन तमाम प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी लेखक अशोक कुमार हल्दर के साथ विशेष बातचीत। सहेली मुखर्जी के सहयोग के साथ इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे निखिल कुमार। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है podcast.airnews@gmail.com।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्ज न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:20 होने को हैं। अब आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। पश्चिमबंगे भाजपा नेतृत्वे सर्वकारेण प्रथमं पूर्णं अर्थसंकल्पनापत्रं उपस्थापितं, यस्मिन् सामाजिक कल्याणं आधारभूत संरचना विकासं आजीविका सृजनं समेत्य अनेकाः महिला केन्द्रित योजनाः सन्ति घोषिताः। सुरक्षा समाह्वानानां विषये चर्चयितुं नवदिल्ल्याम् अद्य ब्रिक्स राष्ट्रिय सुरक्षा परामर्शदातृणां सम्मेलनं समारब्धम्। आर्थिक संबंधान इतोपि सुदृढ़ीकर्तुं विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर स्वकीयेन समकक्षेण सह

मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: राम राम राम
1: राम राम तो हो के रमेश सर भैया,
0: मोहन भैया तो हो के राम राम।
1: अच्छा, का हाल चाल बा हो खेती किसानी का? गरी
0: देखा हाल चाल का तो यह हाल बा कि देखा जिकर हमारे गांव घरे में पानी का लहान बा भैया,
1: हाँ
0: ते बिया डाल देहलत भैया। आ कुछ लोग अभी देखा वही में हमहू हई,
1: हाँ
0: अभी लखत हई जुगाड़ में कि कौन सा प्रजाति का बेहन पड़े। काहे केनिया परी महीन चाउर का मन बनौले हई, बाजार भाव तनी बरियार मिलाला।
1: हाँ
0: लेकिन मोहन भैया कभी कभी दही के देखे के पड़ला हो कि जब दही कभो कभो रिसिया जाना न तो
1: हाँ
0: महिनका चौरवा गड़बड़ा जाला। अब
1: ले
0: मोटका चौरवा में कहा भैया कि
1: हाँ
0: 72-72 कुछ न कुछ कुठिला में आई जाला,
1: हाँ
0: लेकिन महिनका मौसम का मार नहीं झेल पावत। लेकिन देखा अगर खेती बाड़ी में खलिता के बढ़ावे के बा तो कुछ न कुछ तो भैया रिस्क ले वहीं के पड़ी।
1: देखा जो न कि जो बात कला है ना कि अभी हमू जन वही लाइन में खड़ा ही, तो देखा तू तो देखा चतुर किसान हुआ,
0: हाँ
1: लेकिन तू असो काहे पिछड़ गिला हमरे चिंता का विषय है।
0: हाँ
1: कि तू पहले पहले हर साल करत रला, हमसे कहत रला बार बार
0: मोहन,
1: कि जेकर खेती आगे आगे होला ना,
0: हाँ
1: ओकर
0: हाँ
1: हर
0: वो
1: काम आगे
0: भैया।
1: आगे होला।
0: लेकिन मोहन भैया पंच भैया लोगन के हम जनौली है बतौली है, और आपो के बतौली है सुनला है नहीं,
1: हाँ
0: हम काहे पछड़त है ओकर कारण आपके बतौली
1: हाँ
0: कि एनिया पर जो हम बाजार भाव देखली भैया,
1: हाँ
0: जैसे खास करके अपने चंदौली क्षेत्र में चला जौन भी अपन प्रगतिशील किसान भैया लोग हम,
1: हाँ
0: या जौन एक तरीके से अदलहाट हरौरा का जौन भैया बेल्ट है, यानी कि अपने बनारस के जौन दक्षिणांचल का बेल्ट है भैया, या पूरब
1: हाँ
0: छाइट का बेल्ट है,
1: हाँ
0: जीराबत्ती चाउर का बड़ा बढ़िया मांग होले भैया, एकर बाजार भाव इधर बड़ा बढ़िया लहान पे रहे। ऐसे ही भैया देखा जौन भी अपन लोग प्रजाति कई ठे महीन चाउर कहाँ भैया, किसान भैया लोग अपने अपने क्षेत्र में, जैसे इधर उत्तर ओरी चल जाए भैया जौन पूर्वांचल का जौनपुर भैया आजमगढ़ है इधर का क्षेत्र है, तो जौन अपन इधर भैया चल जाए पश्चिम ओरी तो जौन अपन क्षेत्र है भैया बनारस का इलाहाबाद वाला क्षेत्र, देखें हर तरह का माटी या हर जगह का पानी का व्यवस्था हर
1: हाँ
0: किसान के क्षेत्र में अलग अलग है।
1: हाँ सही बात है।
0: जहाँ भैया पानी बरोबर नहीं वहाँ देखा प्रयास करे के चाहिए कि महीन चाउर का खेती का पैदावार न लेवे चाहे। अगर आपका भैया सौदा बराबर है, खेत पानी का व्यवस्था बराबर है, तब कोशिश करे के चाहिए कि भैया महीन चाउर का खेती का प्रयास करें। अब प्रयास कैले में भैया देखा लाभ ही है कि बाजार भाव बढ़िया मिल जाला। लेकिन भैया मोहन भैया महीन चाउर के बाद अगर जो परंपरागत करत है या अपन भैया मोटका चाउर के बाद
1: हाँ
0: जगह
1: हाँ
0: बाजार भाव सामान्य रूप से जो भैया मिलवा कराला 40-50-30 उकर भैया देखा लहान जुहान तनी नरम गरम भी हाला तो कोठिला में भैया काम भर के आ जाला।
1: कौनो बात ना है। देखा चाहे मोटका चाउर के बात करा चाहे महीन का चाउर के बात करा, लेकिन बात देखा योजना आवे के चाहिए कि देखा जोन किसान भाई लोग भाई पिछड़ल हुआ जोन जेकर बिया सिया ना पड़ल भाई ना
0: आप तैयारी में तो लपड़ जाए
1: अब
0: भैया
1: लग जाए, नहीं तो अब पिछड़ जाए जो ना, अब खेती जो ना बहुत
0: तो
1: पीछे
0: पीछे
1: हो
0: का
1: जाए।
0: खेती भागे भागे हो जाए
1: हाँ
0: भैया।
1: तो देखा जे किसान चतुर होला ना ओकर खेती आगे आगे होले, आ
0: हाँ
1: जे तनी ओ तरीके कर हला ना ओकर भागे जोगे हो जाले।
0: ए भैया अपने चतुरी भैया का देख लो, अपने मुन्ना भैया के देख लो, अपने ये लोग जौन भी भैया हो मोहन भैया बात पुरान करत है पुरान बत कही के, लेकिन पुरनिया कहे कि चतुर किसान हुए हम जे आधा खेती आ करें आधा बारी। देखें इसमें तपन में जौन चीज महंगा बा, हरियर सब्जी अगर निकलत बा तो देखा खलित्ता 2 पैसा से हमेशा भरा रहला, आ जेकरे जीवा में 2 पैसा भरा रहला ना हो उगर समझ जाला कि माथे पर चिंता नहीं होत, आगे का काम लहान पकड़ाला
1: अरे ओके काम करे में मन भी
0: मन
1: लगेगा।
0: लगाला। तो देखा हम किसान भैया लोगन से हमेशा यह करें कि देखा तनी सा कुड़ार जरूर रखें, आबादी जरूर रखें, 2 बिस्सा 4 बिस्सा अगर आप तर तरकारी का अगर एक तरीके से पैदावार लेत हवा और सौदा रोज आपका 2 पसेरी 4 पसेरी बाजारे पहुँचत है, चाहे मरचा हो चाहे टमाटर हो नेनुआ हो लौकी हो करेला हो भिंडी हो जौन भी आपका भैया ये तपन में सब्जी है जौन आवे वाला भी समय है बरसात वहू में, तो देखें 2 पैसा तर तरकारी रोज नगद दे वाला, ये नहीं कि महीना भर पूरी, तो जैसे दूध का धंधा बा भैया महीना भर पूरा तो अपन ग्राहक लोग देवन है, या भैया चाउर गेहूं बा तो भैया 3-4 महीना बाद ना भैया जब
1: अरे
0: खरिहाने।
1: भैया कहल गल ना कि ये देखा घरे का झिर्रा है गैला
0: हाँ
1: जो ना कि 4 पसेरी सब्जी ले करके कोनो सट्टी में आ पैसा
0: भैया
1: लेके तुरंत
0: बिल्कुल भैया,
1: घरे आ गईला।
0: हाँ भैया झोला लेके गईला सौदा भी घर के कुछ ले आईले जौन भी घरे
1: घरे से
0: चाहत बा,
1: लेते आईला जन से जरूरत का
0: तो
1: सौदा
0: ऐसे
1: बाय।
0: भैया खेती में बारी का क्रम जरूर अपनावे, ये भैया चतुर किसान का पहचान है, विशेषज्ञ भैया लोग भी कहना पुरनिया भी कहना, और वही बात के हम हूँ अपने कार्यक्रम में दोहरावत है कि अगर जैसे लहान बने 1 बिस्सा 2 बिस्सा 4 बिस्सा जितना लहान हो कोशिश करे के चाहे कि ओके तभी तो भैया घेर घेराव करके अपन बागवानी जरूर करें, आ 4 पैसा का इनकम जब आमदनी रोज होला तो भैया वो प्रसन्नता रहला
1: अरे
0: चेहरे
1: घर
0: पर।
1: परिवार में देखा सब लोग खुश रहे।

0: खुशी का माहौल रहला। आ
1: हाँ
0: लेकिन देखा ही कहब ना रमेश्वर भैया कि देखा खेती या बारी या बागवानी तब्बे करबा जब तनी तू स्वस्थ रहबा।
1: बिल्कुल। आ कभी कभी भैया हो ये जीवन में अस्वस्थ भी शरीर हो जाला। आ
0: हाँ
1: ऐसने में अपने भारत सरकार का एक बड़ा कारगर योजना इसमें चल रहल बा, बड़ा सफल बा, जेकर
0: हाँ
1: नाम बा आयुष्मान भारत योजना।
0: एकदम सही बात करला, हमरे दिल के बात मुंह के बात छीन लेला।
1: हाँ
0: आ देखा प्रधानमंत्री जी कितना जो है कि जमीन स्तर पर जाए के सबके बारे में सोचे ना,
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: जवन आदमी लोग जो है कि पैसा के अभाव में जो है कि गंभीर से गंभीर बीमारी होत बा लेकिन
1: इलाज
0: ओकर
1: नहीं नहीं करा
0: इलाज ना
1: पावन।
0: करा पाओ
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उनके
1: बिल्कुल।
0: पचार पैसा है ही ना बा,
1: हाँ
0: तो
1: हाँ
0: करे ही कहाँ से।
1: आए मन तो भैया 5 लाख रुपया तक का मुफ्त इलाज बा। वो भैया हो मन चाहे अस्पताले में जा
0: हाँ
1: करके।
0: कहीं भी जाके अपन आयुष्मान कार्ड दिखा करके अपन
1: हाँ
0: तू इलाज करवा के चंगा होकर घरे आ गिला।
1: और साथे साथे एक बात और भैया, कि कुछ ऐसन पंच भैया लोग जो 70 बरिस को उम्र पार कर ले हो, जिनके सीनियर सिटीजन कहल जाला, वरिष्ठ
0: हाँ
1: नागरिक, वो चाहे कोनो भी आयु, अरे कोनो भी जाति धर्म कहो या कोनो भी आय वर्ग कहो, अगर
0: हाँ
1: भैया उनकर पर्याप्त संपन्नता भी बा, लेकिन अगर वे माध्यम से इलाज करावे चाहत हुआ, तो उनकर भी जो उन वरिष्ठ नागरिक हुआ, उनके भी ये आयुष्मान भारत योजना में लाभ
0: देखा
1: मिलत
0: ये
1: बा।
0: और अच्छा बात हो गई जो कहला ना कि सोने पर सुहागा, तो ये
1: सुहागा।
0: और
1: हाँ
0: अच्छा बात हो गई कि देखा जेकर उम्र 70 साल हो गई बा वो
1: हाँ हाँ
0: चाहे
1: हाँ
0: कौनो जाति का
1: कौनो
0: हो
1: जाति
0: गए,
1: धर्म कहो,
0: हाँ
1: कौनो
0: वो
1: आय
0: खाली
1: वर्ग
0: भारत
1: कहो,
0: का
1: बस
0: नागरिक होकर
1: बस
0: ओकरे
1: बस
0: बाद
1: बस
0: कौनो अस्पताल में जा करके वो अपन इलाज अब करवा सके ना,
1: बिल्कुल।
0: ये देखा
1: आई
0: बहुत बड़ी
1: जानला
0: बात
1: कि
0: है।
1: बहुत बड़ा लाभ है आयुष्मान भारत योजना का। असली मनसा है यह
0: हाँ
1: कि कोई धन के अभाव में
0: हाँ
1: इलाज से वंचित न रहे, चाहे कोनो भी प्रकार का उनके शारीरिक समस्या हो, वो अपने नजदीकी अस्पताल में जहाँ आयुष्मान भारत कार्ड का योजना का एक तरीके से जो मरीज हों देखल जात हों, उनके आपके सुविधा मिली। आए मन शासन स्तर पर बहुत मदद मिलत बा। अब बहुत सब अस्पताल भी या लोग भी बढ़ चढ़ करके एमन मरीजन के मदद करत
0: अब
1: हो।
0: भैया देखा पहले जब आयुष्मान योजना ना चल रहा है ना, तो जन किसान बाणा गांव का गरीब लोग बाणा ये लोग के घरे में क्यों अगर एक मरीज हो जाए ना तो खेत जो ना कि रेहन रख दे,
1: बिल्कुल
0: रेहन रख
1: भैया,
0: के गहना बेच के कर्जा लेकर के वो मौका पर ना मिल पावे
1: न मिल पावे, उन्हें पौने दाम पर निकाले के पड़े अपन
0: निकाले के
1: सौदा
0: पड़।
1: भैया। तो उ दिन तो कम से कम गयल, ई
0: हाँ
1: जो दुख का दिन भैया ई कटल, कि अब कम से कम धन के अभाव में, रुपया पैसा के अभाव में आपका कितनो गंभीर बीमारी हुई, लेकिन ओकर इलाज हुई उ
0: हाँ
1: दिन गयल, कि जब बीमारी के कारण घर तबाह हो जात रहे, बीमारी के कारण अपन घर द्वार बेचे के पड़ जात रहे, खेत रेहन पर रखे के पड़ जात रहे, वो कुल जो दिन बाबू कम से कम लौट गए, बीत गए। आ अब दिन वो आ गल कि आपके अगर कोनो बीमारी बा, तो आप आयुष्मान भारत कार्ड का लाभ लें और 5 लाख रुपया तक अपने नजदीकी अस्पतालन में जा करके मुफ्त इलाज करा सकना।
0: हाँ
1: यह है आयुष्मान भारत योजना का फायदा। आयुष्मान
0: देखा
1: भारत सरकार का बहुत बड़ा योगदान है। और निश्चित रूप से जब समाज प्रगति करी, समाज निरोग रही, तो अपन देश भी जो विकसित राष्ट्र का सपना मोहन भैया देखल गया है, वो
0: हाँ
1: निश्चित रूप से 2047 में देखें, जब देश स्वस्थ रही
0: हाँ
1: तो स्वस्थ रही तो विकास करी, और जब विकास करी तो विकसित राष्ट्र हो जाई।
0: एकदम सही बात कला कि जब स्वस्थ रही हैं नागरिक तब्बे काम करी हैं
1: हाँ।
0: तब्बे जो ना कि देश विकास करी।
1: लेकिन मोहन भैया खाली मनाइए लोग नहीं, एमन पशु गैया चोरुन का भी है ऐसा काम करे, जो गैया गोरु हाँ भैया
0: हाँ
1: एनहू कैसे स्वस्थ रहें, एनहू का कोनो बीमारी बा तो उन्हों का समाधान हो। ऐसे में देखें भैंसिन में एक बाझपन का भी बीमारी होले, जो उनकी एक समस्या है ओकर का इलाज हो सकाला। आज
0: हाँ
1: अपने पंचायती में कहवा तेकर बात बत कही हुई,
0: हाँ
1: देखें कि भैंसन में जो ना स्थायी बाझपन है, ये
0: हाँ
1: समस्या का कैसे समाधान हो सकला, ओकर रोकथाम कैसे कैल जा सकला। डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भैया से तोहार पुरान बात कही है, अब
0: हाँ
1: आए के फिर से तरोताजा कैल जा, आ एकर जानकारी लेवल जा कि भैंसों में स्थायी बाझपन की रोकथाम कैसे। जानकारी देते हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भैया, आप बात कही अपन राकेश भैया करते हूँ।
0: पंचो आज अपने पंचायती में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भैया आयल हुन, आप प्रवक्ता हुआ पशुपालन विभाग उदय प्रताप कॉलेज वाराणसी में। आज आपसे हम बात करब कि भैंस में जो ना कि अस्थायी बाझपन का रोकथाम कैसे करल जाए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले अपने पंचायती में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
0: डॉक्टर साहब सबसे पहले ही बतावल जाए कि पशुअन में जोन होला कि बाझपन का हुआ आई कितने प्रकार का होला।
2: देखिए बाझपन जो है हर पशु के मादा पशु में जो बच्चा देने में असमर्थ होती है,

मादा जो होती है जो बच्चा देने में असमर्थ होती है और वो परिपक्वता को प्राप्त करती है। जब वो परिपक्व हो जाती है गाभिन होने के लिए बच्चे का प्रसव करने के लिए तो ऐसे मादा जननांगों में डिंब निकलने की प्रक्रिया होती है। डिंब निकलना मतलब कि नर को अपनी ओर आकर्षित करना। जब उसके अंदर डिंब बनता है

0: जब उसके अंदर डिंब बनता है तो वो अपने नर को आकर्षित करती है। तो स्वस्थ डिंब और शुक्राणुओं में सफल निषेचन करना दो, तब जब आकर्षण होगा तब दोनों का मिलन होगा और तब जो है गर्भधारण क्रिएट होगा। तो ये करने के यदि ये प्रक्रिया नहीं हो पाती है तो ये बाष्पन कहलाता है।
1: अच्छा जी, तो ये बाष्पन कितना प्रकार का होला?
0: जी देखिए, बाष्पन तो वैसे मुख्य रूप से अस्थाई बाष्पन और अस्थाई बाष्पन दो चीजें होती हैं।
1: हाँ।
0: अस्थाई बाष्पन ये है कि एक बार भैंस अगर अस्थाई बाष्पन का शिकार हो गई तो वो बच्चा गर्भ धारण नहीं करेगी, गर्भ धारण नहीं करेगी तो समय पे बच्चा नहीं देगी, प्रसव नहीं हो पाएगा। तो ऐसी भैंसें बेकार हो जाती हैं, वो अपने कार्य की नहीं रह जाती हैं। और अस्थाई बाष्पन अगर किसी पशु में हुआ, किसी भैंस में हुआ तो उसका निवारण किया जा सकता है।
1: अच्छा
0: जी,
1: तो जी ये भैंस के संगे संगे और कोनो जानवर में ये होला जो है?
0: जी ये सारे पशुओं में बाष्पन की बाष्पन पाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से जो हम आपको बताना चाहेंगे वो भैंस के बाष्पन के अस्थायी रूप से जब हो जाता है तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं।
1: जी, तो ये जो अस्थायी बाष्पन हुआ
0: जी,
1: ओकर निवारण कैसे कर जाए, कैसे संभव
0: है? जी देखिए, अस्थायी बाष्पन का निवारण जो है वो पोषण प्रबंधन करके कर सकते हैं, सही प्रजनन व्यवस्था करके कर सकते हैं कि सही समय से प्रजनन किया जाए, संक्रमण उसमें रोग का न हो इस बात का ध्यान रखते हैं, प्रसव के बाद जो है उसकी विशेष व्यवस्था करते हैं जिससे कि उसको इस सब का सामना न करना पड़े। परजीवी जो कीट पतंग या कुछ ऐसे वो कर परजीवी होते हैं जो पशु को परेशान करते हैं, ऐसे परजीवियों से बचाते हैं
1: जी।
0: और बात सबसे मूल बात यह है कि जहां तनाव और वातावरण में अगर तनाव होगा, वातावरण उनके अनुकूल नहीं होगा तो पशु कभी भी गर्भधारण नहीं करता है। ऐसे में बाष्पन की प्रकृति उसके अंदर डेवलप हो जाती है और वो फिर बाष्पन की तरफ बढ़ जाता है।
1: अच्छा, पर जैसे बाष्पन में डॉक्टर साहब जो है खान पान का भी असर पड़ेगा?
0: जी बिल्कुल, खान पान सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, अगर हम उसके खान पान पे ध्यान रखें तो पशु में कभी भी अस्थायी बाष्पन न हो।
1: तो जैसे का खिलावल जाए कि उनके अंदर बाष्पन न हो पावे?
0: जब भी हम खान पान की बात करते हैं तो हम संतुलित आहार पशु को देते हैं, जैसे जो हम भूसा चारा दाना जो भी देते आए हैं वो देते ही हैं, लेकिन उसके साथ इस बात का ध्यान रखते हैं कि उसमें प्रचुर मात्रा में लवण, विटामिन्स, कैल्शियम ये सारी भी चीजें उनको दी जाए ताकि उनको गर्भपात न हो। अंडाणु और शुक्राणु कम बनते हैं, चूंकि बाष्पन में अंडाणु और शुक्राणु कम बनते हैं, इसको अच्छी तरह से बने इसके लिए आहार में संशोधन करना बहुत ही जरूरी
1: है। जी।
0: इसके साथ ही अगर हम उनके आहार में बरसीम, हरा चारा, नेपियर, ज्वार, भूसा, खली मक्का, गेहूं, चोकर जो आप देते हैं वो देते ही रहेंगे, साथ में खनिज मिश्रण अगर 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर
1: जी,
0: अगर हम कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस और कॉपर इन सब की कमी उसमें दूर कर सके तो ज्यादा अच्छा होगा। तो किसान भाई 50 से 60 ग्राम मिनरल मिक्सचर उन्हें जरूर दें और विटामिन्स जो है वो ए डी ई जो विटामिन्स की कमी होती है, प्रोटीन प्रचुर मात्रा में देना चाहिए और पशु चिकित्सक की सलाह पर अगर हम उसे 600 से 100 मिलीलीटर प्रतिदिन कार्ड लीवर आयल नियमित आहार में मिला सकें तो उनका पूर्ण आहार हो सकता है।
1: अच्छा जी जी, बड़ी अच्छी बात है बतौनी है। तो डॉक्टर साहब आप बतौनी है कि जैसे खान पान का असर जो है पशुओं के गर्भाधान पर पड़ेगा, तो ये तनी बताएं कि जैसे गर्भाधान का प्रबंधन कैसे करल जाए, आप कब करल जाए कि?
0: जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। ये शुरू से जब परिपक्व हो जाता है पशु, भैंस परिपक्व हो जाता है तो वो अब हीट पीरियड में है। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि हमारी भैंस गर्म है और ये गर्म की पहचान पर उसकी लक्षण क्या है, कैसे हम जानेंगे कि हमारा पशु गर्म है? इसके लिए वो बार बार रंभाती है, आवाज निकालती है, दूसरे पशु के ऊपर चढ़ती है, ये उसका नेचर होता है। दूध उत्पादन में हल्की

0: कमी होती है उस जब गाभिन होगी, जब गर्भ धारण करने हीट में आने का समय होगा तो दूध कम हो जाएगा उसका, ये भी एक लक्षण है। बाकी उसके पीछे वाले भाग में पारदर्शी चिपचिपा स्राव निकलता है, जो स्राव निकलता है उसी से हम अनुमान लगाते हैं कि अब ये हीट पीरियड में है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि उचित समय पर ही गर्भाधान करें। हीट शुरू हो गया, हीट शुरू होने का मतलब गर्म हो गई जब भैंस, तो इसके 10 से 12 से 18 घंटे बाद ही जो है उसमें हम गर्भाधान कराएं। जैसे कि आप समझ गए कि अब ये गर्म हो गई भैंस, अब इसका गर्भाधान 10-12 से 18 घंटे बाद ही कराएं, इस बात का ध्यान रखते हैं
1: जी। तो गर्भाधान जी कैसे कराऊं तो ज्यादा अच्छा हुआ, कितना प्रकार के गर्भाधान है?
0: देखें, पहले जो अपना वो था कि भाई प्राकृतिक गर्भाधान होता था, तो उसमें जो है भैंस और भैंसा नर पशु ले आते थे और उससे मैटिंग कराते थे। लेकिन अब क्या है, अब समय ये है कि हम लोग आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन, जो कृत्रिम गर्भाधान है जिसको आर्टिफिशियल इंसिमिनेशन कहते हैं, या सीमेन चढ़ाना, गांव में भाषा में सीमेन चढ़ाना लोग कहते हैं, सीमेन चढ़ाने का काम करते हैं। तो इस ये भी करने में जो है ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि ठंडे वातावरण में यही करें, जब भी कृत्रिम गर्भाधान करें मौसम ठंडा हो, ठंडे वातावरण में करें और एआई के 15 दिन तक ठंडा माहौल दे उसको, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहे, ऐसा न रहे कि वहां गर्म रहे। और अगर 2-3 बार एआई आपने किया और इसके बाद जो है वो गर्भ नहीं ठहर रहा है तो उसकी प्रॉपर डॉक्टर से जांच करानी चाहिए।
1: जी तो ये तो बहुत सही बात बतौनी आपकी। बहुत बार ऐसा होला कि जैसे सीमन चढ़ौले के बाद भी जो है पशु गर्भाधान ना हो पावत।
0: जी
1: तो डॉक्टर साहब एक और बात महत्वपूर्ण आपसे जानल चाहब कि जैसे संक्रमण बहुत बार होला और में रोग भी बहुत तरह के लगन
0: जी,
1: तो एक नियंत्रण कैसे करल जाए जो है भैंस में?
0: जी, इसके लिए भैंस में सबसे पहले 2-3 प्रकार के रोग होते हैं जिसको ब्रुसेलोलिसिस, मेट्राइटिस, एंड्रोमेट्राइटिस, इस तरह के रोग होते हैं, इसकी जांच करवाते हैं।
1: जी,
0: जांच करवाते हैं और इसके लिए टीकाकरण जरूरी होता है। इसके लिए टीकाकरण करते हैं 6 महीने की उम्र के बाद टीकाकरण का कार्य करते हैं। टीकाकरण 6 महीने बाद कर सकते हैं और इसको मुख्य रूप से गंदगी और नमी से बचाना चाहिए। जनरली पशुपालक भाई करते क्या है कि भैंस जहां पे जो है नमी बनी हुई है, खांच है, वहीं पे बांधते रहते हैं। इस तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए और वहां नमी न हो, न पानी न लगा हो, इस सब बातों का ध्यान रखना।
1: जी साफ सुथरा जगह हो,
0: साफ सुथरा जगह रखना चाहिए और बचाव के लिए टीका लगाते हैं और उसी से जो है इस तरह की बीमारियों से बचते हैं ताकि बाचपन पे दोबारा पशु के अंदर बाचपन डेवलप न हो।
1: अच्छा जी, जैसे डॉक्टर साहब की सीमन के माध्यम से चाहे प्राकृतिक गर्भाधान के माध्यम से जब बच्चा पशु देवेला यानी कि जब भैंस ब्याह जाले ओकरे बाद जो है कि कौन कौन बात का ध्यान रखे के चाहिए जो है ये थोड़ा बताएं।
0: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। जनरली होता क्या है, सब सारे पशुपालक भाई ये समझते हैं कि गाय ब्याह गई अब जिम्मेदारी खत्म हुई, या भैंस ब्याही इसके बाद जिम्मेदारी खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, उसी समय से हमको ये ध्यान रखना है कि आगे फिर हमारे भैंस में बाचपन की तरफ न बढ़े, बाचपन न डेवलप हो, उस तरह की चीजें न हो। उसके लिए सबसे पहले ये है कि जब बच्चा बाहर निकल जाता है, प्रसव हो जाता है भैंस का, तो उसकी प्रॉपर सफाई होनी चाहिए, वहां पे प्रॉपर तरीके से साफ सफाई होनी चाहिए। जेर न गिरने या संक्रमण होने पर तुरंत उपचार के लिए पशु चिकित्सक को बुलाना चाहिए। ठीक है, 6 से 8 घंटे में ही जेर गिर जाता है और उसे जमीन में दबा देते हैं। 60 दिनों के अंदर गर्मी में लाने के लिए उचित पोषण एवं देखभाल करें। भैंस 60 दिनों में फिर जो है गर्म हो जाती है, तो इसमें लाने के लिए उसका देखभाल अच्छी तरह से करना होता है ताकि अगली गर्भावस्था जल्दी हो।
1: जी ये तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देनी डॉक्टर साहब। जो ना एक बात चलत चलत आपसे आओ जानना चाह कि जैसे बाझपन जो हुआ ई का तनाव और वातावरण के स्थिति पर भी निर्भर करेला?
0: बिल्कुल, तनाव और वातावरण एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसीलिए आप

0: पशुपालक भाई को हम कहेंगे कि अत्यधिक अत्यधिक गर्मी से बचावें, बगीचा हो पेड़ के नीचे हवा में उसको बांधें, पानी और कूलर अगर उपलब्ध है तो
1: जी
0: पानी और कूलर की व्यवस्था करें, पर्याप्त खुली जगह और स्वच्छ वातावरण होना चाहिए।
1: जी
0: भैंसों में संभोग प्रवृत्ति अधिकतर बसंत और शरद ऋतु में अधिक होती है,
1: जी
0: इस बात का ध्यान रखना
1: जी जी
0: चाहिए। जी
1: अब आवे वाला है इस समय जो ना कुछ दिन में
0: जी
1: जी।
0: जी
1: तो डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भैया, आप जो ना कि हमारे स्टूडियो में नहीं, और आज जो ना कि भैंस में अस्थायी बाजपन का रोकथाम कैसे कर ले जाए, ये विषय पर इतना महत्वपूर्ण हमारे किसान भाई लोग के देनी है, एक लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोहन भैया देखें, आप जानकारी करावत रहना डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भैया से कि भैंसन के जोन एक बाझपन का समस्या है ओकर कैसे रोकथाम कैल जा सके। तो बहुत धन्यवाद तुहों के आ डॉक्टर अशोक कुमार सिंह भैया के भी, आ झूरे झूर नहीं बात बत कही हुई आ देखा, लेकिन बात बत कही होए से पहले जोन गीत गौनई हुई वो का क्रम आई, लेकिन जोन हमन बात करते हैं इसमें तपन का मौसम का ओमन विशेष रूप से ही ध्यान रखल जाए कि देखा मौसम बदलत है, मानसून का इशारा विशेषज्ञ भैया लोगन से हो गल बा कि मानसून आई। आ मानसून जब भी आ जाई निश्चित रूप से जे आगे का खेती कैले हुई जे बिया बेहन डाल के खाली रही ओकर लहान चौचक बनी, तो हम यह कहब कि आगे का खेती आगे आगे अपने बदे अपन स्वास्थ्य अच्छा रखें, अगर या गुरुन का भी जोन देखभाल हो सके वो करें, तो जोन बात बात कही भैया मन फेर का मन मनसायन का तो रीना देवी और उनके संघाती लोगों के साथ सुनल जावा किसानी गीत
1: सुनवा दे भैया।

0: मोहन भैया,
1: देखाई जो ना कि खेती में लागल लगनिया बलम हमहू करब किसनिया ने,
0: किसनिया हो,
1: ई देखार रीना देवी बहिन रनिया उनकर साथी लोग
0: संग
1: रनिया।
0: नाती लोग रहना है बिल्कुल। आ देखा ये गीत गौनाई भी बहुत कुछ तनेस देगल पंच भैया लोगन के, किसान भैया लोगन
1: हाँ
0: के, कि जब खेती दोनों प्राणी के मिल मिला के होला
1: हाँ
0: तो जान ला कि कोई के थकान नहीं हो, एक अकेला थक जाए तो मिलकर साथ उठाना। जो गाना गावल भैया
1: हाँ हाँ
0: वो
1: हाँ
0: देखा घरैतिन पर बड़ा सूट कराला, कि जब मनई लोग कोनो सौदा लिया आवास, मान लो सब्जियाँ तोड़ के लिए ना, मान लो भिंडी तोड़ के आ गई ना, घरैतिन ओके पैक कर देनी, ओके मतलब पैकेट बना देनी, ओके बांध देनी खांची में बाजारे ले जाए बदे, तो
1: अब
0: सौदा चौंक हो गल। अगर जौन भी सौदा आयल, लौकी तोड़ के आयल चाहे चौराइये तोड़ के आयल, ओके भैया खांची में डलिया में तोड़ के लिए लें, अब वैसे ही तो बाजारे जाई ना, ओके बनबै छनबै। अगर वो कहीं काम अगर परिवार का कोई सदस्य कर देला तो आधा समझ ला कि जांगर भी बच जाला आ काम भी चौचक हो जाला।
1: हाँ तो ये तो बात
0: आ
1: सही
0: ऐसे
1: कह
0: ही देखें हमान खेती बाड़ी का बात कर लिया जाता, सवेरे 6:05 पर खेती की बातें में काल का हो ये के जान लेवल जा। काल हुई मृदा में जीवांश का महत्व, इस विषय पर जानकारी दी हैं दिनेश कुमार सिंह भैया। अकाल संध्या के का हुई
1: काल संझा के देखा यही कार्यक्रम में कृषि जगत में 6:30 पर बातचीत सुनवाल जाई अरहर का उन्नत खेती का तकनीक। डॉक्टर सुरेश कुमार कनौजिया से राकेश यादव का बातचीत हुआ, बहुत नगद बातचीत है, जरूर किसान भाई लोग सुनिए के।
0: बिल्कुल बिल्कुल। आ देखा घड़ी का सुई इशारा करत है कि चला चले के, तो यह उम्मीद सबके कि सब पढ़ें सब बढ़ें, लड़ा मत लड़ावा मत, देश के आगे बढ़ावा भैया। तो पंचो राम
1: राम राम।
0: राम।

0: मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी वाराणसी के कार्यक्रम। इसी क्रम में अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत।
1: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
2: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
1: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
2: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
1: डायल कीजिए
3: 0542227658।
2: नंबर एक बार फिर नोट करें
4: 0542227658।

कार्यक्रम में पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं बाजीगर फिल्म से आवाज अलका याग्निक और कुमार शानू की है। इस गीत को लिखा है नवाब आरजू ने और इसे संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

ये गीत आपने सुना बाजीगर फिल्म से, और कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए चलते चलते फिल्म से, जिसे आवाज़ दी है अभिजीत भट्टाचार्य ने।

ये गीत आपने सुना चलते चलते फिल्म से आवाज थी अभिजीत भट्टाचार्य की, और कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं दाग द फायर फिल्म से आवाज उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की है। गीतकार समीर

ये आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। फिल्म का नाम था दाग दी फायर। और इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

मीडियम वेव के मीटर पर हम बोल रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से। अब सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचना। कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर से प्राप्त सूचना के अनुसार ऋचा कुमारी और स्नेहा कुमारी, ऋचा कुमारी जिनकी उम्र है 18 वर्ष और स्नेहा कुमारी जिनकी उम्र है 14 वर्ष, पुत्री जवाहरलाल वर्मा, निवासिनी त्रिमोहनी, कछार थाना, थाना कोतवाली शहर मिर्जापुर, 21 मार्च 2026 से लापता हैं, जिनमें से ऋचा कुमारी

की उम्र है 18 वर्ष और इनकी ऊंचाई है 4 फुट 8 इंच। शरीर इकहरा, रंग गेहुआ, चेहरा लंबा, बालों का विवरण सामान्य है, आंखें भी औसत हैं। और इन्होंने घटना के समय काले रंग का जींस, गुलाबी रंग का टॉप, गुलाबी रंग की चप्पल, नाक में कील पहन रखी थी। और स्नेहा कुमारी, जिनकी उम्र है 14 वर्ष, इनकी ऊंचाई है 5 फुट 1 इंच। शरीर की बनावट औसत, रंग गेहुआ, चेहरा गोल। विशिष्ट पहचान इनका है, दाहिने आंख के ऊपर तिल तथा आंख के अंदर तिल है। बालों का रंग सामान्य है, आंखें बड़ी काली हैं। इन्होंने घटना के समय आसमानी रंग की जींस और चॉकलेटी रंग की टॉप और क्रीम कलर की चप्पल पहन रखी थी। इनके विषय में कोई भी जानकारी मिलने पर आप नजदीकी थाना या थाना कोतवाली शहर जनपद मिर्जापुर को सूचित करें। थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार शालिनी सिंह, जिनकी उम्र है 30 वर्ष, पुत्री संजय कुमार पटेल, निवासिनी ग्राम गोईठहा, पोस्ट सारनाथ वाराणसी। इनके विषय में जानकारी की बातें इस प्रकार है। इनकी लंबाई है 165 सेंटीमीटर। बोलचाल की भाषा हिंदी। रंग गेहुआ, आंख, कान, नाक औसत। ये हिंदी और भोजपुरी बोल सकती हैं। इनके विषय में कोई भी जानकारी प्राप्त होने पर आप नजदीकी थाना या थाना लालपुर पांडेपुर कमिश्नरेट वाराणसी को सूचित कर सकते हैं। सूचना संपन्न हुई। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के साथ शाम के 7:18 होने को अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम अपने लखनऊ केंद्र से रिले करेंगे।

0: और कोई ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बताओ जिसमें कम प्रीमियम हो, बोनस भी अच्छा मिले और भरोसे वाला भी हो।
1: PLI है ना।
2: सरकारी कर्मचारी के साथ साथ सभी प्रोफेशनल, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स ले सकते हैं PLI पॉलिसी का फायदा और साथ में पोस्टल डिपार्टमेंट का भरोसा भी। अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस से आज ही संपर्क करें या लॉगिन करें indiapost.gov.in पर।
3: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
4: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
5: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
7: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 92 स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज एक बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मृत्यु हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर

0: रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए केजीएमयू के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मरने वाले छात्रों की उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मौके पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि आग इमारत के अंदर लगी और तेजी से फैल गई, जिससे छात्र अंदर फंस गए। आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की टीमें, पुलिसकर्मी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत कार्य में जुट गए। श्री पाठक ने बताया कि घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 14 बच्चे इस घटना में हताहत हुए हैं, कुल 4 बच्चे घायल हुए हैं, जिनको केजीएमसी ट्रामा सेंटर भेजा गया है। घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव गृह महोदय और डीजीपी महोदय मौके पर हैं। और प्राथमिकता भी है घायलों को अच्छे से अच्छा इलाज मिले, और घटना कैसे घटी, क्यों हुई, इसके जांच रिपोर्ट आने के बाद ही कह पाएंगे। पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सरकार खड़ी है, हर स्थिति में हर संभव हम मदद करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि राहत और बचाव कार्य के लिए प्रशासन की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का निरीक्षण कर पूरे मामले पर पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। साथ ही केजीएमयू पहुंचकर मुख्यमंत्री ने घायलों का हाल जाना और समुचित इलाज के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बसपा प्रमुख मायावती सहित कई नेताओं ने आग की घटना में जनहानि होने पर दुख व्यक्त किया है। मायावती ने इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फिरोजाबाद में 658 करोड़ रुपए से अधिक की 81 और अलीगढ़ में 462 करोड़ रुपए की 85 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लाभार्थियों को चाबी और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र, चेक और उपकरण वितरित किए। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद के उद्यमियों और श्रमिकों की सराहना करते हुए कहा कि फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है, इसने चीन को भी पछाड़ दिया है।
2: सनातन धर्म के अंदर बात होती है, हर सनातन धर्मावलंबी फिरोजाबाद की चूड़ियों की ओर देखता है और सुहाग की इस नगरी को आज यहाँ का कारीगर, यहाँ का उद्यमी एक नई ऊंचाई दे रहा है। मैं उन्हें आश्वस्त करता हूँ, ये डबल इंजन की सरकार उनके साथ मिलकर के कार्य करेगी, उन्हें हर प्रकार से प्रोत्साहन उपलब्ध करवाएगी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नागरिक अलंकरण वर्ष 2026 के दूसरे समारोह में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। कल के समारोह में 2 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और उत्तर प्रदेश की 4 हस्तियों समेत 56 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उत्तर प्रदेश की जिन हस्तियों को कल पद्मश्री मिलेगा उनमें कला के क्षेत्र में अनिल कुमार रस्तोगी और चिरंजी लाल यादव, शिक्षा के क्षेत्र में मंगला कपूर के नाम शामिल हैं, जबकि कृषि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए मुरादाबाद के रहने वाले रघुपत सिंह को मरणोपरांत ये सम्मान दिया जाएगा। इससे पहले पिछले महीने 25 मई को श्रीमती मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित पहले नागरिक अलंकरण समारोह में 66 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए थे। इस वर्ष राष्ट्रपति ने 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कारों सहित कुल 131 पद्म पुरस्कारों को स्वीकृति दी है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से दीपाली सिंह।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री के विजन को पूरा करने में वस्त्र मंत्रालय बड़ा योगदान निभाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान निट्रा के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की उपलब्धियों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

0: अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेट भी उपस्थित थीं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आज भारत प्रत्येक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के साथ ही अन्य देशों की जरूरतों को पूरा कर रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार अनुसंधान पर जोर देने के साथ ही स्टार्टअप को भी प्रोत्साहन दे रही है, जिसमें निट्रा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
1: 2.5 लाख स्टार्टअप हो गए हर सेक्टर में है। कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें स्टार्टअप नहीं। कभी पंजाब का पराली लोगों के लिए एक समस्या थी, चाहे सीबीजी प्लांट लगे चाहे निट्रा उसे फाइबर में परिवर्तित कर दे पराली।
0: पीलीभीत के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद के अनुरोध पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कासगंज लखनऊ एक्सप्रेसवे ट्रेन को मंजूरी दे दी है। मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि इस नई ट्रेन के चल जाने से पीलीभीत के साथ ही लखीमपुर खीरी सीतापुर सहित संपूर्ण तराई क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है। उन्होंने कहा कि ये ट्रेन बदायूं, बरेली, इज्जतनगर, पीलीभीत, पूरनपुर, मैलानी, गोला, गोकर्णनाथ, लखीमपुर, सीतापुर, सिधौली, मोहबुल्लापुर होते हुए पीलीभीत को राजधानी लखनऊ से जोड़ेगी। श्री प्रसाद ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस ट्रेन के संचालन से यहां का कार्य, व्यापार और पर्यटन भी बढ़ेगा। रेलवे गोंडा से गोंडा कचहरी के बीच 5 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन को कमीशन करने के लिए अगले माह प्री इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी करेगा। इस कारण गोंडा रूट होकर चलने वाली कई ट्रेनों को 7 से 11 जुलाई तक निरस्त किया जाएगा। वहीं कई ट्रेनों के रूट बदलेंगे। 6, 7 और 10 जुलाई को छपरा मथुरा एक्सप्रेस लखनऊ नहीं आएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा आज से शुरू हुई। ये राष्ट्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी माध्यम से 30 जून तक प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। यूजीसी नेट परीक्षा उन अभ्यर्थियों के लिए आयोजित की जाती है जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जीआरएफ, सहायक प्रोफेसर के पदों और पीएचडी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता प्राप्त करना चाहते हैं। कुख्यात अपराधी ललन सिंह को कल रात सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विशेष कार्यबल एसटीएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया। उस पर 1,25,000 रुपए का इनाम था। उसके एक फरार साथी की तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। वहीं गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ हुई हल्की बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में देवरिया, गोरखपुर, संत कबीरनगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर और बलरामपुर समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लखनऊ में बहुमंजिला इमारत में चल रहे एनिमेशन सेंटर में आग लगने से 14 छात्रों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। घटना की उच्च स्तरीय जांच का दिया गया आदेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर जताया दुख। मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह ने घटनास्थल का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री ने फिरोजाबाद और अलीगढ़ में विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, नवाचार का नया केंद्र बना है फिरोजाबाद का ग्लास उद्योग। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गाजियाबाद में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के 52वें स्थापना दिवस समारोह में हुए शामिल। कहा, 2047 तक विकसित भारत बनाने में वस्त्र मंत्रालय निभाएगा बड़ा योगदान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: पापा, कॉलेज की फीस ज्यादा है।
3: बेटा,
4: याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे?
3: 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा।
5: तो अब बैंक जाके या वीडियो KYC से KYC अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री।
3: चलो,
4: कहाँ
3: एडमिशन कराने?
5: खाता हुआ एक्टिव,
6: RBI कहता है।
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
8: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1000

242 किलो हर्ट्स न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
1: आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
0: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ। पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

आपको पहले भी कहीं देखा है, इस फिल्म से ये पहला गीत हम आपको गीत सुनवा रहे हैं, आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की। शब्द रचना समीर की है, संगीत निर्देशन निखिल विनय का है।

आपको पहले भी कहीं देखा है इस फिल्म से ये गीत आपने सुना उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में। और अगला गीत उदित नारायण और साथियों की आवाज में सुनिए। फिल्म का नाम है आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस गीत को लिखा है देव कोहली ने और इसे संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

और अब इस कार्यक्रम में सुनिए, रसरंग कार्यक्रम में ये गीत सुनिए आपकी खातिर फिल्म से आवाज सुनिधि चौहान की। शब्द रचना समीर की, संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का।

आपकी खातिर फिल्म से ये गीत आपने सुनिधि चौहान की आवाज में सुना। आइए कार्यक्रम का आखिरी गीत सुनते हैं। ऐतराज फिल्म से आवाज उदित नारायण और अलका याग्निक की है। शब्द रचना समीर और संगीत निर्देशन हिमेश रेशमिया का है। एक बार फिर से

ऐतराज फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम रसरंग अब संपन्न होता है। आकाशवाणी वाराणसी से अब प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज कलाकार हैं तलत अजीज और पिनाज मसानी। आइए इन्हीं की गाई चंद गजलें सुनते हैं, और पहली गजल हम आपको इन्हीं की आवाज़ में सुनवा रहे हैं।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं तलत अजीज और पिनाज मसानी की गाई कुछ गजलें। आइए अगली गजल सुनते हैं इन्हीं की आवाज में।

ये गज़ल आपने सुनी पिनाज मसानी और तलत अज़ीज़ की आवाज़ में। हम आज इन्हीं की गाई कुछ गज़लें सुन रहे हैं, तो आइए एक बार फिर से सुनते हैं इन्हीं की गाई अगली गज़ल।

इसी गजल के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। इस कार्यक्रम में आज कलाकार थे तलत अजीज और पिनाज मसानी। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: पल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं दीपा सिंह।
2: बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप दशकों से काम कर रहे हैं पर्यावरण और जल संरक्षण के क्षेत्र में। जिस वक्त आपको पद्मश्री से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, उस वक्त आपके मन में क्या भाव थे?
3: बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि बहुत छोटे छोटे काम करके भी इतना बड़ा पुरस्कार प्राप्त हो सकता है। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, भारत सरकार का ध्यान छोटे छोटे कामों की तरफ भी है, लेकिन जो परिणामकारी काम समाज के लिए, प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए जो हम जन भागीदारी के माध्यम से कर रहे हैं बैतूल जिले में पिछले 3 दशक से, समाज ने उस काम को स्वीकार किया है, उसके परिणाम आए हैं और उसको संज्ञान में लेकर के

0: और जब ये घोषणा हुई तब बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन भी मैं माँ नर्मदा जयंती थी, माँ नर्मदा जी की सेवा में स्वच्छता में हम सब हमारी टीम के साथ लगे हुए थे और इसलिए बहुत प्रसन्नता हुई सुनकर।
1: आपको समाज सेवा की सीख कहाँ से मिली?
0: मैं एक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी हूँ, मेरे जन्म जो है वो राजगढ़ जिले के छोटे से गाँव में हुआ है और इसलिए ग्रामीण परिवेश में रहने के कारण और साथ में ही जो पारिवारिक हमारा बैकग्राउंड है वो किसान परिवार का होने के कारण हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारे सभी परिवार के लोग ये उसी कार्य में लगे हुए हैं, खेती में, जल सुरक्षा में, पौधे लगाने में। मैं देखता था मेरे दादाजी जब गाय चराने के लिए जाते थे तो कोई भी ऐसा छोटा पौधा दिखता था तो उसमें कांटे लगा देते थे, कुएं में जाते थे, तालाब में जाते थे तो पहले उसमें से कोई कचरा निकाल करके बाहर करते थे और उसके बाद फिर उसके पानी का उपयोग करते थे। तो बचपन से ही अपने पूर्वजों की सीख जो मिली थी, बाद में फिर समाज कार्य के लिए गए तो समाज ने फिर सारी बातें अपने आप ही सीखने को मिली, तो स्वाभाविक रूप से फिर जो बचपन से सारी बातें थी वो आगे चल करके काम आई और पर्यावरण की सुरक्षा, जल की सुरक्षा और समाज सेवा के लिए, शिक्षा को लेकर के, ग्राम विकास को लेकर के फिर बैतूल जिले को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और उसी में फिर अभी तक लगे हुए हैं।
1: आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आपने ये सीख जो है अपने घर से ही ली है। सर, जल संरक्षण एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी, लेकिन आपने सामाजिक जिम्मेदारी से कैसे बनाया?
0: बिल्कुल, मैं जब बैतूल जिले में 91-92 में गया तो वहाँ का जो जिले में जब भ्रमण किया तो ये ध्यान में आया कि बैतूल जिले में वर्षा तो पर्याप्त मात्रा में होती है, 60 इंच के लगभग वहाँ बारिश होती है, लेकिन उसके बाद भी और वहाँ का जो समाज है, विशेषकर जो जनजातीय आदिवासी समाज है, वो दीपावली के बाद खरीफ की फसल के बाद में ज्वार मक्का लेकर के उसके बाद फिर पलायन कर जाता था क्योंकि उसके बाद कोई काम था नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या थी, जब लोगों से बात की हमने फिर पूरे जिले में और 2-3 वर्ष लगातार अलग अलग महा में पदयात्रा की गांव की वहां पर, और उसके बाद लोगों से चर्चा में ध्यान में आया कि पानी गिरता तो पर्याप्त लेकिन रुकता नहीं है और इसलिए पानी को रोकने के छोटे छोटे प्रबंध किया जाए। बड़े बड़े काम तो सरकार करती है, डैम बनाने का, बड़े तालाब बनाने का, तो ग्राम स्तर पर क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है तो वहां बहुत बड़ी संरचना बनाना ये संभव नहीं है, इसलिए छोटे छोटे काम हमने प्रारंभ किए। वहाँ के जो बरसात के बाद जो नदी नाले बहते थे उसमें बोरी बंधान के माध्यम से छोटे छोटे स्टाफ डैम बना करके, और वो हमने लोगों के सहयोग से काम किया। जब हमने हम एकल विद्यालय भी वहाँ पर 400-500 गांव में चलाते थे बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए, उन बच्चों को लेकर के, अभिभावकों को लेकर जब हमने काम किया और जब ध्यान में आया कि एक छोटे से बोरी बंधान बनाने से 15 से 20 एकड़ की फसल सिंचित हो सकती है, खेती और की जा सकती है, तो लोग फिर उस अभियान में जुटे और हमने पूरा एक अभियान महोत्सव के रूप में पूरे जिले में प्रारंभ किया। आज बैतूल जिले के 500-600 से ज्यादा गांव में लोग स्वतः होकर के उस काम को करते हैं क्योंकि हमने 2 दशक तक लगातार उस काम को किया है और उसके कारण फिर जो लोग पलायन कर जाते थे उनके 1-1, 2-2 एकड़ की जब खेती होने लगी तो फिर पलायन भी कम हुआ और उसके साथ में लोगों को उसके माध्यम से रोजगार भी मिला, गाँव में जल स्तर भी बढ़ा। जिन गांवों में फरवरी में, मार्च में ही पानी समाप्त हो जाता था, हैंडपंप सूख जाते थे, वो फिर मई जून तक भी और उस गांव में पानी ठहरने लगा और इसलिए रोग भी रुकने लगे।
1: मोहन सर, आपने एकल विद्यालय की बात कही है, कैसे आपने बच्चों को एजुकेट किया है, जो वहां के पेरेंट्स थे वो अभिभावक कैसे आपके साथ जुड़े?
0: जब मैं बैतूल जिले में गया उस समय अनेक गांवों में स्कूल नहीं थे, बाद में तो फिर सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब जगह हो गए विद्यालय, लेकिन उस समय नहीं थे। तो हम गांव में जाते थे तो बच्चे अशिक्षित थे, निरक्षर थे, पूछते थे कि सबसे बड़ी आपकी गांव की समस्या क्या, एक बार हमको बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई व्यवस्था कीजिए। तो हमने फिर विद्या भारती की जनजाति शिक्षा के माध्यम से, भारत भारती संस्था जो हमारी है उसके माध्यम से, उसी गाँव के कम पढ़े लिखे या जितना भी पढ़ा लिखा था उसका चयन किया, उसको हम ट्रेनिंग देते थे 10 दिन की ट्रेनिंग में, उसको अक्षर ज्ञान, भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाना है, उस ट्रेनिंग के माध्यम से फिर गांव में सिंगल टीचर स्कूल, उसको एकल विद्यालय इसलिए कहते हैं कि एक शिक्षक रहता है और वो गांव के बच्चों को पढ़ाता है। तो उसके माध्यम से फिर गांव में ये विद्यालय प्रारंभ किया और छोटे छोटे बच्चे जो बकरी चराने जाते थे या काम करने जाते थे उनको सुबह 7 बजे से 10 बजे तक भाषा ज्ञान, अंक ज्ञान, अक्षर ज्ञान करना, उनको संस्कार की कुछ बातें बताना, उनको उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए योगासन, व्यायाम कुछ बताना, देशभक्ति के गीत है, परंपरागत जो हमारे गोंडी संस्कृति, कोरकू संस्कृति के जो गीत है उसी भाषा में उनको बताना, और धीरे धीरे फिर उन बच्चों का शिक्षा के रूप में विकास हुआ, फिर स्कूल में उनका एडमिशन हुआ। हमें से कई बच्चे जो है उच्च शिक्षा की ओर गए हैं, हमने उसके लिए फिर 2-3 छात्रावास भी प्रारंभ किए क्योंकि दूर के बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, तो फिर हमने 3 जनजाति बच्चों के अलग अलग छात्रावास भी प्रारंभ किए, उससे भी बच्चे लेकर के पढ़ाई कर रहे हैं, आज उच्च शिक्षा को लेकर के स्वावलंबी भी हुए हैं और सरकारी जॉब में भी गए हैं, कुछ अपना स्वयं का भी काम कर रहे हैं।
1: सर, आदिवासी और जनजाति समाज को सशक्त बनाने में भी आप काफी सहयोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो क्या मुख्य धारा से जुड़ गए हैं या हमें और प्रयास करने की जरूरत?
0: हमारा जो जनजाति आदिवासी समाज है प्रकृति से जुड़ा हुआ समाज है और इसलिए उनको कोई चीज बताना कि प्रकृति की रक्षा कैसे करना, ये सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। तो हमने तो उनसे ही जाकर के सीखा कि कैसे प्रकृति का संरक्षण किए, क्योंकि वो तो हजार

0: करोड़ों वर्षों से प्रकृति के बीच में रह रहे हैं और जो जंगल सुरक्षित है वो उन्हीं के कारण सुरक्षित है। हमने शहर में रह करके तो जंगल खत्म कर दिए, गांव में जंगल खत्म कर दिया। वो प्रकृति प्रेमी होने के कारण, प्रकृति पूजक होने के कारण, और इसलिए उन्होंने नदियों को और सारी जो सुरक्षा करके रखी हमारे जीव जंतुओं को। तो लेकिन उनमें शिक्षा का अभाव था, आधुनिकता जो थी वो उसका अभाव था, उसको लेकर के हम उनके बीच में गए। जैविक खेती को लेकर के, ग्राम स्वावलंबन को लेकर के कुछ गांव में हमने होम स्टे प्रारंभ किए, जिसके माध्यम से लोग वहां आकर के रुकने लगे, उनकी आर्थिक व्यवस्था में सुधार हुआ। हमने एक अन्नपूर्णम मंडपम योजना बनाई कि घर का जो पानी हम उपयोग करते हैं वो जो बहके जाता है उसमें ही हम सब्जी भाजी लगाए। हमने कुछ बीज उनको दिए और ऐसे घर घर में पीछे जो है वो इस प्रकार की सब्जियां लगा करके एक स्वावलंबन की दिशा में वो आगे बढ़े। जैविक खेती के माध्यम से कैसे, क्योंकि गोपालन और पशुपालन बड़ी मात्रा में वहां होता है, तो जैविक खेती कैसे कर सकते हैं ताकि बाजार से जो हम रासायनिक खाद और कीटनाशक जो महंगा खरीदते हैं उससे हमको छुटकारा मिले, इस दिशा में प्रयास किया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास किए जिससे उनको एक आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से और एक सशक्त उनको एक काम मिला गांव में। और जो पलायन था, फिर सरकार के बीच बीच में अनेक प्रकार की योजनाएं आई जिससे बिजली को लेकर के, पानी, सड़क सब गांव गांव तक पहुंची। उसमें हमारा भी काम छोटा छोटा ही गिलहरी की तरह हमने भी उसमें किया, जिससे समाज को और एक स्वावलंबी समाज बनने में उनके माध्यम से उनको एक लाभ मिला।
1: जल गंगा अवतरण आपका अभियान है जिसे जन आंदोलन बनाया है, आप इस अभियान की सोच और प्रभाव के बारे में बताइए हमारे श्रोताओं।
0: बिल्कुल, जब हम उन लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी गांव की समस्या क्या है, तो हमारे गांव की समस्या पानी है। तो ये समस्या कब से है, तो ये 20-25-30 साल से हुई है। इसके पहले क्या था, बोले पहाड़ों पर जंगल था घना, जब जंगल समाप्त हुआ धीरे धीरे तो फिर वो पहाड़ जो है वृक्षविहीन हो गए, तो जो नदी नाले बहते थे वो भी धीरे धीरे बंद हो गए। और इसलिए पहाड़ों पर पानी नहीं रुकता है, और इसलिए पहाड़ों पर पानी रोकना है उसके लिए कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो फिर हमारे ध्यान में आया कि गंगा जी का अवतरण हुआ था, कैसे हुआ था, तो भगीरथ गंगा लेकर के आए। इसी कंसेप्ट को लेकर के फिर हमने गंगा अवतरण अभियान बैतूल जिले में प्रारंभ किया। सबसे पहले वहाँ की जो सोना घाटी है उस पहाड़ी को हमने एक मॉडल के रूप में बनाया। वर्षा का जल कैसे रुके उसके लिए हमने फिर खंतियां खोदना प्रारंभ की, जहाँ जैसी भौगोलिक संरचना थी, कहीं 6x2x2 की, कहीं 10x2x2 की। और उसके लिए हमने समाज को आह्वान किया कि हम सब, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, और अगर ये पहाड़ी पर पेड़ नहीं है तो हमारे यहाँ जल भी नहीं बचेगा, क्योंकि पहाड़ियां हमारे यहाँ पर जितने ही है ये सब हमारे ओवरहेड टैंक के पानी की टंकियां हैं। जैसे पानी की टंकियां शहरों में होती है, उसमें पानी भर देते हैं फिर बाद में सप्लाई करते हैं। हाँ। तो ये पहाड़ हमारे पानी की टंकियां हैं, इस वर्षा का जल भर जाता है, बाद में फिर हमको मिलता है, तो इसलिए इसको जल से भरना है। तो धीरे धीरे हमने खंतियां खोद करके उसमें वर्षा का जल रोका, वहां पर पौधारोपण किया, और उसके माध्यम से धीरे धीरे अपने आप 3-4 वर्षों में जहां 1000 फुट पर भी पानी नहीं था, वहां 100 फुट के नीचे 60 फुट पर भी पानी उस जगह पर आ गया। तो एक परिणाम था उसका, ये गंगा अवतरण था कि उसके गंगा जी को रोको, और उसके बाद धीरे धीरे फिर नदी नाले के माध्यम से, कुएं बावड़ी से उसका पानी हम सबको मिलेगा। और फिर ये काम पूरा हमने 75 पहाड़ियों पर बैतूल जिले में ये काम किया। मोदी जी का जो आह्वान था कैच द रेन, ये महामंत्र है मोदी जी का, जो उन्होंने कहा कि वर्षा के पानी को जहां गिर रहा है वहां पकड़ लो, 10 मीटर से ज्यादा अगर वर्षा का जल बह गया तो फिर वो अपना रास्ता बना लेता है। और इसलिए 10 मीटर के पहले ही कोई संरचना बना दो, कोई पेड़ लगा दो, कोई खंती खोद दो, कोई घास लगा दो, कोई पत्थर से उसको रोक दो, तो फिर वर्षा का जल धीरे धीरे जमीन में जाने लगता है, उसकी गति कम होती है, तो तेज हो जाएगी तो फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। और इसलिए उन्होंने कहा कि वर्षा की पहली बूंद जहां गिरे वहां उसका प्रबंधन करना, यही जल प्रबंधन का अनाराम है। और हमने वहाँ के स्थानीय जनजाति समाज, आदिवासी समाज के साथ मिलकर के यही काम बैतूल जिले की पहाड़ियों पर किया, यही गंगा अवतरण अभियान है।
1: आपसे चाहेंगे कि कुछ छोटे छोटे से टिप्स आप हमारे श्रोताओं को दें, जिससे वो भी इस बार बारिश आने वाली है, गर्मी आएंगी फिर बारिश आएगी, तो वो भी जल का संचयन कर सके।
0: बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए 3 उपाय हमको करना पड़ेंगे। एक तो वर्षा के जल का संरक्षण करना पड़ेगा कि वर्षा का जल कैसे अधिक से अधिक जमीन के अंदर जाए। फिर जो संरक्षित जल है उसका समुचित उपयोग करना पड़ेगा, और जो उपयोग किए हुए जल का पुनर्उपयोग करना पड़ेगा, कितना हम रीयूज कर सकते हैं पानी का। ये 3 बातें समाज को आज सिखाने की आवश्यकता है। केवल एक काम करेंगे तो जल संरक्षण नहीं होगा, जल प्रबंधन नहीं होगा। ये 3 बातें, सबसे पहले हमारे यहाँ क्या है कि बारिश मुश्किल से 100 दिन होती है, और उसमें भी 10 दिन में ही 90-80% बारिश हो जाती है। बारिश का जो पीरियड है तेज बारिश का बहुत कम है, 8-10 दिन 12 दिन ही हमारे यहाँ पर है, और इसलिए उतने में ही हमको जल प्रबंधन करना है। इसलिए हमको उपाय करना पड़ेगा कि पानी जहाँ गिरता है हमारे घर का पानी घर में रुके, उसके लिए हमारे घर की छत 1000 फुट की भी है तो उसमें 1.25 लाख लीटर पानी उसमें गिरता है, तो कैसे हम उसको कोई सोक पिट बना करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके हमारे घर में ही कहीं पर, आज हम घर बनाते हैं तो इतनी सारी चीजें बनाते हैं, तो अपने आंगन में या घर के पीछे कहीं भी एक ऐसा स्थान बनाए जिसमें हमारी छत का पानी हम जमीन के अंदर उतार दें, तो पानी की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। फिर जिस पानी का उपयोग कर रहे हैं उसका उचित रूप से उपयोग करें, कि पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो जितना चाहे उतना मन चाहे उपयोग करें, ऐसा नहीं, अनुशासन पूर्वक आज जल का उपयोग करने की आवश्यकता है। फिर आप आपने जिस पानी का उपयोग किया उसको सिंचाई के रूप में, गमलों के रूप में, अन्य अन्य रूप से उसको कैसे उपयोग कर सकते हैं, उसका पुनर्भरण कैसे कर सकते हैं, कुल मिलाकर के हमको आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा समाज जो है इस दिशा में आगे आए और

0: छोटे छोटे काम, अपने गांव की कोई पास की पहाड़ी होगी, कोई पास का क्षेत्र होगा, किसान अपने खेत में मेड़ बंधन करें, गांव का पानी गांव में रुके, इसलिए तालाबों का हमारी जो जल शक्ति मंत्रालय है, मोदी जी ने एक बड़ा काम किया है उसको बना करके गांव गांव में तालाब बन रहे हैं, अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसके माध्यम से अपना रोके, फिर पहाड़ का पानी पहाड़ में रोके, खेत का पानी खेत में रोके, नदी का पानी नाले का पानी उसमें रोके। तो ये छोटे छोटे उपाय अगर हम समाज के साथ मिलकर के करते हैं और व्यक्तिगत स्तर भी करते हैं तो उसका बहुत लाभ मिलता है। एक आपने 6x2x2 की खंती भी अगर खोद दी है कहीं पर और उसमें वर्षा का जल जा रहा है तो 30,000 से 35,000 लीटर पानी केवल उसके माध्यम से जमीन के अंदर चला जाएगा। हम छोटा सा काम करेंगे तो उसका एक परिणाम जो है बड़ा होगा। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे मैंने आपको कहा कि सोनाघाटी की पहाड़ी है, वो पहाड़ी वो है, कभी आपने भवानी प्रसाद मिश्री जी का नाम सुना होगा, उन्होंने कविता लिखी थी, सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल,
1: वो उसी
0: पहाड़ी पर उन्होंने 1939 में बैठ करके लिखी थी। और जब 2014 में उनका जन्म शताब्दी वर्ष आया तो हमने उनका जन्म शताब्दी मनाया, तो जब उनके बारे में पढ़ा और उस पहाड़ी को देखा तो उस पहाड़ी पर एक भी पेड़ नहीं था, वो वृक्षविहीन पहाड़ी हो गई थी, झाड़ियां कुछ बची थी। तो हमने उसी पहाड़ी को पहले कहा कि भवानी प्रसाद मिश्र जी को अगर सही श्रद्धांजलि देना है जन्म शताब्दी वर्ष में तो इस पहाड़ी को फिर से हरा भरा करेंगे। और इसलिए बैतूल के लोगों को, आसपास के गांवों का आह्वान किया कि ये सोनाघाटी की पहाड़ी हमारी धरोहर है, इसको हम बचाएंगे। और उसी पहाड़ी पर गंगा अवतरण अभियान प्रारंभ किया और वहां पर 8,000 से ज्यादा हमने जल संरचनाएं बनाई और उसके बाद फिर 32,000 से ज्यादा उसमें पौधे लगाए, जो परंपरागत पौधे थे उनका संरक्षण किया। आज लाखों की संख्या में उस पहाड़ी पर पौधे फिर से हरे भरे हो रहे हैं। 2-4 साल में फिर से कह सकते हैं सतपुड़ा के घने जंगल ऊंगते अनबने जंगल। तो ये काम हम छोटे छोटे समाज के माध्यम से कर सकते हैं और ये पूरा हजारों लोगों ने अभियान में पूरा अपना योगदान दिया।
1: बहुत अच्छी बात कही है। चूंकि आप साहित्य से भी जुड़े हुए हैं तो आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कृति चतुर्मास, मैं चाहूंगी कि उसके बारे में हमारे श्रोताओं को कुछ बताएं।
0: जी बिल्कुल, चतुर्मास जो है प्रकृति को समर्पित, गांव को समर्पित, हमारी नदियों को लेकर के, परंपरागत जो हमारी पद्धति थी उसको लेकर के कि नदियां कैसे बनती है और लोग पानी का संरक्षण कैसे करते थे और हमारे पूर्वजों की क्या परंपरा थी, उसको लेकर के ही उसमें कुछ कविताएं लिखी है। उस कृति को मध्यप्रदेश की साहित्य अकादमी ने और दुष्यंत कुमार पुरस्कार से भी सम्मानित किया है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। एक प्रकार का एक काव्य संग्रह है जो प्रकृति को समर्पित है।
1: आप जन अभियान परिषद में भी उपाध्यक्ष हैं, भारत भारती शिक्षा संस्थान से भी जुड़े हैं, शासन शिक्षा और समाज सेवा, इन तीनों भूमिकाओं को आप कैसे देखते हैं?
0: जी बिल्कुल, ये एक ही काम है, ये एक प्रकार से सेवा की त्रिवेणी है। जब मैं बैतूल जिले में यह काम कर रहा था, मध्य प्रदेश सरकार को ध्यान में आया होगा कि यह काम पूरे प्रदेश में होना चाहिए और इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद का उपाध्यक्ष बना करके पूरे प्रदेश में काम करने का अवसर दिया है। और पिछली बार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो अभियान है जल गंगा संवर्धन अभियान, उसको लेकर के हमने पूरे प्रदेश में हजारों गांवों में जाकर के इस अभियान को लिया और उनके नेतृत्व में हमने 40 लाख लोगों को जनभागीदारी से इस नेटवर्क से लोगों को जोड़ा। हमने पुरानी 2200 बावड़ियों को स्वच्छ किया, 7,000 कुओं को साफ किया, नदियों के तट स्वच्छ किए और पुरानी जल संरचनाओं को हमने साफ करके समाज के माध्यम से नई जल संरचनाओं का निर्माण किया। अभी पूरे प्रदेश में हमने उसी के माध्यम से 7,000 से ज्यादा बोरी बंधान बना करके वर्षा के जल को रोकने का काम किया है, शिक्षा के माध्यम से और पर्यावरण के माध्यम से और समाज सेवा ग्राम विकास को लेकर के। और ये जो तीनों बातें हुई है, मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकार का काम करने का अवसर दिया है। पहले एक जिला हमारे कार्यक्षेत्र में था, पूरे 55 जिलों का काम उन्होंने दिया।
1: बिल्कुल सर, आपके लिए परिवार और गांव आपके जीवन में क्या महत्व रखते हैं?
0: परिवार तो हमारा मूल आधार है हमारे समाज का। जब तक कुटुंब व्यवस्था हमारे समाज में है तब तक ही हमारी संस्कृति भारतीय संस्कृति का है, हिंदू संस्कृति का है, वो अक्षुण है। क्योंकि हमको जितने संस्कार मिलते हैं सब प्रकार के वो हमारे परिवार में ही मिलते हैं। चाहे जैसे मैंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का, जल का जो मुझे संस्कार मिला वो अपने परिवार के माध्यम से मिला कि घर में शाम के समय आज भी आप देखेंगे तो बड़े बूढ़े जो है वो बच्चा कोई अगर पेड़ को हाथ लगाता है तो पेड़ को हाथ नहीं लगाना, इस प्रकार का करते हैं रात को। तो ये परिवार से ही सारी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे अपनी परंपराओं का निर्वहन करना है। ये कुटुंबी व्यवस्था और ये ग्राम में आधारित जो भारत की व्यवस्था थी कि कैसे एक परिवार की तरह पूरे गांव रहता है, आप देखेंगे प्रत्येक गांव स्वावलंबी था। किसी गांव को केवल नमक खरीदने के लिए गांव के लोग जाते थे, बाकी सारी चीजें गांव में पैदा होती थी, सारे कारीगर गांव में थे। 4 महीने भी अगर गांव के बाहर नहीं जाता तो उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। भारत कृषि प्रधान होने के साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। गांव गांव में किसी न किसी प्रकार के कोई न कोई उद्योग होता था, कहीं पर कोई सामान बनता था, कहीं पर कोई सामान बनता था और उसका विदेशों में जाकर के व्यापार होता था। और इसलिए अंग्रेजों के आने के पहले हमारी जो परिवार व्यवस्था और ग्राम व्यवस्था ये बहुत सुदृढ़ थी सारी दुनिया में। आज फिर से हमको उसी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की आवश्यकता है और इसके लिए जो एक अभियान चला है कि कुटुंब कैसे फिर से सुदृढ़ बने, कैसे संयुक्त परिवार हमारे हो, ताकि ये सारी बातें जो सहज हमको सीखने को मिल जाती थी परिवार में वो आज उसके लिए हमको अलग से प्रशिक्षण देना पड़ रहा है हमारे बच्चों को। पहले सारी चीजें परिवार में सीखने को मिल जाती थी, इसलिए उन गांवों को फिर से सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसके लिए हमने बैतूल जिले का एक बाचा गांव को हमने

0: उस रूप में लिया है, वो जनजाति गांव है। तो एक अच्छा गांव कैसे बन सकता है अपने गांव के लोगों के माध्यम से, तो बादशाह गांव को सोलर ग्राम, जल ग्राम, आज पर्यटन गांव के रूप में गांव के लोगों के सहयोग से एक आदर्श गांव के रूप में उसकी ख्याति हुई है। तो ऐसे गांव हम फिर से बनाए ताकि देश दुनिया हमारे गांव को देखने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, प्राथमिक पाठशाला कहा जाता है परिवार को, तो वाकई घर परिवार से ही सीखे तो बहुत अच्छी बात रहती है। साथ ही सर, जो युवा वर्ग है वो कैसे इस जल संरक्षण पर्यावरण की दिशा में, काफी युवा कुछ बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन जो और जुड़ना चाहते हैं, छोटे छोटे प्रयास क्या कर सकते हैं?
0: बिल्कुल, युवा इस दिशा में अभी पिछले एक दशक से जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आह्वान किया है, तो केस द रेन को लेकर के फिर एक पेड़ माँ के नाम को लेकर, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का और महिलाओं का, मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने नवांकुर सखी जो अभियान चलाया था उसमें हजारों महिलाओं ने उसमें योगदान किया था, और अभी हमने युवा जन अभियान परिषद के माध्यम से जब काम प्रारंभ किया तो उसमें हजारों की संख्या में युवा जुड़ रहे हैं। मैं देखता हूँ कि पहले युवा जो है वो अपना जन्मदिन मनाते थे तो कहीं केक काटते थे, कहीं हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लेकिन आज सोशल मीडिया में देखता हूँ कि अधिकांश युवा अपने जन्मदिन पर कोई पौधा लगाते हैं, कोई वृद्धाश्रम में जाकर के भोजन कराते हैं, या कोई गौशाला में जाकर के गोग्रास देते हैं। तो ये प्रकृति के प्रति हमारे युवा आगे आ रहे हैं, और युवा जो है वो भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, मोदी जी बार बार कहते हैं, और इसलिए युवा जिस दिशा में जाएंगे उधर पूरा समाज जाएगा। और आज हमारा युवा अपनी प्रकृति को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, अपने समाज को लेकर के जागरूक हुआ निश्चित रूप से, और इस दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। हमारे हर अभियान में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी का रहता था तो वो युवाओं का और महिलाओं का ही बड़ी मात्रा में रहा है, और आगे भी युवा इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने स्वरोजगार को लेकर के आगे बढ़े, उद्यमी को लेकर के आगे बढ़े, लेकिन साथ में प्रकृति, पर्यावरण, जल संरक्षण इसको लेकर के भी अपने जीवन का एक भाग इसमें रखें, और जीवन व्यवहार में हमारे प्रकृति और जल संरक्षण ये रहे। छोटे छोटे काम करके हम इस अभियान को आगे बढ़ा सकते हैं। अपने घर में हम पानी का कैसे उपयोग कर सकते हैं, जितना भी बजट हम अपने घर का बनाते हैं तो पानी का भी बजट बनाए कि भी हमारे एक व्यक्ति को 60 लीटर पानी लग रहा चाहिए, 60 से 100 लीटर, उससे ज्यादा उपयोग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आज समाज को, प्रशासन को, सबको जागरूक होने की आवश्यकता है कि हम कैसे अपने भूगर्भ जल को बचा सकते हैं और वर्षा जल को बचा सकते हैं, इसके लिए छोटे छोटे उपाय हम सब लोग मिलकर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल मोहन जी, आपने बहुत ही सुंदर बात कही कि पानी का बजट बनाना पड़ेगा, पानी का सदुपयोग बहुत जरूरी है। मोहन जी, आपके अनुभव और विचार निश्चित रूप से हमारे श्रोताओं को जल संरक्षण और उनके प्रति सोचने के लिए, जरूर कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
0: जी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी मध्य प्रदेश में जल संरक्षण और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री मोहन नागर के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी दीपा सिंह। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

केशरी फिल्म से ये गीत सुनिए, आवाज बी प्राक की है। इस गीत को लिखा है मनोज मुंतशिर ने और संगीत निर्देशन दिया है आर को।

आइए आप सुने स्वदेश फिल्म से ये गीत जिसे आवाज दी है A.R. रहमान ने। जावेद अख्तर की शब्द रचना है और संगीत निर्देशन A.R. रहमान का है।

0: ये गीत आपने सुना स्वदेश फिल्म से। इस गीत में आए हुए व्यवधान के लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोचिंग सेंटर में आग लगने से 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा की। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में प्रीतम केंद्र ने स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब समाचार विस्तार से। लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर एक भीषण आग की घटना में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें ज्यादातर 16 से 18 वर्ष के छात्र थे। अलीगंज के पुरानिया इलाके में एक दुकान के ऊपर चल रहे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई। 4 छात्र घायल हो गए हैं, जिन्हें लखनऊ के KGMC अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
2: आग इमारत में अंदर से लगी और तेजी से फैल गई, जिससे लोग अंदर ही फंस गए। फायर ब्रिगेड, पुलिसकर्मी, SDRF और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और बचाव और राहत अभियान शुरू किया। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की भी कोशिश की। बचाव दल दीवार तोड़कर इमारत में दाखिल हुआ और लोगों को बाहर निकालने में भी कामयाब रहा। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि राज्य के DGP और अपर मुख्य सचिव गृह की उच्च स्तरीय समिति मामले की जांच करेगी।
3: घटना की उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए। प्रमुख सचिव गृह DGP मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना की कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।
4: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट

0: करें जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
1: अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों का अपना दौरा अधूरा छोड़कर लखनऊ लौटे मुख्यमंत्री ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और अस्पताल में घायलों से भी मुलाकात की। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय एक निजी समाचार चैनल के कार्यक्रम ग्रेट पावर इंडिया नेशन फर्स्ट को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
3: निभाया देश के नागरिकों को मैं सलाम करता हूं। साथियों, यहां हमारे साथी सिद्धर बैंबू जी बैठे हैं। जब हमारे उद्यमी नेशन फर्स्ट की भावना के साथ चलते हैं, जब वो देश की आवश्यकताओं को समझते हुए अपने लक्ष्य बनाते हैं, तो संस्थाएं भी बनती हैं और देश भी समृद्ध होता है। सिद्धार्थ बैंबू जी ने क्या काम किया है, शायद यहां बातों में कितना निकला होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अभी मैं फ्रांस में विवाटेक में गया था। करीब 1.5-2 लाख नौजवान वहां होंगे। चलने के लिए भी मैं और फ्रांस के राष्ट्रपति अलग अलग स्टॉल पे जा रहे थे, देखने के लिए भी नौजवानों ने क्या काम किया है। तो हम जोहो के स्टॉल पे गए, मैं हैरान था जी और गर्व होता था कि जोहो के स्टॉल पर यूरोप के नौजवानों की जो भीड़ लगी थी और वो समझना चाहते हैं कि ये क्या है दुनिया में नई चीज। भारत में शायद उतनी चर्चा नहीं होगी जितनी मैंने वहां फ्रांस में देखी।
2: शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
4: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।
5: रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इनमें बागुआपाला बुद्धापंक, हरिदासपुर पारादीप, खुर्दा रोड बलंगीर, नौपाड़ा गुनपुर, लांजीगढ़ रोड जूनागढ़ और बोबिल्ली सालूर शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि इस परियोजना से पूर्वी तट रेलवे द्वारा सेवा प्रदान किए जाने वाले ओडिशा और पड़ोसी क्षेत्रों के प्रमुख खंडों पर यात्री और मालगाड़ी दोनों के संचालन को लाभ होने की उम्मीद है। यह भीड़भाड़ और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मार्गों पर कवच का विस्तार करने के उद्देश्य से जारी रेलवे के अभियान को मजबूती भी प्रदान करेगा। सौम्या की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
2: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है।
6: वित्त मंत्री डॉक्टर शपन दसगुप्ता ने आज 4,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का राज्य बजट प्रस्तुत किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इसे विकसित भारत के साथ विकसित बंगाल के निर्माण का बजट बताया। बजट में राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18% से बढ़ाकर 38% करने की घोषणा की गई। महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में नारी सहायता डेस्क और दुर्गा सुरक्षा क्वाड बनाया जाएगा। दार्जिलिंग और गंगा सागर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। काश्मीर नहार, आकाशवाणी समाचार, कोलकाता।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज मंगोलिया के उलान बतार में मंगोलिया

0: के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले साल श्री उखना की भारत यात्रा ने भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी को मजबूती प्रदान की थी। उन्होंने मुलाकात के दौरान मंगोलिया के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुभकामनाएं दी। इससे पहले दिन में विदेश मंत्री ने उलानबतार में मंगोलिया के विदेश मंत्री बत्सरतेग बचनमुख से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चाओं में भारत मंगोलिया रणनीतिक साझेदारी मजबूती और संभावनाओं पर बात की गई। दोनों नेताओं ने विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, संस्कृति, शिक्षा, सुरक्षा और बहुपक्षीय मंचों में द्विपक्षीय सहयोग की प्रगति की समीक्षा की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल के रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक सेवानिवृत्त मेजर जनरल अमीर बराम से मुलाकात की। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री बराम ने राजनाथ सिंह को दोनों देशों के विशेष रणनीतिक साझेदारी में भारत इसराइल रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए इसराइल की प्रतिबद्धता से अवगत कराया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज 16वीं ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बैठक से इतर नई दिल्ली में ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद के रक्षा मामलों के उपसचिव गादिर निजामीपुर से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों ने पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति की समीक्षा की। श्री डोभाल ने इथियोपिया की राष्ट्रीय खुफिया सुरक्षा सेवा के विश्लेषण कार्यकारी निदेशक मिलियन लेमा तेदेसा से भी मुलाकात की। श्री डोभाल ने ब्राजील के बहुपक्षीय और राजनीतिक मामलों के सचिव कार्लोस कोजेंडे से भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने ब्रिक्स ढांचे के तहत भारत और ब्राजील के बीच सहयोग का स्वागत किया। गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय विकास में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की बहुत बड़ी भूमिका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के आर्थिक विकास में CISF के जवानों का बड़ा योगदान होता है। नई दिल्ली में आज CISF के नए मुख्यालय भवन की आधारशिला रखते हुए उन्होंने ये बात कही। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। श्री शेखावत ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोले की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ नेफेड के नीलामी पोर्टल का शुभारंभ करेंगे। पोर्टल का शुभारंभ नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और सुगम संचालन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बिजली गिरने से 8 लोगों की मृत्यु हो गई और एक दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। मृतकों में CPI के एक नेता, एक वार्ड सदस्य, एक किसान और अन्य निवासी शामिल हैं। घायलों को इलाज के लिए विभिन्न जिलों के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। इस्तीफे का बयान देने से पहले स्टार्मर अपनी पत्नी के साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर निकले, जहां लोगों ने उनका उत्साह के साथ स्वागत किया और तालियां बजाई। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे पद पर बने रहेंगे।
1: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है, जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी का नेता चुन लिया जाए। प्रक्रिया पूरी होने तक मैं प्रधानमंत्री के पद पर बना रहूंगा।
0: कतर के औद्योगिक क्षेत्र रसलाफान में आज हुए विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई।

0: कुछ भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। कतर के ऊर्जा मंत्री साद बिन फ्रीदा अलकाबी ने बताया कि कल शाम बरजान स्थानीय गैस आपूर्ति संयंत्र में विस्फोट के कारण लगी आग में 66 लोग घायल हो गए। जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में आज भारत के प्रीतम केंद्रे ने 10 मीटर एयर राइफल पुरुष स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वहीं 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में महिलाओं और पुरुषों ने कांस्य पदक जीते। प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाजों ने आज अलग अलग स्पर्धाओं में 4 पदक हासिल किए। भारत 5 स्वर्ण 1 रजत और 6 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप जे के मुकाबले में आज अर्जेंटीना ऑस्ट्रिया आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं ग्रुप आई में फ्रांस का सामना इराक से होगा। प्रतियोगिता के अन्य मुकाबलों में मिस्र और स्पेन ने शानदार जीत दर्ज की। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 291 अंक बढ़कर 77,094 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 90 अंक बढ़त के साथ 24,103 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 35 पैसे कमजोर होकर ₹94.68 पर बंद हुआ।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग की घटना में 15 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के साथ ही भरोसेमंद विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। उद्धव ठाकरे गुट वाले शिवसेना के 6 लोकसभा सदस्य शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट में शामिल। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच को मंजूरी दी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की लेबर पार्टी में असंतोष के बाद इस्तीफे की घोषणा। ISSF जूनियर निशानेबाजी विश्व चैंपियनशिप में प्रीतम केंद्रे के स्वर्ण पदक सहित भारतीय निशानेबाजों ने 4 और पदक जीते। तालिका में भारत शीर्ष पर। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: and security. Benchmark domestic equity indices ended nearly 0.4% up today, buoyed by growing optimism over progress in US-Iran talks in Switzerland aimed at ending the months-long conflict in West Asia. We have a report.
1: The Sensex rose to 91 points to close at 77,094, while Nifty jumped 90 points to settle at 24,103. In the forex market today, the rupee depreciated by 35 paise to close at 94 rupees 68 paise against the US dollar. In the Indian bullion market, 24 carat gold was trading 1.2% up at 1,49,360 rupees per 10 grams, while silver was trading 2.3% higher at 2,39,260 rupees per kilogram a short while ago. With Intercarb's report, Lalema Aneja Dang for Akashwani News.
0: On to sports. In shooting, India added four more medals at the ISSF Junior World Championship, including a gold medal by teenager Pritam Kendre at Suhul in Germany, to strengthen its position at the top of the medals tally. India's overall medal tally has now risen to 12, comprising 5 gold, 1 silver and 6 bronze medals. In the FIFA World Cup 2026, Argentina will take on Austria in Group J fixture tonight at Arlington in US. The match will begin at 10:30 p.m. Indian Standard Time. Earlier this morning, Egypt beat New Zealand 3-1 in Vancouver to register their first ever World Cup victory. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Massive fire at Lucknow Coaching Center in Uttar Pradesh claims lives of 15 people. Chief Minister Yogi Adityanath orders high-level inquiry. Prime Minister Narendra Modi says India is world's fastest growing economy and emerging as a reliable global power. Six Lok Sabha MPs from Shiv Sena UBT join Eknath Shinde-led Shiv Sena. Indian Railways approves deployment of automatic train protection system Kavach on 631 route kilometres of East Coast Railway. UK Prime Minister Keir Starmer announces resignation amid turmoil in Labour Party. At ISSF Junior World Championship, Indian shooters add four more medals. And in FIFA World Cup, Argentina to take on Austria in Group J fixture at Arlington tonight. That is all in the news at 9. Good night.
2: Aadab, ye Akashwani hai. Khabron ke saath main Shamim Ahmed. उत्तर प्रदेश में लखनऊ कोचिंग सेंटर में लगी आग के एक बड़े हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिले भरोसा मईशत है और हमारा मुल्क एक काबिले भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। शिवसेना यूबीटी के 6 लोकसभा मेंबरों ने पार्लियामेंट ने एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना में शमूलियत इख्तियार की है। भारतीय रेलवे ने मशरकी साहिली रेलवे के 631 किलोमीटर तवील रास्ते पर ऑटोमेटिक रेलगाड़ी तहफुजाती निजाम कवच शुरू किए जाने की मंजूरी दी है। इंग्लैंड के वजीर आजम कीर स्टार्मर ने लेबर पार्टी में जारी टूट फूट के दौरान इस्तीफा दे दिया है। ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने प्रीतम केंद्रे के हासिल करदा सोने के एक तमगे समेत 4 मजीद तमगे जीत कर फहरिस्त में आला मकाम हासिल कर लिया है और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अर्जेंटीना का मुकाबला ऑस्ट्रिया से होगा। अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ के अलीगंज इलाके में आग लगने के एक अलमनाक हादसे में 15 अफराद की जानें तलफ हुई हैं, जिनमें से ज्यादातर की उम्र 16 से 25 बरस के दरमियान थी और ये तालिब इल्म थे। यह हादसा आज से पहर उस वक्त पेश आया जब अलीगंज में पुरानिया इलाके की एक दुकान के ऊपर वाके एक एनिमेशन कोचिंग सेंटर में आग लग गई, जिसके सबब तलबा में बेचैनी पैदा हो गई। 6 तालिब इल्मों को KGMC लखनऊ में दाखिल कराया गया है। ज्यादातर अमवात घुटन के सबब हुई। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: बताया जा रहा है कि ये आग इंस्टीट्यूट की इमारत के अंदर लगी और तेजी के साथ फैल गई और लोग अंदर फंसे रह गए। ये एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था जहां कोचिंग सेंटर, गेम जोन और शोरूम थे। आग बुझाने वाले अमले की टीमें, पुलिस अहलकार और जिला इंतजामिया के अफसरान जाए हादसा पर पहुंचे और राहत और बचाव की कार्रवाई शुरू की। कुछ लोगों ने पहली मंजिल से कूदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की। आग बुझाने वाले अमले के अफराद ने दीवार को तोड़कर और इमारत में दाखिल होकर लोगों को बचाया।

0: मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला ब्रिजेश पाठक ने कहा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पर मुश्तमिल आला सतह की एक टीम इस मामले की तहकीकात करेगी और आग लगने की वजह का तयन करेगी, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मुस्तकबिल में इस तरह के अलमनाक हादसे न हों।
1: घटना के उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए हैं। प्रमुख सचिव गृह डीजीपी मौके पर बुलाया गया है और उनको निर्देश दिए हैं कि घटना के कारणों की जांच और घटना कैसे घटी, भविष्य में न घटे, इसके कड़ी कार्रवाई करें।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार लोगों को बख्शा नहीं जाएगा।
2: मैं उन सभी परिजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिवार के उन नौजवानों को खोया है, उनके प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। और इस पूरे मामले के लिए मैंने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक और अपर मुख्य सचिव गृह को भी कहा है कि वे स्वयं मौके पे जाकर के इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करें, जिससे इस पूरे मामले की तह में हम जाकर के दोषियों को सजा दे सकें।
0: वो अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों के अपने दौरों को बीच में ही छोड़कर लखनऊ वापस आ गए। उन्होंने जाए हादसे का मुआयना किया और अस्पताल में जख्मियों से भी मुलाकात की। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
3: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में वफात पाने वाले अफराद के तई अफसोस का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने महलुकीन के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी रिलीफ फंड से 2-2 लाख रुपये मुआवजे का ऐलान किया है। जख्मियों को 50,000 रुपये दिए जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत एक तेजी से उभरती हुई और काबिल भरोसा मईशत है और ये एक काबिल भरोसा आलमी पावर के तौर पर भी उभर रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में कई स्कीमें मुल्क को अव्वलियत देने के मकसद के साथ शुरू की गईं। जनाब मोदी ने नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही।
4: भारत जो कर रहा है वो आने वाले 1000 वर्ष का फ्यूचर लिखने वाला है और यही दुनिया के लिए सबसे बड़ी भारत की गारंटी है। भारत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है, एक क्रेडिबल इकोनॉमी भी है।
3: शिवसेना लीडर और महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने आज शिवसेना यूबीटी ग्रुप के 6 लोकसभा मेंबराने पार्लियामेंट की उनकी पार्टी में शमूलियत का ऐलान किया। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब शिंदे ने मेंबराने पार्लियामेंट संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, संजय जाधव, भाव साहब वागचोरे, नागेश पाटिल अष्टिकर और ओम प्रकाश निम्बलकर की शिवसेना में शमूलियत का खैर मकदम किया। जनाब शिंदे ने कहा कि इन 6 मेंबराने पार्लियामेंट की शमूलियत उस तहरीक के दूसरे मरहले की अलामत है जिसका आगाज जून 2022 में उस वक्त हुआ था जब शिवसेना के 40 मेंबराने असेंबली ने बगावत की थी। उन्होंने कहा कि इस बगावत का मकसद शिवसेना के बानी बाला साहब ठाकरे के नजरियात को महफूज रखना और पार्टी के हिंदुत्व के उसूलों का तहफ्फुज करना था।
5: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
3: वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई आलात बरामद कर रहा है और वो इस शोबे में खुद कफील बनता जा रहा है। नई दिल्ली में आज एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर दिफा ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मुल्क की मुसल्ला अफवाज ने सिर्फ उन्हीं को निशाना बनाया जो भारतीय शहरियों की हलाकत के जिम्मेदार थे। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत एक बाख्तियार भारत की तामीर के तई पुरअज़्म है और ये काम सलाहियतों और सकाफत दोनों पर जोर देकर ही मुमकिन है। इस मौके पर जनाब सिंह ने ताकीदन कहा कि हजारों बरस से मुल्क की सकाफत इंसानियत को रास्ता दिखाती रही है। उन्होंने भारतीय संतों की सताइश की कि उन्होंने शहरियों के माबैन कौमियत के जज्बात को बेदार किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में इसराइल की वजारत दिफा में डायरेक्टर जनरल रिटायर्ड मेजर जनरल अमीर बारम से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में वजारत दिफा ने बताया कि जनाब बारम ने जनाब सिंह को भारत इसराइल खसूसी कलीदी शराकत दारी के मजमू दायरा कार के तहत भारत इसराइल दिफाई तआवुन को वसत देने के तई इसराइल के अज़्म से वाकिफ कराया।

ये गज़ल आपने चित्रा सिंह की आवाज़ में सुनी, और अगली गज़ल हम लेकर आए हैं शोभा मुद्गल की गाई हुई। तो लीजिए सुनिए शोभा मुद्गल की गाई ये गज़ल। लोगों की बातों से ना कर मेरे किरदार का फैसला, तेरी उम्र गुजर जाएगी मेरी हकीकत तलाशने में।

अजमे अगली गजल। ये इश्क मोहब्बत की रिवायत भी अजीब है, पाया नहीं है जिसको, उसे खोना भी नहीं चाहते।

हरिहरन की आवाज़ में इस गज़ल को आपने सुना और इस कार्यक्रम का की आखिरी गज़ल हम आपको सुनवा रहे हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली सिंह की आवाज़ में। किरदार की अजमत को गिरने न दिया हमने, धोखे तो बहुत खाए लेकिन धोखा न दिया हमने।

मालूम है कि ख्वाब झूठे हैं और ख्वाहिशें अधूरी हैं, पर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी हैं। भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह की गाई इसी गजल के साथ अंजुमन कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलो हर्ट्स। न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपसे मिलिए। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर से आशुतोष की बातचीत।

0: आपसे मिलिए कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो मित्र आशुतोष का नमस्कार। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वो शख्स जिन्होंने कालाजार जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे मरीजों को आशा की नई किरण और उम्मीदों की नई रोशनी दी है, और जिनकी इस उपलब्धि के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2026 के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, हम बातें कर रहे हैं पद्मश्री डॉक्टर श्याम सुंदर जी की। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। ये सम्मान सिर्फ आपका सम्मान नहीं, बल्कि हर उस माँ का सम्मान है जिसका बच्चा कालाजार की गंभीर बीमारी से जूझ रहा था और जिसे आपके इस नए प्रयोग से आराम मिला।
1: धन्यवाद। धन्यवाद
0: सर। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि जब पद्मश्री सम्मान प्राप्त होने की खबर आपको मिली तो वो खबर किसने दी और उस वक्त आप क्या कर रहे थे?
1: करीब सुबह 9 बजे का समय था और 25 जनवरी में ज्वाइंट सेक्रेटरी साहब का फोन आया, शायद
0: जी
1: मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। तो 9 बजे तो हम लोग अपना काम धंधा शुरू करते हैं
0: जी।
1: तो अच्छा लगा सुनकर।
0: सर, पद्मश्री सम्मान जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा सम्मान होता है, जिसे प्राप्त करना निश्चित रूप से गौरव का विषय है, तो जब ये सूचना आप लोग को मिली तो परिवार का माहौल कैसा
1: था? बहुत अच्छा था परिवार का माहौल, और कुछ एक दो दिनों से आभास हो रहा था हम लोगों को, तो बहुत मतलब अचानक नहीं, लेकिन ये लग रहा था कि ऐसी खबर आएगी, तो बहुत सब लोग बहुत खुश हुए। और मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ।
0: अच्छा अच्छा।
1: वो भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर निशा रानी अग्रवाल।
0: अच्छा।
1: हमारे बच्चे यूएस

0: यूएसए में है।
1: अच्छा,
0: दोनों दोनों दो बेटियां हैं, दोनों यूएसए में है। तो सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत हर्षित हुए।
1: सर ये बहुत ही रोमांचक अनुभव होता है। और अब हम शुरुआत करते हैं आपके शुरुआती दिनों से, कुछ उन दिनों के बारे में बताएं जब आप एक छात्र हुआ करते थे। आपके परिवार में कौन थे, उसका माहौल कैसा था?
0: देखिए, हम एक मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से आते थे। हमारा बहुत ही साधारण परिवार था और हमारे माता पिता, हमारे पिताजी का व्यापार था।
1: अच्छा,
0: लेकिन उनको बहुत शौक था कि पढ़ाएं हम अपने बच्चों को
1: जी,
0: क्योंकि उन्होंने, उनको बचपन में उनके जो भी रिश्तेदार रहे, माँ बाप तो उनके उतने उनके साथ नहीं थे। टेंथ क्लास उस समय शायद होता था, मैट्रिक जिसको बोलते हैं
1: जी जी जी,
0: उसका फॉर्म नहीं भरने दिया। तो मेरे ख्याल से उनको एक जुनून था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं। हम लोग 9 भाई बहन थे, 7 भाई 2 बहनें।
1: वाह,
0: जैसा मैंने बताया कि हम लोग का आर्थिक स्थिति में बहुत साधारण सी थी
1: जी।
0: उन सातों में हम 3 डॉक्टर हैं।
1: वाह,
0: एक मैं हूं, एक मेरा भाई नासिक में है, बहुत उसकी भी बहुत अच्छी स्थिति है, और एक मेरा भाई लंदन में है, वो कार्डियोलॉजिस्ट है
1: जी।
0: तो बाकी भाई भी सब अच्छा कर रहे हैं। तो पढ़ने का हमारे पिताजी को बहुत शौक था, पढ़ाने का सबको
1: जी जी।
0: और आपको क्या कहें, मैं ये कहूंगा कि हमारे सर पे सवार रहते थे कि सब लोग पढ़ जाएं किसी तरह से। तो सबको उन्होंने पढ़ाया और फिर हम लोग की प्रतिभा अपने जिसके जैसी थी वो निखर के आई। तो यही बात।
1: सर, डॉक्टर की पढ़ाई कभी भी आसान नहीं थी, और 9 भाई बहनों में पढ़ाना लिखाना और 3-3 डॉक्टर बनाना, ऐसी अदम्य जिजीविषा की जो स्थिति आपके माता पिता की थी, उनको प्रणाम करते हुए हम कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में कुछ बताएं, कहां पर आपका जन्म हुआ, कहां शिक्षा दीक्षा हुई?
0: मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से शहर मुजफ्फरपुर में हुआ। अब वो छोटा नहीं रहा हालांकि
1: जी जी,
0: लेकिन और वहीं पे मेरा जो स्कूलिंग, थोड़े अच्छे स्कूल में थे, फिर एक साधारण स्कूल में आ गए
1: जी जी,
0: 6-7 तक, फिर एक और अच्छे स्कूल में जहां कॉम्पिटिटिव था, जिला स्कूल जिसको हम लोग बोलते थे, तो उसमें मेरा एडमिशन हो गया। 9th-10th फिर हमने किसी तीसरे स्कूल से किया
1: जी।
0: तो इसी तरह से चलता रहा। मुजफ्फरपुर में मेरी स्कूलिंग हुई है सारी।
1: अच्छा अच्छा,
0: हाँ। और फिर हम 1972 में हमने यहाँ बीएचयू का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया, और बिहार का भी दिया था।
1: अच्छा अच्छा,
0: बिहार में भी मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट दिया था, तो दोनों जगह सिलेक्शन हो गया मेरा। तो हालांकि मेरा तो मन नहीं था यहाँ पढ़ने का, मैं तो वापिस अपना, यहाँ का रिजल्ट पहले आ गया था और बिहार का रिजल्ट
1: बाद में आया।
0: तो हम तो अपना सामान वान लेके पहुंच गए थे घर वापिस
1: जी जी।
0: लेकिन हमारे पिताजी ने कहा तुरंत जाओ तुम भाग के वापिस। और मेरे ख्याल से उन्होंने बड़े दूरदर्शी रहे होंगे वो।
1: तो सर, ये डॉक्टर बनने का विचार कब आया, कैसे आया?
0: ये मुझे नहीं आया विचार
1: जी,
0: मेरे पिताजी को आया। उन्होंने, वो तो व्यापारी थे ना, तो उन्होंने कहा देखो ये बिना पूंजी का व्यापार है। आज हमको याद आती है उनकी बहुत ज्यादा, हमारे पिताजी का सबसे बड़ा योगदान है मेरे डॉक्टर बनने में।
1: सर, डॉक्टर जब आप करना शुरू किए एमबीबीएस की पढ़ाई, तो कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी याद जो आप हमारे श्रोताओं के साथ साझा करना चाहें?
0: याद तो बहुत सारी हैं। सबसे बड़ी बात है कि मुझे अपनी धर्मपत्नी यहां मिली।
1: अच्छा, तो थोड़ा सा वो किस्सा हमारे श्रोताओं के साथ साझा करें।
0: नहीं, क्या हम लोग एक ही क्लास में थे, वो भी 72 बैच की थी।
1: अच्छा,
0: और धीरे धीरे बातचीत हो गई, आत्मीयता बढ़ी, और फिर अल्टीमेटली हम लोग की शादी हुई
1: जी
0: 1977 में।
1: सर, कालाजार पर हम लोग आते हैं विषय पे, आपका विशेष कार्य रहा है और उसी के लिए आपको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो यह कालाजार पर ही मुझे काम करना है, ये कैसे आपके मन में आया? कोई खास घटना हुई या कुछ ऐसा जिसने आपको उद्वेलित किया?
0: बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली मुजफ्फरपुर को आप कालाजार की राजधानी कह सकते हैं।
1: अच्छा, तत्कालीन।
0: हाँ, मतलब इतने ज्यादा वहां केसेस थे
1: जी,
0: और उस एरिया में, मतलब नॉर्थ बिहार में बहुत ज्यादा भयंकर रूप से ये था। और उसके बाद फिर कुछ केसेस ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी, देवरिया, बनारस, गाजीपुर, बलिया, यहां केसेस होते थे। वेस्ट बंगाल में
1: जी।

0: पश्चिमी बंगाल में केसेस होते थे काफी, झारखंड उस समय बिहार में ही था, झारखंड में बहुत सारे केसेस होते थे और स्थिति बड़ी दयनीय थी, मतलब कोई पॉजिटिव बात थी ही नहीं
1: जी।
0: और जब मैंने एमडी 81 में 1981 में मेडिसिन में किया, ये बीएचयू से ही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और फिर चूंकि हालांकि मैं अपने दिल में कार्डियोलॉजिस्ट बनना चाहता था क्योंकि उस जमाने में बड़ा ग्लैमर था कार्डियोलॉजिस्ट का, हर फिजिशियन अपने नाम के आगे लिखना चाहता था फिजिशियन एवं कार्डियोलॉजिस्ट, तो मेरी भी इच्छा यही थी और एमडी में मेरी थीसिस भी वही थी। लेकिन जय संजोग की बात है कि जैसे ही मैंने एमडी पास किया उसके 15 दिन के अंदर ही मुझे यहां उस समय लेक्चरर या प्रवक्ता की नौकरी मिल गई बीएचयू में ही।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ, 2 या 3 हफ्ते बाद।
1: अच्छा।
0: तो फिर हमने इनिशियली 2-3 साल कार्डियोलॉजी में कुछ कुछ काम किया, जो मुझे बार बार जब मैं घर जाता था तो बार बार वो चीजें हमारे जहन में आती थी, क्योंकि देखिए 1972 में कालाजार का, 1950 के आसपास, 50 के दशक में कालाजार का करीब भारत से खात्मा हो गया था, लेकिन फिर पहला जो दोबारा भी हुआ जब, मतलब समझिए 60 और 72 के बीच में।
1: अच्छा अच्छा। दोबारा इसका प्रकोप हुआ।
0: दोबारा प्रकोप हुआ
1: जी।
0: तो 72 में कुछ खबरें आई, उसी साल जिस साल मेरा एडमिशन हुआ था एमबीबीएस में
1: जी,
0: तो हमने कोई केस देखा भी नहीं था एमबीबीएस में कालाजार का। जब हम यहाँ पे एमडी करने लगे तब इक्का दुक्का केसेस आने लगे, लेकिन जब घर जाते थे तो वहां के लोकल अखबारों में बहुत खबरें होती थी और अधिकतर बुरी खबरें होती थी
1: जी।
0: ये मुझे हमेशा कचोटता रहता था कि इसका, इसके मतलब इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर कुछ ऐसी घटनाएं हुई
1: जी,
0: एक दो घटनाएं मैं आपको बता देता हूं। जैसे एक हमने रामनगर के ही सरदार जी थे, तो हमारे टीचर जिनके साथ मैं फिर एज ए लेक्चर भी काम करने के लिए जुड़ गया था, ये मैं आपको mid-80s की बात बता रहा हूँ, मतलब 85-86 के आसपास। अब उनको 4-5 महीने से बुखार था और फिर मैंने देखा और मुझे लगा कि, फिर मैंने डॉक्टर वीपी सिंह से, मेरे जो बॉस थे उस समय, उनसे मैंने कहा कि सर मुझे ये ऐसा लगता है कालाजार हो सकता है इसको। उस समय कालाजार बहुत कम होता था
1: जी,
0: उस समय नहीं था, बिहार में ही ज्यादा था उस समय। फिर मैंने पहचान के लिए जो भी करना होता है स्प्लीनिक, उस समय स्प्लीन हो पिलही जिसको बोलते हैं
1: जी जी,
0: उसमें से टिश्यू निकाल के सुई द्वारा, वो खतरनाक पद्धति है, अब खत्म हो गई, अब कोई नहीं करता उसको।
1: अच्छा,
0: तो वो कालाजार निकल आया इतने जगह, इतने 4-5 महीनों से। उसके बाद एक और बताता हूं घटना कि हमारे ही 2 साल सीनियर
1: जी,
0: यही बीएचयू के प्रोफेसर, एक दिन मेरे पास फोन आया कि श्याम सुंदर तुम आजा मुझे देख लो। तो मैं चूंकि मेरे सीनियर थे तो मैं उनके घर गया, उनको देखा भी, नरिया पे न्यू मेडिकल इंक्लेव में वो रहते थे
1: जी।
0: उन्होंने बताया कि मुझे 6-7 महीने से बुखार है, मैं बॉम्बे घुमाया, फिर दिल्ली में गया तो उन्होंने कुछ और बताया, तो उनको ये विश्वास हो गया था कि वो जिंदा नहीं बचेंगे। तो फिर मैंने उनको देखा तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो लगता है कि आपको हो सकता है कालाजार हो, तो मैं आपका स्प्लेनिक एस्पिरेशन करना चाहूंगा, वही पिलही से
1: जी, जी।
0: और उस समय डरावना ये होता था और मैंने भी यहीं से सीखा था, मुझे, मैंने पढ़ पढ़ के सीखा था क्योंकि सिखाने वाला कोई होता है, किसी ने किया ही नहीं था, तो वो पहली बार ही मुझे करना था। मैं उस स्लाइड्स लेके और फिर अपने, हमारे एक और पैथोलॉजी के बहुत ही प्रतिष्ठित शिक्षक थे, हमारे भी गुरु थे
1: जी,
0: प्रोफेसर ब्रह्मानंद दुबे, अभी भी हैं लखनऊ में हैं वो
1: जी।
0: तो उनको मैंने स्लाइड दिखाई
1: जी
0: और कुछ बताया नहीं, तो उन्होंने उसको कहा कि हाँ ये है
1: जी।
0: तो उनको फिर ट्रीटमेंट शुरू किया मैंने, और उनको, उनका एक स्पेशल रिक्वेस्ट था कि मुझे घर पे आके तुमको लगाना पड़ेगा, तुम ही इंजेक्शन लगाओगे। उस समय इंजेक्शन दिया जाता था
1: जी,
0: 8-10 ml इंजेक्शन रोज, तो 1 महीने तक दिया, वो ठीक हो गए। तो ये भी बहुत एक, आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक मेरे लिए अवार्ड था
1: जी जी जी,
0: कि हमारे एक अपने कलीग जो सोच रहे थे कि अब जिंदा नहीं बचेंगे, उनको नई जिंदगी मिल गई
1: जी।
0: फिर मेरे मन में आया कि मुझे इसी काम पे काम करना है,
1: वहीं से आपको प्रेरणा मिली सरकारी।

0: कार्यक्रम में आगे चलने के पहले हम एक बार अपने श्रोताओं के लिए जानना चाहेंगे कालाजार आखिर है क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे श्रोता जो इसको नहीं जानते, कैसे होता है, इसके क्या लक्षण है, थोड़ा उस विषय में भी जानकारी दें।
1: कालाजार एक कीट जनित रोग है, जैसे मलेरिया होता है, फाइलेरिया होता है, वैसे कालाजार होता है।
0: अच्छा,
1: उसमें सैंड फ्लाई बोलते हैं, बालू मक्खी।
0: जी,
1: बालू मक्खी वो काटती है मरीज को, उससे वो उसके कीटाणु लेती है, उसको कीटाणु को बोलते हैं लिशमेनिया डोनोवानी, और उसको लेके और फिर स्वस्थ आदमी को वो काटती है, उसमें डाल देती है स्वस्थ आदमी को। इसी तरह से ये फैलता है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो आपने लक्षण पूछा
0: जी,
1: तो बुखार आता है, काफी जाड़ा देके बुखार आता है।
0: अच्छा,
1: पिलही बढ़ जाती है, स्प्लीन जिसको बोलते हैं, और शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। रक्त के जितने अंग होते हैं, सफेद कोशिकाएं या प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन, सब कम हो जाता है। तो ये एक बहुत ही लक्षण होता है कि इसको मतलब आप कह सकते हैं कि 90% कालाजार होगा।
0: अच्छा, मतलब इस तरह की यदि चीजें आपके शरीर में हो रही हैं, आपको लग रहा है, तो आपको इसके लिए सावधान हो जाना
1: चाहिए। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल हो जाना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये अच्छी या बुरी जो भी कहिए, मेरे ख्याल से मुझे अच्छी बात नहीं बोलना चाहिए कि ये गांव में ज्यादा होती है।
0: सर, ये सैंड फ्लाई होता है, ये थोड़ा सा इसके बारे में भी बताएं।
1: सैंड फ्लाई एक तरह का, आप एक तरह का मच्छर होता है।
0: अच्छा,
1: चौथाई जो मच्छर थे
0: जी,
1: जो बाकी जो मच्छर होते हैं, फ्लेबोटोमास अर्जेंटिपस इसको बोलते हैं, एक चौथाई साइज का होता है, छोटा होता है।
0: अच्छा,
1: झोपड़ियों में या जहां फूस के घर होते
0: जी,
1: हैं ना,
0: जी, जी, जी, जी,
1: या कच्चे वो मिट्टी के घर होते हैं, उनमें क्रैक्स हो जाते हैं
0: जी,
1: तो उन क्रैक्स में जाके वो रहती है और वो काटती रहती है पेशेंट अपना, और फैलाती रहती है रोग को।
0: तो सर, अब हम आते हैं आपके एक शोध कार्य पर, आपने बहुत लंबा शोध किया, तो अब आपका शोध क्या हुआ, अपने शोध के बारे में?
1: नहीं नहीं, मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी पहला चीज तो पहले कालाजार का निदान होने में, जैसा मैंने आपसे बताया
0: जी,
1: कि बहुत मुश्किल था, पिलही से लेना पड़ता था, खतरनाक था, जानलेवा भी हो सकता था, 4-5% लोग मर जाते थे सिर्फ जांच में ही, और जांच इसका रिजल्ट आने में भी 2-3 हफ्ते लग जाते थे। उसको कराना भी महंगा भी था उस जमाने में, 300-200-300, आप 1972 की बात सोचिए या 72 के दशक की बात सोचिए, 200-300 रुपए की बहुत कीमत थी उस समय।
0: बिल्कुल,
1: और एक वो गरीबों का रोग है ये, मोर देन 95%, 95% से ज्यादा मरीज 2 जून की रोटी नहीं खा पाते हैं, इस रोग के रोगी जो होते हैं उनके परिवार को, तो बहुत गरीबों का ये रोग है। और मैं समझता हूं कि एक बहुत मतलब दयनीय स्थिति थी पहली बात
0: जी,
1: तो उसमें हम लोगों ने 1998 में शोध प्रकाशित किया था लैंसेट पत्रिका में, वर्ल्ड की बेस्ट मेडिकल पत्रिका है। उसमें हम लोगों ने दिखाया कि 10 मिनट में फिंगर प्रिक्स, खून, एक बूंद खून से हम उसकी डायग्नोसिस 10 मिनट में कर लेते थे।
0: अच्छा,
1: हाँ, तो ये एक बड़ा आयाम बदल गया डायग्नोसिस का। जो उसका
0: जहां 3 हफ्ता लगता था, वहां 10 मिनट
1: में डायग्नो,
0: बहुत बड़ा परिवर्तन।
1: और वो जहां 400-500 रुपया लगता था
0: जी,
1: ये जब जिस आई तो अल्टीमेटली फ्री हो गई, तो उसके उस समय भी अगर बाजार से खरीदने जाते तो 50 रुपये में 10 मिनट में डायग्नोसिस हो जाती थी। उसका सबसे बड़ा मतलब फायदा क्या हुआ कि जो 3 हफ्ते तक जो पेशेंट लेके उस रोग को घूम रहा था, वो फैला भी रहा था, तो उसको भी आपने कट ऑफ कर दिया 10 मिनट में डायग्नोज करके, और फिर उसको बता दिया तुमको ये रोग है, ये बीमारी, ये इलाज आपको।
0: मतलब सर, ये फैलने वाली बीमारी है, छुआछूत की?
1: नहीं, छुआछूत की नहीं है ये।
0: अच्छा,
1: लेकिन वो मच्छर बालू मक्खी फैलाती है ना इसको, अगर आपको है रोग, आप लेके घूम रहे हैं उसको
0: जी, जी।
1: 3 हफ्ते तक तो आप बालू मक्खी को तो आप अलग कर नहीं सकते, वो तो रहेगी, आप काटेगी और फिर दूसरे को काटेगी जिसको नहीं है रोग, ठीक है। तो एक ये चेंज हुआ। मैं आपको 3 इम्पोर्टेंट चेंज बताऊंगा, बाकी तो वैसे मैंने 40 साल इस पर काम किया है इस बीमारी पे। तो दूसरा जो हुआ कि जो दवा थी उस समय सोडियम एंटीमनी ग्लूकोनेट, स्टीबानेट भी बोलते थे उसको, इस दवाओं से 1 महीने देना पड़ता था इंजेक्शन, और करीब 8-10% लोग मर जाते थे सिर्फ दवा से।
0: अच्छा,
1: हाँ, दवा से, तो और 1 महीने दवा देनी होती थी। और जब 90 का दशक के आखिरी में करीब करीब सिर्फ 1/3 मरीज से ठीक होते थे, 35-36% क्योर रेट था, तो हम लोग दवा की खोज में जुट गए
0: जी।
1: बहुत सारे बहुत जगह सफर

0: सफलताएं मिली। अल्टीमेटली हम लोगों को सफलता मिली 95-96 के मध्य में, जैसे मुंह से खाने वाली गोली हम लोगों ने उसको खोजा और उसको एक महीना देने से 94% रोगी ठीक हो जाते। तो फिर एक ये बहुत मतलब कहां आप देखिए इंजेक्शन लगवाना एक महीने गांव में गांव का मरीज, अब क्या था कि आपको गोली लेनी है मुंह से तो एक महीने। तो दूसरा ये एक महत्वपूर्ण अध्याय मेरी जिंदगी का ये है, और उसमें सबसे ज्यादा ये हुआ कि सरकार जो भारत सरकार, बांग्लादेश की सरकार और नेपाल की सरकार, इन तीनों देशों में काफी था, भारत में सबसे ज्यादा था।
1: अच्छा,
0: तो एक प्रोग्राम बनाया कि कालाजार का उन्मूलन किया जाए।
1: जी,
0: इसको बोलते हैं कालाजार एलिमिनेशन प्रोग्राम, KEP।
1: अच्छा,
0: तो ये 2005 में शुरू हुआ।
1: जी,
0: तो उसमें वही डायग्नोसिस 10 मिनट में
1: जी,
0: और ट्रीटमेंट मुंह से खाने वाला दवाई
1: गोली।
0: हाँ, गोली
1: जी।
0: तो ये चलता रहा, इसी बीच हमारी एक इच्छा थी और हम करीब करीब समझिए आप 90 के दशक आखिरी हिस्से से लेकर काम कर रहे थे कि हम एक डोज से हम ठीक कर दें पेशेंट को।
1: अच्छा, मतलब जो दवा हमें एक महीने तक खानी हो रही है
0: जी,
1: वह भी आप चाहते थे कि कुछ ऐसा करें कि एक डोज में ही काम हो जाए एक खुराक में।
0: तो इसमें हम सक्सेसफुल इनिशियली नहीं हुए, फिर 2001 में फिर हमारा एक शोध प्रकाशित हुआ ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में, वो भी विश्व की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है मेडिसिन की
1: जी,
0: जिसमें हमने दिखाया कि एक पेशेंट को 5 मिलीग्राम डोज की एक दवा आती है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, एक इंजेक्शन से, और वही दवा उतनी ही दवा 5 मिलीग्राम/किलो 5 दिन में दी हम लोगों ने, और बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन 91% पेशेंट फिर भी ठीक हो गए। और लक्ष्य होता है कि 95% से ऊपर ही कम से कम आपका ट्रीटमेंट होना चाहिए एक्सेप्टेबिलिटी के लिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: और दवा बहुत महंगी भी थी वो।
1: अच्छा,
0: उस जमाने में एक वायल 50 मिलीग्राम की 12,000 रूपये की आती थी, 50 किलो, तो आप समझ लीजिए आप
1: जी,
0: अगर 5 मिलीग्राम भी देना है 50 किलो का मरीज है
1: जी, जी,
0: तो 60-70 हजार रूपये उसके लग जाएंगे। और फिर 7.5 मिलीग्राम यूज किया हम लोगों ने 5 के बजाय एक सिंगल डोज, वो भी 4 सेंटर पे हुआ, उसमें भी सफलता नहीं मिली, 90% ही सफलता मिली। फिर हमने सोचा कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकते, एक तो इतनी महंगी दवा है, तो फिर हम और मिश्रण करके दवाओं का उसमें हम जाना नहीं चाहेंगे। फिर क्या हुआ, WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कंपनी बनाती थी
1: जी
0: इस दवा को, एम्बिसोम बोलते थे, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी, वो अमेरिका की कंपनी बनाती थी, तो WHO ने उनके साथ उनको हमारा ही डाटा दिखा के और उनको मना लिया कि वो 8% पे दवा बेचेंगे भारत
1: जी,
0: में
1: जी जी,
0: तो $16 हो गई, $200 से $16 हो गई। तो एक फिर नई आशा की किरण जगी, तो हमने फिर उस पर काम चालू कर दिया।
1: अच्छा,
0: तो 2010 में हमने ये प्रकाशित किया न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, अगेन वर्ल्ड का टॉप मोस्ट जर्नल है मेडिसिन का
1: जी जी।
0: तो उसमें हमने दिखाया कि 10 मिलीग्राम/किलो एक पेशेंट को एक डोज देने से 95.6% पेशेंट ठीक हो जाए। दुनिया में हम पहले आदमी थे जिसने प्रकाशित किया था, इसको बताया था कि ये सब सफलताएं थी।
1: कुल कितना लंबा समय रहा?
0: आप 1987 से जोड़ लीजिए आज,
1: 87 से,
0: हाँ,
1: करीब 40 वर्ष,
0: अगले साल हो जाएंगे
1: जी। तो सर, ये अकेले का काम था या टीम वर्क था?
0: नहीं, देखिए कोई काम अकेले नहीं होता है
1: जी,
0: अकेले कोई, हमारे हमेशा हमारे रेजिडेंट्स रहे, हम और हमारे जो वर्कर्स थे वो रहे, और हमने मुजफ्फरपुर में एक सेंटर खोला, मुजफ्फरपुर में
1: जी जी,
0: शुरू में 10 बेड का वो सेंटर था, हम उसमें फ्री हर चीज देते थे
1: जी,
0: हमारे परिवार वालों ने और हमारे दोस्तों ने मिलकर एक संस्था बनाई, और आज भी वो चल रहा है सेंटर, आज भी हम इलाज कर रहे हैं। कालाजार तो करीब करीब खत्म हो गया, उन्मूलन हो गया, 2023 से 2024 के बीच में भारत, नेपाल और बांग्लादेश सबसे कालाजार का वो है कि सर्टिफिकेशन वगैरह वो तो चलता रहता है, उसका भी कार्रवाई।
1: खुशी की बात है, अच्छी बात है कि कालाजार मुक्त भारत अब घोषित किया जा चुका है।
0: हाँ हाँ, हो जाएगा, मतलब घोषित तो सरकार की तरफ से हो गया है।
1: सर, यहाँ पर हम अपने श्रोताओं के लिए आपकी पसंद का कोई एक गीत सुनवा सकते हैं?
0: बिल्कुल सुनवाइए।
1: कोई गीत आप बताएं हमारे श्रोताओं को।
0: अब हमें तो कोई भी देशभक्ति का गीत

0: सर बहुत सुदीर्घ अनुभव आपका रहा है इस फील्ड में, हम अपने श्रोताओं के लिए आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसी चीजें जो हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव डालती हैं लेकिन हम शुरुआती दिनों में उन्हें इग्नोर करते हैं।
1: एक तो व्यायाम, हमारे भारतवर्ष में व्यायाम की बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी नहीं है आम जनता में, आप देखें तो व्यायाम अपने आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है
0: जी।
1: और कम से कम मैं तो यही राय दूंगा कि दिन में एक घंटा जरूर व्यायाम करें, और सिर्फ योगा ही ना करें, दौड़ना, साइकिल चलाना, इस तरह के भी व्यायाम करें। आप मान लीजिए 15 मिनट योगा कर रहे हैं तो 45 मिनट चलें, दौड़ें, एक बहुत बड़ी चीज है। फिर आहार विहार, आहार को अपने सुधारें, और जिससे कि आपका आहार अगर खराब होगा तो और आहार जनित बिना, एक तो आहार हो गया, और फिर यह है कि हमेशा जो है शरीर पे ध्यान रखें कि वजन ना बढ़े,
0: वजन न बढ़े, मतलब आहार विहार व्यायाम और वजन पर अगर हम नियंत्रण रखते हैं तो मोस्टली स्वस्थ रहेंगे। सर एक बहुत ट्रेंड आजकल चल रहा है सोशल मीडिया पर, बहुत तरह के टिप्स हेल्थ को लेकर दिए जा रहे हैं, ये कितने हद तक सही है? ज्यादातर लोग उन टिप्स को फॉलो करके सोचते हैं कि हम सही हो जाएंगे, तो क्या ये जो प्रथा है इस विषय में क्या कहेंगे?
1: देखिए कोई भी मीडिया अगर है तो उससे आप लाभ और हानि दोनों उठा सकते हैं
0: जी।
1: मैं नहीं कहूंगा कि सारे जो चीज सोशल मीडिया पे, मुझे पूरा ज्ञान भी नहीं है सोशल मीडिया का, हर चीज सही नहीं होती है, तो आप देख लें, उसको परख लें और तब उसको अपने जीवन में लाएं।
0: बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक वीडियो कहता है कि खूब पानी पीजिए, दूसरा वीडियो कहता है कि पानी मत पीजिए,
1: ये तो एग्जैक्टली विवेक का इस्तेमाल करें और खोजबीन कर लें
0: जी।
1: बाकी सब चीज सोशल मीडिया से न लें, कुछ अध्ययन भी करें।
0: सर अक्सर हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि एक डॉक्टर जो होते हैं काफी व्यस्त शेड्यूल होता है, दिन भर मरीजों से घिरे होते हैं और हमेशा जो भी आता है वो टेंशन में ही आता है, ऐसे में आप लोग अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करते हैं?
1: देखिए हम लोग तो, मेरा तो जो मैं जो करता हूँ वो तो मैं मरीजों के साथ मजाक करता हूँ या थोड़ा सा लाइटर वेन में बात करता हूँ, तो उसी में मेरा आनंद आता है, मरीज देखने में बड़ा आनंद आता है। अगर आप बहुत सीरियस नहीं है तो, और बहुत सीखते हैं आप, हाँ रोज सीखते हैं, आज मैं रोज सीखता हूँ एवरी डे। हाँ
0: यानी जब आप अपने कर्म को ही पूजा बना लेते हैं तो फिर उसी में आनंद आने लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मैं आपको मतलब डॉक्टरों को मैं राय दूंगा कि आज तो देखिए आज का नॉलेज वो इतना वाइड है, आपको एक आपके मोबाइल पर सारी दुनिया है
0: जी,
1: उससे ज्ञान लीजिए, उससे सीखिए, और पढ़ाई, डॉक्टर की पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती
0: जी,
1: सीखना है, रोज सीखना है।
0: सर इसी वक्त हम ये भी जानना चाहेंगे, हमारे जो नए लोग MBBS कर रहे हैं, जो बच्चे या करने चाह रहे हैं, अभी परीक्षा वगैरह दे रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: संदेश मैं यही दूंगा कि अगर आप पैसे के लिए इस प्रोफेशन में आना चाहते

0: तो बताइए, क्योंकि आप अदरवाइज आप कभी भी न्याय नहीं कर पाएंगे समाज के साथ, और आपको हमेशा एक इस चीज को सोच के देखना, मरीज को इलाज करना। मैं डॉक्टरों के बारे में बता रहा हूँ।
1: जी बिल्कुल सर, क्योंकि डॉक्टर्स को धरती पर भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, तो इस दृष्टि से भी आपकी जो बात है बहुत महत्वपूर्ण है।
0: जी, और मैं तो कहता हूँ कि अपने आप को उस कुर्सी पे बैठ के देखो कि हमारे सामने वाला मरीज 5 रुपए खर्च कर सकता है या 5 लाख खर्च कर सकता है। और तुम सोचो, एम्पैथी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब बहुत ही सहानुभूति टाइप का व्यवहार होना चाहिए मरीजों के साथ, ये मेरा मानना है। क्योंकि बहुत दुखी होकर आपके पास कोई आता है।
1: हमारे रेडियो श्रोताओं के लिए कोई संदेश?
0: मैंने संदेश दे दिया ऑलरेडी कि अच्छा खाएं, आचार व्यवहार करें, व्यायाम करें और अच्छा सोचें।
1: तो सर आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप अपने व्यस्त समय में से समय निकालकर हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सुनने वालों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत।

अभी आपने प्रोफेसर डॉक्टर श्याम सुंदर से आशुतोष की बातचीत सुनी। इसी के साथ आपसे मिलिए कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सुनिए संतूर वादन। कलाकार हैं पंडित भजन सोपोरी। राग है कौशिक धानी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं मोहम्मद अकरम खान।

अभी आपने पंडित भजन सोपोरी का संतूर वादन सुना। राग था कौशिक धानी। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे मोहम्मद अकरम खान। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था। हमारा अगला कार्यक्रम बस थोड़ी ही देर में।

फिर एक बार विविध भारती वाराणसी अब नए अंदाज में FM 100.6 पर सुबह 10 से 11 और शाम 5 से 7 बजे तक स्थानीय कार्यक्रमों के साथ, यानी काशी कनेक्ट, बनारस बीट्स, बनारस डायरी और वाराणसी वाइब्स, साथ ही और भी बहुत कुछ जिसमें शामिल होती हैं आपकी बातें। साथ ही सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी, मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर ऐप और वेब ओटीटी पर। कहीं भी कभी भी आकाशवाणी वाराणसी, जहां है आप वहीं हमारा साथ।

जी हाँ श्रोताओं, सुनते रहिए आकाशवाणी वाराणसी और हमसे जुड़े रहिए। अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने विचार हम तक पहुंचाएं, उन्हें हम पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है pkld@varanasi.gmail.com। हमारा फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो वाराणसी। ट्विटर हैंडल है @AIR वाराणसी। इसमें ए और वी कैपिटल लेटर्स में है। तो हमें सुनिए, फील कीजिए और लिख भेजिए अपने विचार। मीडियम वेव FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर अब हम हैं आपके साथ हर पल हर घड़ी।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर अर्थात 1242 किलोहर्ट्स। न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और उसके बाद 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। ये दोनों ही समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे। कृपया थोड़ी सी प्रतीक्षा करें।
1: समाचार के साथ मैं रवि कपूर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के अलीगंज इलाके में आज दोपहर आग दुर्घटना में 16 से 25 वर्ष की आयु के अधिकांश छात्र सहित 15 लोगों की मौत हो गई और 6 छात्र घायल हो गए। उन्हें लखनऊ के केजीएमसी में भर्ती कराया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज घोषणा की कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के 6 लोकसभा सांसद उनकी पार्टी शिवसेना में शामिल हो गए हैं। श्री शिंदे ने इन सभी सांसदों का पार्टी में स्वागत किया। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में श्री शिंदे ने कहा कि आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक है।
2: आज का दिन शिवसेना के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारे 6,000 शिवसेना में शामिल हुए हैं, इससे शिवसेना की ताकत बढ़ रही है। शिवसेना सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी महाराष्ट्र में हो चुकी है और ये डबल इंजन की सरकार है। महाराष्ट्र को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बड़े पैमाने पे सहयोग कर रहे हैं, इसलिए विकास हो रहा है।
1: पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया। रोजगार और जन कल्याण को बढ़ावा देते हुए राज्य के विभिन्न विभागों में 1,00,000 खाली पदों पर नियुक्ति की घोषणा की गई है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज नई दिल्ली में पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के संवादात्मक सत्र में भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शेखावत ने कहा कि पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्र का विकास लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन का साधन है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार रोजगार, विकास और समृद्धि के नए अवसर पैदा कर रही है। भारतीय रेलवे ने पूर्वी तट के रेलवे के 631 किलोमीटर के मार्ग पर स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच की मंजूरी दे दी है। इससे सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार होगा। रेल मंत्रालय ने बताया कि इस परियोजना में पूर्वी तट रेलवे के 6 महत्वपूर्ण खंड शामिल हैं। इन मार्गों पर कवच की स्थापना से स्वचालित रेल सुरक्षा और किसी भी तरह की टक्कर से बचाव की क्षमता प्रदान करके रेलगाड़ी संचालन में उच्च स्तर की सुरक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। केंद्र सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने उन निजी छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक नई नीति बनाई है जो हाल ही में ईरान अमेरिका संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा रद्द होने से प्रभावित हुए थे। न्यायमूर्ति SVN भट्टी और विपुल M पंचोली की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि क्षेत्रीय संघर्ष के कारण खाड़ी देशों में परीक्षा रद्द होने से प्रभावित छात्रों की चिंताओं को दूर करने के लिए एक नई अखिल भारतीय नीति तैयार की गई है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने प्रधानमंत्री और लेबर पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। अपनी ही पार्टी के भीतर बढ़ते दबाव के बीच उन्होंने डाउनिंग स्ट्रीट में अपना कार्यकाल समाप्त किया। श्री स्टार्मर ने कहा कि सितंबर में संसद के सत्र के शुरू होने से पहले जब तक नया नेता नहीं चुन लिया जाता तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे।
3: Every decision I've taken,
4: मैंने जो भी फैसले लिए हैं उनमें हमेशा अपने देश को प्राथमिकता दी है जिससे मैं प्यार करता हूं। इसीलिए मैं लेबर पार्टी के नेता का पद छोड़ रहा हूं। मैंने आज सुबह ब्रिटेन नरेश से बात करके उन्हें अपने फैसले के बारे में बता दिया है। अगर मुकाबले की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से सितंबर में संसद सत्र शुरू होने से पहले पार्टी